शुभ प्रभात दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिव्य दर्शन के भजनों के इस प्रोग्राम में। भजन क्यों किए जाते हैं, यूं तो सभी को इस बारे में पता है, लेकिन फिर भी भजन करने से जो मन की शांति हमें मिलती है, स्वास्थ्य लाभ हमें मिलता है, सुबह सुबह जो हमारे चित्त को, हमारे स्वभाव को, हमारे सोचने की शक्ति को प्रबल कर देता है, अच्छा बना देता है, सुख से भर देता है, उसी को भजन कहते हैं दोस्तों। तो आइए सुनते हैं दिव्य दर्शन के ये भजन।

0: दोस्तों ये बात याद रखिएगा, भगवान हमसे जो भी लेता है उसे हमेशा कई गुना करके वापस करता है।
1: दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

0: संत कबीरदास हथकरघे पर कपड़ा बुनते रहते थे। उनके पास रोज ही कई जिज्ञासु आते थे, जिन्हें तर्कपूर्ण प्रमाण देकर वो कल्याण का मार्ग बताते थे। अपने पास आने वालों को वो दुर्व्यसनों से, नशे से सदैव दूर रहने की प्रेरणा भी देते थे। एक बार तीर्थ यात्रा करते हुए कुछ साधु काशी पहुंचे। वो कबीर के दर्शनों के लिए भी गए। उनमें से कुछ चिलम सुलगाकर तंबाकू पीने लगे। कबीर ने साधु से पूछा, तंबाकू के नशीले धुएं में तुम्हें क्या फायदा मिलता है, बताना तो? उसने कहा, कुछ क्षणों के लिए मस्ती में खो जाता हूं। कबीर ने कहा, इस विषैले पदार्थ के कारण तुम अपने शरीर को जला रहे हो। यदि वास्तव में सच्ची मस्ती का अनुभव करना है तो ऊपर वाले का नाम का नशा चढ़ाकर देखो। तंबाकू का विष मन, मस्तिष्क और शरीर को विकृत कर देता है, जबकि ऊपर वाले का नाम, उसका नशा ही कुछ और है। कबीर के शब्दों ने जादू का काम किया और वो साधु फिर कभी ना नशा करने का संकल्प ले बैठा। एक बार एक व्यक्ति ने कबीर से पूछा, सांसारिक प्रपंच में फंसकर भगवान को कैसे याद करें? कबीर ने कहा, जैसे पत्नी पोहर में रहते हुए भी पति के ध्यान में लीन रहती है, उसी तरह मनुष्य सांसारिक कार्यों में जुटे हुए भी भगवान का चिंतन में लगा रह सकता है।
1: दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

आइए दोस्तों, आपको बताते हैं अमर के बारे में, जो अपने आप में एक प्रेरणा के बहुत बड़े स्रोत हैं। गरीबी और आर्थिक विषमता के दर्दनाक हालात ने दशकों पहले राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को इस कदर व्याकुल कर दिया था कि उनकी कलम से विपथगा कविता निकली थी। श्वानों को मिलते दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिबक ठिठुर जाड़ों की रात्रि बिताते हैं, पापी महलों का अहंकार देता मुझको तब आमंत्रण। दुर्योग से अमीरी गरीब की खाई चौड़ी ही हुई है, इसलिए तमाम कानूनी उपायों के बावजूद

0: उनका कर्ज ऐसा चढ़ा कि उतरने का नाम ही नहीं लेता था। इसलिए परिवार के सारे सदस्य बंधुआ मजदूरी करने को बाध्य थे। छोटे छोटे बच्चे से भी पत्थर ढुलवाने में साहूकार सामंतों को शर्म नहीं आती थी। साल 2001 की बात है, अमर की उम्र भी 6-7 साल की रही होगी। उनका खानाबदोश परिवार उन दिनों जिस गांव की पत्थर की खान पर काम कर रहा था, वहां बचपन बचाओ आंदोलन एक शिक्षा रैली लेकर पहुंचा। खदान के करीब से गुजरते हुए रैली के अगुआ कैलाश सत्यार्थी ने जब नन्हे अमर के हाथों में पत्थर का बड़ा टुकड़ा देखा तो वो ठिठक गए। वो फौरन अमर के माता पिता से बात करने के लिए पहुंचे ताकि उन्हें समझा सकें कि ये जुल्म है, ये तो इस बच्चे के खेलने कूदने पढ़ने लिखने के दिन है। अब जिनके पुरखों ने कभी स्कूल न देखा हो तो वो भला क्या समझेंगे शिक्षा की कीमत। उनके लिए तो बाल मजदूरी कोई अनहोनी बात थी नहीं, क्योंकि वो सब यही तो करते हुए बड़े हुए थे। मगर कैलाश सत्यार्थी उन्हें समझाने में जुटे रहे कि उनका बेटा किसी बड़े काम के लिए बना है। उन्होंने अमर के पिता से कहा कि यदि वो अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च वहन नहीं कर सकते तो जयपुर में एक बाल आश्रम है जो इसकी जिम्मेदारियां उठा सकता है। गरीब माता पिता भी बेटों का भला चाहते थे और उनके दिल में भी तरह तरह की तमन्नाएं थीं। कैसे अपनी संतान को नजरों से इतना दूर भेज दें, बिछो के ख्याल से ही उनका दिल कांप उठा। लरजती हुई आवाज में अमर के पिता ने सत्यार्थी जी से बस यही कहा कि वो पहले जयपुर आश्रम जाकर वहां रह रहे बच्चों को देखेंगे, फिर फैसला करेंगे। माता पिता दोनों जयपुर बाल आश्रम आए। असंतोष की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि जैसी जिंदगी वे अपने बच्चों को दे रहे थे उससे आश्रम के जीवन की कोई तुलना ही नहीं थी। अमर अपने दो बड़े भाइयों के साथ जयपुर आश्रम आ गए। वो सब बेहद खुश थे क्योंकि वहां वे अपनी मर्जी से खेल सकते थे, पढ़ लिख सकते थे। 6 महीने तक आश्रम में पढ़ने के बाद अमर और उनके भाइयों का औपचारिक शिक्षा के लिए एक सरकारी स्कूल में दाखिला करा दिया गया। अमर ने वहीं से 12वीं की अपनी शिक्षा पूरी की। बाल आश्रम ने अमर और उनके भाइयों को एक नई जिंदगी दी, बल्कि अमर के नेतृत्वकारी गुण को भी बहुत अच्छी तरह से निखारा। वो कई बार बाल आश्रम बाल सभा के अध्यक्ष चुने गए। आश्रम में ही उन्होंने सत्यार्थी के बेटे भुवन से संवाद करने का मौका मिला, जो पेशे से वकील है। जैसे जैसे अमर बड़े और शिक्षित हुए, उनका यकीन पुख्ता होता गया कि कानून ही वो जरिया है जिसकी मदद से बच्चों को शोषण से मुक्ति दिलाई जा सकती है। साल 2013 में उन्होंने लॉ कॉलेज में दाखिला लिया और 2018 में कानून में स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद 2019 में उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। करीब 6 महीने तक दिल्ली के 30,000 कोर्ट में वकालत करने के बाद 1.5 साल तक अमर ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक वरिष्ठ वकील के साथ काम भी किया और उसके बाद वो अपनी संस्था के लिए काम करते रहे। वो न सिर्फ बाल मजदूरों के मुक्ति अभियान में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बल्कि जिस किसी गांव के बारे में उन्हें पता चलता है कि वहां बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जा रहा, अमर वहां पहुंचकर अपनी कहानी सुनाते हैं और परिजनों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने बच्चों का भविष्य बचा लें। अमर को स्वीडन और नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को संबोधित करने का भी मौका मिला, जहां उन्होंने बच्चों के अधिकारों और बाल विवाह के खिलाफ दुनिया का ध्यान खींचा। अमर के माता पिता के पास जोधपुर में अब अपना घर है। जब भी कोई उनसे पूछता है आपका बेटा दिल्ली में वकील है, अमर के अभिभावकों के लिए ये गौरव का क्षण होता है। उनके दूसरे बेटा बेटी भी अब नौकरी करते हैं, मगर इन वर्षों में अमर बार बार अपने समुदाय के बीच लौटते हैं। नतीजन उनके बंजारा समुदाय के अब लगभग सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। इलाके के खानाबदोश समुदायों के सामने मिसाल के तौर पर उनकी कहानी पेश की जाती है। मानना होगा कि अमर ने हाशिए पर जीने वाले हरेक बच्चे के हक की लड़ाई लड़ी है। अब अपने बचपन को उन्होंने हमेशा अपने भीतर जिंदा रखा है ताकि वो उन्हें याद दिलाता रहे हजारों बाल श्रमिकों को अमर की तलाश है।
1: दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

आइए दोस्तों, आपको बताते हैं आजाद भारत की पहली महिला आईएएस ऑफिसर के बारे में, जिनका नाम है अन्ना राजम जॉर्ज। वो भी लाजवाब जमाना था, देश आजाद हो गया था। तब तोला भर सोने की अंगूठी के लिए करीब 100 रुपए लग जाते थे और आईएएस की परीक्षा में बैठने के लिए 140 रुपए का शुल्क चुकाना पड़ता था। 20 की हो चुकी ये मलयाली युवती क्लर्क की नौकरी करती थी और तनख्वाह इतनी नहीं थी कि परीक्षा का फार्म भर सके। वो सोचती थी कि स्नातक करने के बावजूद क्या वो सिर्फ क्लर्क बनकर रह जाएगी। नए आजाद हुए देश में सबसे बड़ी नौकरी के लिए प्रयास में भला क्या हर्ज है। एक बार संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बैठकर देखें, ना कुछ होगा तो तजुर्बा तो होगा। आगे बढ़ने का इरादा पक्का था तो कदम कदम पर चुनौतियों से टकराना भी तय था। एक दोस्त की मम्मी ने फार्म भरने के पैसे दे दिए। युवती ने पहली ही बार में कामयाबी हासिल कर ली। साक्षात्कार का मौका आया तो भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहने का उन्होंने इरादा जताया। साक्षात्कार लेने बैठे आयोग के प्रमुख ने हतोत्साहित किया, युवती हो, भारतीय प्रशासनिक सेवा में मुश्किल होगी, विदेश सेवा या केंद्रीय सेवाओं में से कुछ चुन लो। पर वो अड़ गई, प्रशासनिक सेवा में ही जाना है। आयोग के सभी सदस्य अचंभित थे कि बुरे से बुरे हालात देखने पड़ते हैं, कड़े से कड़े फैसले लेने पड़ते हैं, किसी लड़की से ये सब हो सकेगा? भला हो महान संविधान निर्माताओं का, जिन्होंने देश में कानून बना दिया था कि रोजगार में लड़का लड़की के बीच भेद नहीं किया जाएगा। लड़की अड़ गई, तभी वो देश की पहली आईएएस ऑफिसर बनी और पहुंच गई अपने कैडर प्रदेश तमिलनाडु। वहां मिल गए दिग्गज नेता और मुख्यमंत्री सी रामगोपालाचारी। आईएएस रूप में युवती को देखकर चौंक गए, ये कैसे, सब कलेक्टर कलेक्टर बनेगी, फिर फील्ड ड्यूटी में जाएगी। उन्होंने समझाया कि सचिवालय में कोई काम संभाल लो, जिला जाने की नौबत भी नहीं आएगी। पर यहां भी वो युवती अड़ग रही, नहीं, मुझे आप किसी जिले में ही भेजिए, कृपया भेदभाव नहीं कीजिए। खैर, रामगोपालाचारी ने भी उन्हें अपने ही जिले होसूर में सब कलेक्टर तैनात कर दिया। लोगों को विश्वास ही नहीं होता था कि एक महिला सब कलेक्टर कैसे। उन दिनों कलेक्टर को अक्सर लाठीचार्ज या गोली चलाने का फैसला लेना पड़ता था। पता नहीं एक महिला ऐसे फैसले कैसे लेगी। ऐसे में खुद को साबित करना जरूरी था और मौके की तलाश थी। मौका जल्दी ही सामने आ गया। एक सुबह बंगले के बाहर शोर मच गया, बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए। सब कलेक्टर साहिबा जल्दी जल्दी नहाकर निकली। 6 हाथियों के एक समूह ने गांव पर हमला बोल दिया था, भगाए नहीं भाग रहे थे वो। ग्रामीणों को जब कुछ न सूझा तो मदद के लिए सब कलेक्टर के यहां पहुंच गए, पर सामने एक महिला को देखकर बड़े निराश हुए। ये कैसे फैसला लेगी, कैसे समाधान करेगी। पल भर के लिए सब कलेक्टर भी स्तब्ध रह गई, पर कुछ ही पल में उनके दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया। हालांकि ऐसे मौकों पर जानवरों को मार गिराने का आदेश उन दिनों बहुत आम हुआ करता था। अचानक दिमाग में सूझा कि अगर शोर किया जाए तो हाथी भाग सकते हैं। आदेश दिया कि जिसे जो मिले जोर जोर से बजाओ। सब लोग मिलकर शोर करने लगे। ग्रामीणों ने टीन बर्तन लेकर शोर करना शुरू कर दिया, वो भी ग्रामीणों के साथ शामिल हो गई। हाथियों के दल का मुखिया शोर सुनकर दूर चल पड़ा। लोग खुश हुए तो जोश और बढ़ गया। फिर क्या था, वे हाथियों को जंगल तक छोड़कर आए। हाथियों की जान भी बच गई और ग्रामीणों की समस्या का समाधान भी हो गया। तब तमिलनाडु में ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस खबर के साथ खुशी की लहर दौड़ गई कि एक कलेक्टर आई हैं, अन्ना राजम जॉर्ज। सबने माना कि महिलाएं भी कलेक्टर के रूप में कारगर हो सकती हैं। महिलाओं की राह में रोड़े बिछाने वाले तमाम पुरुषवादी अफसरों को भी एहसास हो गया कि आईएएस के रूप में महिलाओं की पदस्थापना गलत नहीं होगी। अन्ना को चेन्नई से नई दिल्ली तक प्रशासनिक सेवा में खूब मौके मिले और उन्होंने कभी निराश नहीं किया। अब हर साल दसियों युवतों के चयन आईएएस के लिए होते हैं और अन्ना राजम जॉर्ज की याद अचानक ही आ जाती है। भूलना नहीं चाहिए कि अपने देश में एक समय वो भी था जब अन्ना राजम जॉर्ज की सेवा शर्तों में ये शामिल था कि अगर वो विवाह कर लेंगी तो उनकी नौकरी चली जाएगी। ऐसी नौबत नहीं आई,
अन्ना ने जल्द ही खुद को काबिल साबित कर दिया और अविवाहित रहने की शर्त हमेशा के लिए इतिहास हो गई। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

0: परम विरक्त संत राम सुखदास जी कहा करते थे कि जो व्यक्ति मान अपमान की भावना को छोड़कर भगवान की शरण में चला जाता है उसे कोई अभाव हो ही नहीं सकता। एक साधक ने स्वामी जी से प्रश्न कर लिया, मैं रोजी रोटी जुटाने के लिए इतना व्यस्त रहता हूं कि भक्ति उपासना कर ही नहीं पाता, मेरा कल्याण कैसे होगा? स्वामी जी ने कहा, आप चार संकल्प ले लीजिए। पहला, किसी का जीना दुखाइए। दूसरा, यथासंभव असहाय और रोगियों की सेवा कर दीजिए। तीसरा, सत्य बोलिए। और चौथा, सवेरे शैया त्यागने से पहले और रात में सोने के समय भगवान को याद कर लीजिए। कपट चालाक और छल से दूर रहिए। कपट चालाकी और छल से दूर रहिए, भगवान खुद ही मिल जाएंगे। कुछ देर रुककर उन्होंने कहा, वास्तव में भगवान ने सबको अपना मान रखा है, लेकिन हम अपनी असीमित इच्छाओं के लालच में चलकर झूठ कपट वगैरह की शरण लेते हैं और ये कहने लगते हैं कि बिना झूठ कपट के सफलता ही नहीं मिलेगी। अब ये भ्रम ही हमारा पतन का कारण है। छल कपटी और दुराचारी को भगवान कदापि सहन नहीं करते, जबकि निर्मल हृदय वाले सदाचारी भक्त भगवान की कृपा के लिए हमेशा ही प्रस्तुत रहते हैं।
1: दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

0: अजमेर में स्वामी दयानंद जी का निर्वाण अर्ध शताब्दी समारोह चल रहा था। देश भर के आर्य सन्यासी और विद्वान समारोह में थे। महान शिक्षा सेवी महात्मा हंसराज जी भी लाहौर से समारोह में भाग लेने के लिए आए थे। स्वामी सर्वदानंद जी ने कुटिया में कुछ आर्य समाजी संतों को बुलाया और उनसे कहा, स्वामी जी, हम सभी की इच्छा है कि महात्मा हंसराज जी जैसी दिव्य विभूति से संन्यास ग्रहण करने की प्रार्थना की जाए। इससे आर्य समाज को बहुत बल मिलेगा। स्वामी सर्वदानंद जी ने उनसे कहा, जिन महात्मा हंसराज जी ने अपना पूरा जीवन आर्य समाज के प्रचार और जगह जगह विद्यालयों की स्थापना करने के लिए समर्पित कर दिया है, क्या उन्हें आप गेरुआ वस्त्र न पहनने के कारण सन्यासी नहीं मानते? कुछ देर रुककर स्वामी जी ने कहा, केवल कपड़े रंग लेने से कोई सन्यासी नहीं बन जाता। जिसका मन परोपकार और सेवा के कार्यों में लगा हो, वो तो खुद ही सन्यासी हो जाता है। कपड़े रंगने के बाद भी अपना जीवन सेवा और धर्म प्रचार में नहीं लगाता, उसे साधु कैसे कहा जा सकता है? सन्यासी की वास्तविक व्याख्या सुनकर सभी गदगद हो गए।
1: दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा, रिश्तों व हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा।

तो चलिए दोस्तों, इन्हीं भजनों के साथ हम सभी का दिन शुभ हो, मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा। आज के सुखदायक दिन के बाद कल सुबह मैं फिर प्रभु के नाम के साथ, प्रभु के भजनों के साथ हाजिर हो जाऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप हैं आप ही के झाबुआ की आवाज रेडियो टांटिया भील 90.8 FM पर।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और ब्राइट कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। नमस्कार दोस्तों, आज एक और बात बताऊंगी, सवाल नहीं पूछूंगी, एक हिस्ट्री का खूबसूरत किस्सा। आपने अपनी लाइफ की सबसे अच्छी किताब कहाँ खरीदी थी, याद है आपको? बुक स्टोर से ली थी, ऑनलाइन ली थी, या किसी दोस्त ने यूं ही गिफ्ट की थी? जरा सोचिए, अगर मैं कहूं कि दुनिया की सबसे मशहूर पब्लिशिंग कंपनीज में से एक की शुरुआत किसी बड़े ऑफिस में नहीं, बल्कि एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर हुई थी, तो क्या सोचेंगे आप? जी हां, बिल्कुल, एक प्लेटफॉर्म, एक आदमी और एक उसकी छोटी सी फ्रस्ट्रेशन, और वही फ्रस्ट्रेशन बदल गई लाखों लोगों की पढ़ने की आदत में। चलिए शुरू करते हैं आज की बातें इधर की उधर की में, और सुनते हैं एक बहुत ही दिलचस्प कहानी। साल था 1934, इंग्लैंड का एक शहर एक्सेटर, एक पब्लिशर थे एलन लेन। एक वीकेंड वो मशहूर मिस्ट्री राइटर अगाथा क्रिस्टी के घर से उन्हें मिलकर लौट रहे थे। अब ट्रेन आने में थोड़ा वक्त था, उन्होंने सोचा चलो कोई अच्छी सी किताब ले लेता हूँ, सफर कट जाएगा। जी हाँ, पहले ऐसे ही होता था, दोस गोल्डन डेज। एनीवे, लेकिन जब वो स्टेशन के बुक स्टॉल पर गए तो क्या मिला आप जानते हैं? सस्ती मैगजीन्स, हल्के फुल्के पल्प नॉवेल्स, लेकिन कोई ऐसी किताब नहीं जिसे पढ़कर लगे कि सफर यादगार हो गया। ना कोई सीरियस लिटरेचर, ना कोई अच्छे नॉवलिस्ट, ना कोई ऐसी किताब जो दिमाग को भी खुराक दे। और सोचिए, ये प्रॉब्लम किसी आम मुसाफिर को नहीं, एक पब्लिशर को हो रही थी। एलन लेन ने किताब वापस रखी और ट्रेन का इंतजार करते हुए बस एक बात सोचते रहे, अच्छी किताबें सिर्फ अमीर लोगों के लिए ही क्यों होती हैं? उस जमाने में हार्ड बाउंड बुक्स बहुत महंगी हुआ करती थी, आज भी होती हैं। आम आदमी के लिए किताब खरीदना मान लीजिए एक लग्जरी ही थी। फैक्ट्री में काम करने वाला, ऑफिस क्लर्क, स्टूडेंट या ट्रेन से रोज सफर करने वाला आदमी, उनके लिए एक अच्छी किताब खरीदना आसान नहीं था। तब एलन लेन के दिमाग में एक आइडिया आया, एक सिंपल सा आइडिया, लेकिन हर बड़ी क्रांति की तरह ये भी सिंपल ही था। उन्होंने सोचा, अगर अच्छी किताब की कीमत सिर्फ 2 पैकेट सिगरेट जितनी हो तो? सोचिए, लिटरेचर हर किसी की जेब में आ सकता था, किताब सिर्फ लाइब्रेरी की शेल्फ पर नहीं, कोट की पॉकेट में आ सकती थी। अब जब एलन लेन ये आइडिया लेकर अपनी कंपनी के डायरेक्टर्स के पास गए तो जवाब बहुत एक्सपेक्टेड था, किसी भी नई आइडिया को यही मिलता है, इम्पॉसिबल, कोई नहीं खरीदेगा, नुकसान हो जाएगा, अच्छी लिटरेचर सस्ती बेची ही नहीं जा सकती, दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन एलन लेन ने हार नहीं मानी, उन्होंने अपनी जेब से पैसे लगाए और 30th जुलाई 1935 को सिर्फ 10 पेपरबैक बुक्स के साथ एक नई पब्लिशिंग कंपनी शुरू कर दी,
सोचिए, किताबों के कवर बहुत सिंपल रखें, ऑरेंज फिक्शन के लिए, ग्रीन क्राइम स्टोरीज के लिए, ब्लू बायोग्राफीज के लिए, सीधा साफ बिना किसी चमक धमक के। अब एक और प्रॉब्लम आई, कंपनी का नाम क्या रखें? मीटिंग में किसी ने कहा किसी जानवर का नाम रखते हैं। सबने सोचा शेर, बाज, हाथी, लेकिन एलन लेन को कुछ अलग चाहिए था। एक कॉलीग को लंदन जू भेजा गया, इमेजिन, और वहां से जो जानवर चुना गया वो ना जंगल का राजा था ना सबसे ताकतवर, वो था पेंगुइन। जी हाँ, सीधा प्यारा याद रहने वाला एक पेंगुइन। और दोस्तों, इसी तरह जन्म हुआ पेंगुइन बुक्स का। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब सवाल था किताबें बिकेंगी कैसे। तब इंग्लैंड की एक बड़ी रिटेल चेन वूलवर्थ्स ने एक साथ 63,000 बुक्स का ऑर्डर दे दिया। बस ये बन गया गेम चेंजर। सिर्फ 10 महीने के अंदर 10 लाख पेपरबैक बुक्स छप चुकी थी। सोचिए, एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर पैदा हुआ आइडिया अब पूरी दुनिया में सफर कर रहा था। आज अगर हम एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर या किसी छोटी सी दुकान पर पेपरबैक बुक्स देखते हैं तो उसके पीछे एलन लेन का एक विजन

था। उन्होंने सिर्फ किताब नहीं बेची, उन्होंने पढ़ने को आम आदमी तक पहुंचाया, नॉलेज को इलीट क्लब से निकालकर हर हाथ तक ला दिया। और दोस्तों, इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा क्या है आप जानते हैं? कभी कभी दुनिया बदलने के लिए कोई बहुत बड़ा इन्वेंशन नहीं चाहिए, एक सवाल चाहिए, ये चीज ऐसी क्यों है, और बस उसके बाद थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। हम सब रोज कंप्लेन करते हैं, कंप्लेन मोड में ही रहते हैं, ट्रैफिक है, सिस्टम खराब है, ऑफिस नहीं जाना, ऑफिस में ये इश्यूज हैं, मोबाइल नेटवर्क चला गया, लाइनें बहुत लंबी हैं, ये नहीं वो नहीं, उफ तौबा। लेकिन बहुत कम लोग उस कंप्लेंट को आइडिया में बदल देते हैं। एलन लेन ने बदला, और इसीलिए आज उनका नाम पब्लिशिंग की हिस्ट्री में हमेशा गोल्डन वर्ड से लिखा गया। चलिए, आज जाने से पहले एक छोटा सा सवाल पूछती हूं। अगर आपको दुनिया की किसी एक प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालना हो, प्रॉब्लम नहीं सल्यूशन, तो वो क्या प्रॉब्लम होगी? हो सकता है आपका जवाब कल किसी बड़ी कहानी की शुरुआत बन जाए। इसी उम्मीद के साथ, इसी ख्वाहिश के साथ मैं लेती हूं आपसे इजाजत, आपकी तनुषा, आपकी आरजे होस्ट, आपके तरानों की हमसफर। आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर की, जहां हर रोज एक छोटी सी बात जिंदगी की बड़ी सीख बन जाती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक पढ़ते रहिए, सोचते रहिए और मुस्कुराते तो जरूर रहिए। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: एक बार किसी शहर में किसी से मिलने जा रहा था मैं। आधे रास्ते में मुझे टैक्सी में याद आया कि चश्मा तो होटल में ही छूट गया और जिसे मिलने जा रहा था उसके पति की डायरी भी वहीं छूट गई। अब सड़क का नाम तो याद आ गया लेकिन मकान का नंबर याद नहीं आ रहा था। बस मैंने ड्राइवर से कहा कि एक टेलीफोन बूथ के पास रोक दे, टैक्सी रुकवाई, शायद टेलीफोन डायरेक्टरी में मकान का नंबर मिल जाए, ऐसा सोचा। अब चश्मा ना होने की वजह से मुझे डायरेक्टरी आंखों से दूर काफी फासले पर पकड़नी पड़ रही थी। अचानक से किसी ने कांच के दरवाजे पर खटखट की तो देखा कि टैक्सी ड्राइवर साहब खड़े हैं, बहुत ही प्यार से मुस्कुरा रहे थे। आंखें मिलते ही उन्होंने पूछा, सर कुछ मदद करूं? लगता है आपकी बाहें कुछ छोटी पड़ रही हैं।

क्या हम जिंदगी को आउटसोर्स कर रहे हैं? जी हाँ, क्या हम जिंदगी को भी आउटसोर्स कर रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं बातें इधर की उधर की। आज की कहानी की शुरुआत भी एक छोटे से सवाल से करते हैं। आपने आज सुबह अपना फोन कितनी बार देखा? सच बताना, नो चीटिंग। एक और सवाल, आज सुबह आसमान कितनी बार देखा? चक्कर में पड़ गए ना? जवाब शायद थोड़ा मुश्किल हो, थोड़ा ज्यादा ही मुश्किल हो। तो बहुत इजी सवाल तो नहीं था। खैर दोस्तों, आज हम उस दौर में जी रहे हैं जहां हर चीज सिर्फ एक क्लिक दूर है। सब्जी चाहिए 10 मिनट में, खाना चाहिए डोरबेल बजेगी और आ जाएगा, चाहे भीगते हुए ही आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कपड़े, अरे घर पर आएंगे। दवाइयां, बिल्कुल डोरस्टेप पे। केक, बर्थडे केक, बिल्कुल आपके बर्थडे पर्सन के सामने हाजिर है। और लगता है अब तो धीरे धीरे हम खुद भी सिर्फ घर पर ही होके रह गए हैं। दोस्तों, सुविधा बिल्कुल बुरी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन एक सवाल खुद से जरूर पूछना चाहिए, क्या हम सिर्फ काम आउटसोर्स कर रहे हैं या हमारी पूरी जिंदगी

स्कूल छोड़ना सिर्फ एक काम नहीं होता था पेरेंट्स के लिए, वो एक रास्ते का समय होता था। रास्ते में उस बच्चे से पूछना, होमवर्क कंप्लीट है ना, या आज टेस्ट है ना, डरना मत, अच्छे से करके आना, या फिर एक छोटा सा जोक सुना देना और उसकी हंसी देख लेना। ये सब यादें होती थी, मोमेंट्स होते थे, और इन्हीं मोमेंट्स में सीख छुपी होती थी जीवन की। यादें कभी ऑनलाइन ऑर्डर नहीं कर सकते। वैसे ही एक और बात, आजकल कॉलोनी में सुबह सुबह एक अंकल दिखते हैं, 7-8 कुत्ते एक साथ घुमा रहे होते हैं। पहले मुझे लगा वाह बड़े डॉग लवर हैं, फिर पता चला ये सब अलग अलग घरों के डॉग्स हैं, उन्हें घुमाने का काम दिया गया है। और फिर एक और सवाल मेरे दिमाग में आने लगा, कुत्ता घुमाना सिर्फ उनकी एक्सरसाइज है या हमारी भी? कभी किसी पेट ओनर से जाके पूछे, डॉग वॉक पर सिर्फ डॉग खुश नहीं होता, इंसान भी हल्का हो जाता है, थोड़ी हवा खा लेता है, थोड़ी धूप खा लेता है, दो लोगों से नमस्ते कर लेता है, और दिन की शुरुआत कितनी अच्छी हो जाती है, कितनी फ्रेश। अब एक छोटा सा मजाक, आजकल हम इतने बिजी हैं कि फिटनेस बोलता है सर थोड़ा चल भी लीजिए, मैं भी बोर हो गया हूं, और फोन का स्टेप काउंटर रोज शिकायत करता होगा, मैं नौकरी छोड़ रहा हूं भाई, मेरी कोई जरूरत नहीं है, प्लीज ले मी ऑफ। दोस्तों, दुनिया के कई देशों में लोग अपना खाना खुद बनाते हैं, जी हां खुद, चाहे वो किसी भी तबके के हों, किसी भी स्तर के हों। अपने बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं, अपने घर की सफाई खुद करते हैं, डॉग्स को खुद घुमाते हैं, इसीलिए नहीं कि उनके पास पैसे नहीं होते, शायद हमसे कुछ ज्यादा ही होते हैं, बल्कि इसीलिए क्योंकि उनके लिए ये काम नहीं है, ये उनकी जिंदगी का हिस्सा है, वो आत्मनिर्भर हैं, सच में आत्मनिर्भर हैं। हमारे यहां कभी कभी सफलता का मतलब ये बन जाता है कि मुझे कुछ भी खुद नहीं करना पड़े, मतलब मैं बड़ा आदमी बन गया। लेकिन सोचिए, अगर इंसान कभी बाजार ही ना जाए, कभी सब्जी अपने हाथ से ही ना खरीदे, कभी अपने हाथ से एक कप चाय ना बनाए, कभी लाइन में खड़ा ही ना हो, तो वो जिंदगी के कितने रंग देख पाएगा? सब्जी खरीदने में भी तो मजा है, दो बातें हो जाती हैं, टमाटर वाले से मोल भाव हो

सच बताइए, धनिया फ्री मिलने की खुशी होती है या नहीं? शायद सैलरी क्रेडिट होने से थोड़ी कम होती होगी, बट होती जरूर है। एक और बात, मम्मी के हाथ की चाय का टेस्ट किसी ऐप पर अवेलेबल नहीं है, नहीं हो सकता, कभी नहीं। पापा के साथ बाजार जाना किसी वेबसाइट पर ऑर्डर नहीं हो सकता। बच्चों के साथ स्कूल तक चलना किसी डिलीवरी पार्टनर से नहीं करवाया जा सकता। कुछ चीजें सिर्फ खुद करने की होती हैं, खुद महसूस करने की होती हैं, और वही उनकी एक्चुअल खूबसूरती होती है। टेक्नोलॉजी हमें सुविधा दे बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सुविधा हमें अपनों से दूर कर दे, हमें हैंडीकैप बना दे, हमें इतना निर्भर बना दे कि हमारे पास खुद कुछ करने का मौका ही ना बचे, तो फिर थोड़ा रुककर सोचना चाहिए। जिंदगी सिर्फ बड़े बड़े पलों से नहीं बनती, छोटी छोटी आदतों से बनती है, एक्सपीरियंस से बनती है। सबके साथ चाय पीना, रात को खाना बनाना, सुबह कॉलोनी में थोड़ा चल लेना, बच्चे की बात ध्यान से सुनना, डॉग्स के साथ पार्क में बैठ जाना, ये सब काम नहीं, यही तो असली जिंदगी के पल हैं। तो आज का सवाल आपसे सिर्फ इतना है, आपने आखिरी बार कौन सा ऐसा छोटा काम किया था जो सिर्फ खुद किया, और खुद सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसमें खुशी थी, ना कि कोई मजबूरी। इस बारे में सोचेगा जरूर, क्योंकि सुविधा जरूरी है, लेकिन सुविधा के बदले अगर हम एक याद खो देना तो सौदा थोड़ा महंगा पड़ सकता है। सोच के देखिए। मैं हूं आरजे तनुषा और आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर की। मिलते हैं फिर एक और कहानी के साथ, तब तक थोड़ा कम ऑर्डर करिए और जिंदगी थोड़ी खुद जी लीजिए। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: पत्नी ने पूछा, क्या तुम मुझे याद कर रहे हो? पति ने बोला, अरे पगली, अगर कुछ याद करना इतना आसान होता मेरे लिए तो 10वीं में टॉप ना कर जाता मैं।

नमस्कार दोस्तों, आज की बात शुरू करते हैं एक और छोटे से सवाल से। आप बताइए, अगर आपको पहले से पता हो कि आज किसी अपने से आपकी आखिरी मुलाकात है, तो क्या आप उस मुलाकात में मोबाइल देखते रहेंगे या फिर उस पल को दिल से जिएंगे? सोचिए। हम अक्सर कहते हैं ना, कल मिल लेंगे, बाद में देख लेंगे, बाद में बात कर लेंगे यार, नेक्स्ट वीकेंड चलते हैं यार। लेकिन जिंदगी की डिक्शनरी में एक वर्ड है जो गारंटी से कभी नहीं मिलता, और आप जानते हैं वो क्या है? वो है कल। तभी कहते हैं ना, कल हो ना हो। जी हाँ, ये सच है, कल हो ना हो। जापान की कई खूबसूरत फिलोसफीज में से एक और खूबसूरत फिलोसफी है इचिगो इची। इसका मतलब है वन टाइम वन मीटिंग वंस इन अ लाइफ टाइम, यानी हर मुलाकात हर लम्हा सिर्फ एक ही बार होता है, वो बिल्कुल उसी तरह दोबारा नहीं आता, कभी नहीं। अब आप कहेंगे, अरे हम तो रोज ऑफिस जाते हैं, रोज वही लोग मिलते हैं, रोज वही रास्ते से जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लोग शायद वही होते हैं, लेकिन वो दिन, वो घड़ी, वो लम्हा, वो कभी वही नहीं होता दोस्तों। आज जो चाय आप दोस्त के साथ पी रहे हैं, कल शायद वो दोस्त किसी और शहर में हो। आज जो बच्चा स्कूल जाते वक्त आपसे हग करता है, कुछ साल बाद वही बच्चा बोलेगा, पापा मैं खुद चला जाऊंगा, आप रहने दो। और फिर आप सोचेंगे कि काश काश थोड़ी देर और उसके साथ चल लेता। दोस्तों, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास वक्त कम है, वक्त है। प्रॉब्लम ये है कि हम सोचते हैं वक्त बहुत है, जो बिल्कुल गलत है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखिए। आज घर जाकर जब मम्मी या पापा कुछ बोल रहे हो, तो बस 2 मिनट के लिए मोबाइल साइड में रख दीजिएगा, सिर्फ उनकी आंखों में देखकर बात कीजिएगा, उनकी बात सुनिएगा। हो सकता है उन 2 मिनट में जो सुकून मिले, वो पूरी जिंदगी भर स्क्रोलिंग करके भी ना मिले दोस्तों। वैसे भी फोन की बैटरी लो हो जाए तो हम तुरंत चार्जर लगा देते हैं, ढूंढते हैं, भागते हैं, परेशान हो जाते हैं। पर रिश्तों की बैटरी अगर डाउन हो जाए तो हम कहते हैं, देखेंगे यार, कल मनाते हैं, मान जाएगा, टाइम देते हैं, वक्त देते हैं। एक और सवाल, कब आखिरी बार बारिश को सिर्फ देखा था आपने? फोटो खींचने के लिए नहीं, स्टेटस लगाने के लिए नहीं, कोई सॉन्ग ढूंढ के उसके ऊपर गाने के लिए नहीं, बस उस बारिश को महसूस करने के लिए। कब आखिरी बार चाय पीते हुए उसकी खुशबू पर ध्यान दिया था? उफ, वो खुशबू। कब आखिरी बार किसी दोस्त की बात बीच में काटे बिना बस सुनी थी, बस सुनी। हम प्रेजेंट में कम, नोटिफिकेशंस में ज्यादा जी रहे हैं, हम पास हो रहे हैं, जी नहीं रहे, बस गुजर रहे हैं। आजकल डिनर टेबल पर 4 लोग होते हैं और 5वां मेहमान होता है मोबाइल फोन। सब साथ बैठे होते हैं, लेकिन सब अपनी ही दुनिया में लगे होते हैं। इचिगो इची कहता है, जिस इंसान के साथ हो उसी के साथ रहो ना, थोड़ी देर तो बिताओ उसके साथ। सिर्फ बॉडी से नहीं, माइंड भी वही होना चाहिए। एक और मजेदार बात बताती हूं, हम जानते सब हैं, लेकिन मैं बस याद दिला रही हूं। वेकेशन पे जब हम जाते हैं तो 100 फोटोज तो कम से कम ले लेते हैं, फिर घर आकर याद ही नहीं रहता कि उस जगह की हवा कैसी थी, वहां की खुशबू कैसी थी, टेक्सचर कैसा था, लोग कैसे मुस्कुराते थे।
बस याद ये रहता है कि फोटो में कौन सा फिल्टर लगाया था और कौन से फिल्टर में सबसे अच्छी फोटो आई थी, तो उसको सेव कर दे नेक्स्ट टाइम के लिए। ऐसा करते हैं या नहीं, खुद से जरूर पूछेगा। कभी कभी लगता है कि हम यादें कम बना रहे हैं और प्रूफ ज्यादा कलेक्ट कर रहे हैं कि भाई हम गए थे, हमारा स्टैम्प है, ये देखो यहाँ की फोटो, वहां की फोटो, इधर की फोटो, उधर की फोटो। दोस्तों, जिंदगी अटेंडेंस शीट नहीं है, एक एक्सपीरियंस है भाई, एक अनुभव है। और एक्सपीरियंस प्रेजेंट में मिलता है। एक छोटी सी आदत बना लीजिए मेरे कहने से, जब भी किसी अपने से मिले आज के बाद, तो दिल में बस एक बार सोचिएगा, ये पल, यस यही वाला, ये दोबारा बिल्कुल नहीं आएगा और ऐसा तो बिल्कुल नहीं आएगा। बस आपका पूरा बिहेवियर ना बदल जाए तो मेरा नाम बदल देना। आप धीरे बोलेंगे, ज्यादा सुनेंगे, कम जज करेंगे और थोड़ा ज्यादा अप्रिसिएट करेंगे। इसी फिलॉसफी की शुरुआत जापान की ट्रेडिशनल टी सेरेमनी से हुई थी, जहां हर मेहमान और हर चाय की बैठक को एक अनोखा, दोबारा कभी ना दोहराए जाने वाला एक अनुभव माना जाता था। जाते जाते आज का होमवर्क भी देके जा रही हूं, करिएगा जरूर, कल चेक करूंगी। मजाक कर रही हूं, बस खुद के लिए कीजिए, होमवर्क के जैसे नहीं। आज किसी इंसान के साथ 10 मिनट बैठेगा, बिना फोन के, बिना टीवी के, बिना सोशल मीडिया के, बिना किसी स्क्रीन के, सिर्फ एक ही स्क्रीन हो बीच में, आप और आपका वो इंसान और उसकी आंखें शायद। सिर्फ बात कीजिए, मुस्कुराइए और उस इंसान को देखिए। हो सकता है सालों बाद आपको उस कॉन्वर्जेशन के एग्जैक्ट वर्ड्स याद ना रहें, लेकिन उस पल की जो फीलिंग है वो जरूर याद रहेगी। क्योंकि दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बड़े बड़े मोमेंट्स में नहीं, उन छोटे छोटे लम्हों में छुपे होते हैं, जिन्हें हम अक्सर बाद में बाद में बाद में कहते कहते खो जाते हैं। तो अगली बार जब किसी अपने के साथ चाय पीने बैठे, या दोस्त के साथ हंस रहे हो, या माँ आपको बस यूं ही आवाज दे दे, एक बार दिल से जरूर कहना, इची गो इची, ये पल सिर्फ एक बार आएगा, सिर्फ एक बार मिला है, और शायद इसीलिए ये इतना खूबसूरत है। मुस्कुराते रहिए, अपनों के साथ वक्त बिताइए और मुझसे फिर मिलिए कल की बातें इधर की उधर की में। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारी हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: पत्नी ने बोला, अच्छा तुम मुझे ऐसी दो बातें बताओ जिनमें से एक को सुनकर तो मैं बहुत खुश हो जाऊं और दूसरे को सुनकर नाराज हो जाऊं। पति बोला, देखो पहली बात तुम मेरी जिंदगी हो और दूसरी बात लानत है ऐसी जिंदगी पर।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा ह्यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

आइए दोस्तों, थोड़ा सा जोश से भर जाते हैं, थोड़ा उत्साहित होते हैं। पूरी जिंदगी हमारी उसी पर निर्भर करेगी दोस्तों। दोस्तों, हमारे पूर्वजों की जीवन शैली हेल्दी रहने के लिए इसलिए थी क्योंकि वो प्रकृति के पास थे, नेचर के नजदीक थे। सुबह सुबह का वातावरण इतना शांत और पवित्र होता है कि ऋषि मुनि ब्रह्म मुहूर्त में भजन पूजन करते थे। वे मुर्गे की बांग के साथ उठते थे और चांद निकलने पर तुरंत सो जाते थे। वो अपने शरीर को प्रकृति के साथ चलाते थे। आज प्रकृति का मनुष्य से संपर्क तो टूट ही चुका है। रात को देर तक जागने से, सुबह देर से उठने से इस फूर्ति का अभाव तो होता ही है और आलस भरा रहता है। नए अनुभवों से सामंजस्य बैठाने के लिए पॉजिटिव आत्मक छवि यानी कि अपने बारे में अच्छा सोचना बहुत जरूरी है। जब आपकी सोच बदलती है तो आपके एक्शन बदल जाते हैं, जिससे आपकी उपलब्धियां बदल जाती हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने, सम्मान पाने और अच्छे परिणामों से सकारात्मक बदलाव लाने की चाबी अच्छी आत्म छवि बनाए रखने में है। अपने बारे में अच्छा सोचिए दोस्तों। अपनी बातों पर अड़े रहने का रवैया आपकी तरक्की की राह में बाधा बन जाएगा दोस्तों। फ्लेक्सिबल होना सीखिए, लचीला बनना सीखिए। इस अड़ियलपन से निजात पाने के लिए आपको अपने पुराने विचारों को उस समय हटाना ही पड़ेगा जब कोई ये साबित कर रहा हो कि इससे नया और बेहतरीन विचार उनके पास है। जरा सुन तो लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। ठहराव से बचना है तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि आप गलत हो सकते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति की पहचान यही है कि वो नए के लिए तैयार रहे।

दोस्तों, रेडियो सुनने का एक और फायदा बताता हूं। रेडियो अच्छे सकारात्मक गीत संगीत और विचारों के साथ आपके दिमाग की आपके मस्तिष्क की व्यायाम शाला है। आप रेडियो बिना उसकी तरफ देखे हुए सुन सकते हैं। अपने काम करते रहिए और रेडियो सुनते रहिए, है ना मजेदार रेडियो के साथ।

ये करीब 90 साल पुरानी बात है। एक बनारसी बंगाली किशोर बड़े ही शौक से कलकत्ता पहुंचा। देश की राजधानी रह चुका हुआ यह शहर तब दिसंबर की गुलाबी ठंड से सराबोर था। कलकत्ते से समुद्र ज्यादा दूर नहीं है, पर वो उस हुगली नदी की गोद में बसा हुआ है जिसमें गंगा का जल बहता है। बड़ी खूबसूरत बात है कि बंगाल में आते ही गंगा जी ज्यादा कलाकार हो जाती हैं, अपना नाम बदलकर पद्मा और हुगली रख लेती हैं। बहरहाल वो जमाना था जब कलकत्ते में खड़े होकर बनारस के रंग को महसूस किया जा सकता था। वो किशोर भी बस उसी रंग में डूबा हुआ था। कहीं से सितार, कहीं से शहनाई, तो कहीं से मृदंग की गूंज उठती थी। वहां विशाल संगीत समारोह चल रहा था। देश भर के आला संगीतज्ञ वहां थे, एक से बढ़कर एक सजीले, खूब चमकदार रंगीन पोशाकें और उन पर शोभित खूब सारे पदक मेडल्स, उस पर से भी भारी भरकम गहनों के क्या कहने, मानो किसी राजा की बारात जा रही हो जिसमें खूब सारे राजा राजकुमार आए हों, पूरा जौहर जलवा दिखाने। पर सजीलों की भीड़ में एक बहुत ही सादे और साधारण से व्यक्ति भी विराजमान थे। बस उन्हीं पर किशोर की नजर ठहर गई। वो किशोर 4 साल से नर्तकों की दुनिया का वासी था। 10 साल की ही उम्र में यूरोप घूम रहा था। एक से बढ़कर एक कलाकार सामने आए थे उसके, पर अभी नजर बार बार ऐसे सज्जन पर ठहर जाती थी जो कतई प्रभावशाली नहीं दिख रहे थे। किशोर ने शायद अपने बड़े भाई उदय शंकर से पूछा तो पता चला कि ये साधारण से दिख रहे संगीतज्ञ का नाम उस्ताद अलाउद्दीन खान है। कई तरह के साज बजाते हैं, किसी संत की तरह रहते हैं। वाकई वो किसी दीपक की तरह लग रहे थे, जिनकी संगीतमय आभा कानों में घुल रही थी, दिल में उतर रही थी और नसों में पसर कर रोम रोम को हर्षित कर रही थी। जब शारदा मां की पावन भूमि मैहर से आए उस्ताद का संगीत सामने आया, तब चारों तरफ फैले सजीले लोग अपना अर्थ खो बैठे। मन बोल उठा कि ऐसे उस्ताद से जरूर कुछ सीखना चाहिए। बड़े सौभाग्य की बात रही कि उदय शंकर की गुहार पर उस्ताद नृत्य मंडली के साथ यूरोप जाने को तैयार हो गए। अब तो उस किशोर को उस्ताद के साथ सुबह शाम रहने का मौका मिल गया। कभी कभी किशोर के मन में होता था कि वो अलाउद्दीन खान साहब को विधिवत उस्ताद बना ले, तो कभी किशोर का मन कच्चापन से हावी हो जाता था। तब उस्ताद ने कहा, तुम पहले तय कर लो कि करना क्या है, सीखना क्या है, कहीं एक जगह मन लगा लो तो चले आना मेहर और सीखना। खैर एक दिन आया जब शिष्य ने फैसला कर लिया, बड़े भाई की ग्लैमरस नृत्य मंडली को अलविदा कहा और बहुत साधारण लिबास में मैहर पहुंचकर उस्ताद के चरणों में समर्पित हो गए। उस्ताद बहुत पक्के थे, उन्होंने ना सीखने में समझौता किया था और ना ही सिखाने में। उस्ताद ने अपनी बेटी अन्नपूर्णा देवी और बेटे अली अकबर खान के समान ही मानकर अपने उस शिष्य को पारंगत किया। पूरे मनोयोग से सीखने सिखाने का दौर चल पड़ा। राग भैरव से भोर होती थी, भीम पलासी से दोपहरी तपती थी, यमन से शाम और मल्लार से रात चढ़ती थी। उस्ताद के आंगन में रोज 18 घंटे संगीत लहरियां उठती थी। वो संगीत के मैहर घराने का स्वर्णिम काल था। अकबर सरोद सीखते थे, अन्नपूर्णा सुरबहार और उस युवा

को सितार के तार पर उंगलियां साधने में लगभग 7 साल लग गए। तब दुनिया को पंडित रवि शंकर के रूप में एक विरल संगीतज्ञ मिला। ऑल इंडिया रेडियो की नौकरी से न्यूयॉर्क लंदन तक पंडित रविशंकर के नाम का सिक्का चलता था। संगीत के जादू से सम्मान की बारिश तो होती ही थी। 7 अप्रैल को दुनिया में आने वाले रविशंकर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो अपने उस्ताद को किसी ईश्वर की तरह मानते थे और हमेशा तमन्ना रहती थी कि उस्ताद कुछ और सिखा दें। देश की अद्भुत हस्ती उस्ताद ने भी रविशंकर को सब कुछ दिया। अपनी बेटी अन्नपूर्णा का हाथ देकर दामाद भी बनाया।

अपने भीतर गहराई तक उतरने की कोशिश करता हूं। अब दोस्तों, ऐसी कोशिश का ही तो कमाल है कि उनका संगीत अमर है।

0: रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज।
1: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
2: एक बार सोनू ट्रेन में सफर कर रहा था। ट्रेन में बहुत भीड़ होने की वजह से वो एक गंजे आदमी की गोद में बैठ गया। आदमी बहुत गुस्से में चिल्ला, मेरे सर पे आके बैठ जा। सोनू बोला,
3: नहीं अंकल, मैं यही ठीक हूँ, वहां से फिसल कर तो गिरने का डर रहता है ना।

संत मेहजी के प्रकांड पांडित्य और विरक्त स्वभाव की ख्याति पूरे जापान में फैली हुई थी। अक्सर जिज्ञासु उनके पास आते थे और अपनी शंकाओं का समाधान लेकर संतुष्ट होकर लौट जाते थे। एक दिन जापान के राज्यपाल कियाजारी उनके दर्शन के लिए पहुंचे। उन्होंने अपने निजी सचिव को अपना परिचय पत्र यानी कि विजिटिंग कार्ड दिया और संत जी के कमरे में भेजा। संत जी ने विजिटिंग कार्ड पढ़ा, उसमें उनके राज्यपाल होने की चर्चा थी। संत जी ने सचिव से कहा, सुनिए भैया, उनसे कहिएगा कि मैं राजकाज की बात करने वाले किसी भी व्यक्ति से नहीं मिलता, क्योंकि मुझे दरअसल राजनीति की बातें आती ही नहीं है। मैं तो केवल धर्म और साहित्य की चर्चा कर सकता हूं। निजी सचिव ने बाहर लौटकर राज्यपाल को संत जी के सारे बातों के बारे में बताया। राज्यपाल जी को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने कागज पर सिर्फ अपना नाम लिखकर भेज दिया। संत जी ने उन्हें बुलवा लिया। घंटों तक बैठकर उनके साथ धर्म की और ईश्वर के संबंध में चर्चा आई करते रहे। जब राज्यपाल लौटने लगे तो संत मेहजी ने कहा, देखिए महाराज, धर्म का सार सेवा, परोपकार, न्याय और करुणा जैसी चीजें होती हैं। ये सभी गुण मानव को अमर बनाते हैं, उसे शांति देते हैं। आप व्यावसायिक तौर पर क्या करते हैं, ये आप नहीं हैं, तो इसे हर जगह पर दिखलाते मत घूमा करिए। दोस्तों, समझने वाली बात है, जब कोई हमसे पूछता है कि आप कौन हो, तो हम बताते हैं कि हम इंजीनियर हैं, हम डॉक्टर हैं, हम साइंटिस्ट हैं, हम पॉलिटिशियन हैं, हम टीचर हैं, हम मजदूर हैं, हम ठेकेदार हैं, हम आर्किटेक्ट हैं और जाने क्या क्या। लेकिन दोस्तों, आपको नहीं लगता कि ये सारी चीजें वो काम हैं जो आप करते हैं? मरीजों को ठीक करना डॉक्टर का काम है, तो आप डॉक्टरी का काम कर रहे हैं। कोई ब्रिज बनाना, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना, कोई नई चीज को बनाना इंजीनियर का काम है और आप इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं। इसी तरीके से और चीजें, पर दोस्तों, आप दरअसल हैं कौन? आराम से विचार करिएगा। हमारे पद, हमारे काम, क्या यही बस हमारी पहचान है? इन काम और पदों के पीछे भला हम हैं कौन? एक बार पूछ के देखिएगा किसी से।

दोस्तों, रेडियो सुनने का एक और फायदा बताता हूं। रेडियो अच्छे सकारात्मक गीत संगीत और विचारों के साथ आपके दिमाग की आपके मस्तिष्क की व्यायाम शाला है। आप रेडियो बिना उसकी तरफ देखे हुए सुन सकते हैं। अपने काम करते रहिए और रेडियो सुनते रहिए, है ना मजेदार रेडियो के साथ।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: माँ, ये लड़कियां इतने व्रत क्यों रखती हैं?
2: माँ ने कहा, बेटा इतनी आसानी से थोड़े ही मिल जाएगा किसी को। तू
1: टिल्लू जो था वो मनी मन सोचता हुआ सोचने लगा, कसम से आज पहली बार देवता वाली फीलिंग सी आ रही है।

मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप हैं जाबुआ के अपने रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम पर और आप सुन रहे हैं प्रेरणादायक बातों के साथ प्रेरणादायक गीत। जर्मनी के क्लॉस्टल शहर में उस बच्चे ने होश संभाला, तब अपने परिवार को खूब लंबा चौड़ा पाया। उसके दो तो बड़े भाई थे और उससे छोटे 10 भाई बहन, मतलब पूरे 11 भाई और 2 बहनें। छोटे भाइयों को बड़े भाइयों के बड़े होने का इंतजार रहता था ताकि बड़ों के कपड़े उन्हें मिल जाएं। हफ्ते में 2 दिन अच्छा खाना मिलता था, बाकी दिन सूखी ब्रेड। शक्कर का तो स्वाद बच्चों ने चखा ही नहीं था। पिता खदान में काम करके बस जरूरी धन कमा पाते थे। देर रात जब पिता सुस्ताते थे तब दूर देश की कहानियां सुनाते थे, तो वो बच्चा भी दुनिया घूमने की तमन्ना से भर जाता था। धन की सीमा होती है पर मन की तो नहीं ना, मन तो बार बार सरहदें लांग जाता है। सरहद पार की खबरें अखबारों में ही आती हैं, तो वो बच्चा आसपास आने वाले अखबारों में झांकने लगा। अखबार पढ़ने वालों से सुनता रहता था और पढ़े हुए अखबार को बार बार पलट पलट कर देखता था। एक एक अक्षर में झांकते हुए वो बच्चा अखबार पढ़ना सीख गया। एक दिन मां बाप दोनों दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो गए कि उनका महज 5 साल का बच्चा अखबार पढ़ रहा है, ये तो चमत्कार है। अक्षर तोतली आवाज में साकार होने लगे, जबकि बच्चा स्कूल भी नहीं गया था। खुशनसीब मां बाप ने मन ही मन इस बच्चे पर खास ध्यान देने का फैसला कर लिया। उसके बाकी भाई बहन खूब खेलते थे, लेकिन वो जीव जंतु फूल पत्ती में ही लगा रहता। एक दिन वो पिता के टूटे हुए संदूक के सामान को देख रहा था, उसमें उसे एक पुराना पॉकेट लेंस दिखाई दिया। उस मैग्नीफाइंग ग्लास में खरोंच के निशान थे, पर बालक ने उसे उठा लिया और पिता के पास पहुंचा। पापा ये मुझे दे दीजिए ना, मैं अपने जंतुओं को इसकी मदद से देखूंगा। पिता फिर चौंक उठे और उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो जानते थे कि उनका पुत्र प्रकृति के प्रति अथाह जिज्ञासा से भरा है, तो इसे रोकना ठीक नहीं होगा। उन्होंने खुशी के साथ कहा, लेंस ले लो बेटा और सदुपयोग करो इसका। फिर क्या था, वो बच्चा घंटों जीव जंतुओं को निहारा करता और उसे अलग ही संसार नजर आने लगा। प्रकृति प्रेम ही उसे चिकित्सा शास्त्र की ओर ले गई, और इसमें एक खास पहलू ये भी था कि डॉक्टर बनने से तब दुनिया के घूमने की संभावनाएं बढ़ सकती थी। उम्र कुछ बढ़ी तो दोनों बड़े भाई कमाने के लिए अमेरिका चले गए, पर उसे मां ने जाने नहीं दिया। मां की इच्छा थी कि कम से कम एक संतान पढ़कर नाम रोशन तो करे। किसी तरह परिवार ने हिम्मत दिखाई और उसे स्कूल पास युवा को गोटिंगेन शहर उच्च शिक्षा के लिए भेज दिया। तब पिता तो पुत्र की तेजी देखकर सकुचा जाते थे कि अगर रुचि दिखाएंगे तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। समझदार युवा ने सोच लिया कि आगे का रास्ता उसे खुद तय करना है। विश्वविद्यालय में उसने एक शोध पत्र लिखा, जिसमें सबसे ऊपर उसने लिखा, कभी बेकार मत बैठिए, कभी निष्क्रिय मत रहिए। वाकई दुनिया जो देख रही है वो दुनिया जिसे केवल मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा जा सकता है, दोनों में कुछ भी निष्क्रिय है ही नहीं। ये शोध पत्र इतना कामयाब हुआ कि उन्हें पूरे $60 पुरस्कार में मिले, संग्रहालय में नौकरी भी मिली और लोग उस विद्यार्थी को रॉबर्ट कोच के नाम से जानने लगे। रॉबर्ट कोच ने पिता को फिर अचंभित कर दिया। अपने मजाकिया लहजे में पिता को पत्र लिखा, कभी कभी ऐसा हो जाता है पापा, अंधी मुर्गी को भी मक्की का दाना मिल जाता है। समझिए मेरे साथ ऐसा ही हो गया।
अब जैसे जैसे परीक्षण की सुविधाएं बढ़ती गईं, रोबोट कोच विशेष रूप से खतरनाक बैक्टीरिया के चक्रव्यूहों को भेदते चले गए। सबसे पहले उन्होंने जानलेवा बीमारी एंथ्रेक्स के बीजाणुओं को खोज निकाला। चकित रोग वैज्ञानिक जूलियस कोहन हेम ने तब खुशी से भरकर कहा, यह तो बहुत बड़ी खोज है और ये युवा रॉबर्ट कोच अपने परीक्षण प्रतिभा में हमसे बहुत आगे निकल गया है। ऐसा ही हुआ। रॉबर्ट कोच ने बैक्टीरिया का पीछा करते करते दुनिया को 24 मार्च 1882 को बताया कि जानलेवा बीमारी तपैदिक का रोगाणु कैसे काम करता है, और रातों रात वो दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। रोगाणुओं की विशाल बस्तियों में खोजते खोजते रॉबर्ट कोच ही थे जिन्होंने एक दिन बताया कि हैजा कैसे होता है। उनकी खोजों में अनेक प्रकार की दवाइयों के लिए रास्ता आसान बना दिया गया। कभी खूब अभाव देखने वाले इस इंसान ने खूब पैसे कमाए, लेकिन अहंकार छू न पाया उन्हें। वो कहते थे, मैं तो टहल रहा था, सोना राह के किनारे पड़ा था, संजोग से मुझे दिख गया बस। बेशक नोबेल प्राइज से सम्मानित इस वैज्ञानिक को दुनिया भूल नहीं पाएगी। तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूं समीर, कल मिलते हैं।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग
2: अजय मुक्केबाज MC मेरी कॉम
3: भारत की MC मैरी कॉम ने 5वीं अंतर्राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने रोमानिया की स्वेलुटा कुटा को 7-1 से हराया है।

0: अरे भाई कमाल हो गया, लगातार चौथी बार गोल्ड मेडल, कुल 5 प्रतियोगिताओं में 4 बार गोल्ड मेडल।
1: वो छोटी सी बामुश्किल 5 फुट ऊंचाई वाली मैरी कॉम,
0: हाँ?
1: अरे उसने तो अभी सितंबर 2007 में प्यारे से जुड़वा बेटों को जन्म दिया था।
2: अरे भाई 27 साल की उम्र में 1 साल के 2-2 बच्चों के साथ लगातार चौथी बार, अरे वो कमाल है, मैरी कॉम कमाल है।

0: नवंबर 2008 के आखिरी सप्ताह में जब पूरी दुनिया मुंबई में आतंकवादी हमलों को लेकर भारत के प्रति दुख और चिंता व्यक्त कर रही थी, तभी देश के सुदूर उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर की एक छोटे से कद की छरहरी महिला ने दुनिया को भारत की ताकत की वानगी पेश कर दी।
1: दो साल तक घर गृहस्थी में व्यस्त रहने के कारण मुक्केबाजी से दूर रहने और महज चार महीने के अभ्यास के बाद एमसी मैरीकॉम ने 46 किलो संवर्ग में एक बार फिर अपना लोहा मनवा लिया। चीन की मिंगबो सिटी में संपन्न प्रतियोगिता में मैरीकॉम के मुक्कों के आगे कोई नहीं टिक पाया।
2: Interesting. I can see a great cheering crowd. Maria of the United States has punched to the right. Mary Kom of India defended very well and punched back. And now showers of punches from Mary. Maria is knocked out and yay! Mary Kom of India is the champion of the 46 kg boxing match.
0: आश्चर्य की बात है कि मैरी कॉम पहले 400 मीटर दौड़ और भाला फेंक में हिस्सा लेती थी और राज्य की चैंपियन भी थी। 1999 के बैंकॉक एशियाई खेलों में मणिपुर के डिंको सिंह ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था और उसी से प्रेरित होकर मैरी कॉम ने मुक्केबाजी सीखने का फैसला किया। लेकिन ये राह आसान नहीं थी। मैरी कॉम मुक्केबाजी सीख रही है ये बात जब पिता को मालूम हुई तो

0: बेटा मैरी, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है ना?
1: पापा, मैंने मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मैंने क्या किया है?
0: अरे गांव वाले कह रहे थे कि तुम स्कूल में मुक्केबाजी सीख रही हो। ये मारा पीटी लड़कों के खेल है बेटा, तुम्हें उसमें कूदने की कोई जरूरत नहीं है।
1: पापा, मेरे प्यारे पापा, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि ये खेल लड़कों का और ये लड़कियों का है? पापू, ये कोई मारा पीटी थोड़ा ही है, खास तो अपना बचाव है, सब कुछ कायदे कानून में होता है।
0: अरे बेटा, कहीं किसी के घूंसे से तुम्हारी नाक टूट गई या तुम्हारा जबड़ा टूट गया तो फिर टूटी नाक वाली लड़की से कौन शादी करेगा?
1: पापा, आप चिंता ना करें, मैं जो करूंगी उससे आपका नाम ऊंचा ही होगा।
0: मेरा नाम ऊंचा होगा? क्या कह रही है ये?
2: और हुआ भी ऐसा ही। सन 2000 में ही पहली राज्य स्तरीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में मैरी कॉम ने स्वर्ण पदक जीत लिया। मैरी कॉम ने भाला फेंकने की अपनी ताकत और दौड़ने के अपने कौशल को अपनी मुक्केबाजी में शामिल कर लिया था।
3: ये खबर अखबारों में छपी, मैरी का फोटो भी था और घर वालों को एहसास होने लगा कि उनकी बेटी अपने परिवार, अपने गांव और अपने राज्य और देश का नाम रोशन करने की राह पर बढ़ रही है। मणिपुर, सात बहनें कहलाने वाले राज्यों में से एक सुंदर पहाड़ी राज्य। राज्य की राजधानी से सटा चूड़ाचंद्रपुर जिले का गांव कंगहुई। एम टोनिया कॉम मेहनत मजदूरी करने वाले एक गरीब व्यक्ति। घर के चूल्हे चौके में दिन भर खटती उनकी पत्नी एम अका कॉम और उनकी बेटी मैरी कॉम। दौड़ती खेलती दुनिया की दिक्कतों के बावजूद

0: सामाजिक संस्थाएं बच्चों को स्कूल के प्रति आकर्षित करने के इरादे से उनके परिवारों को कुछ आर्थिक मदद दिया करती थी।
1: और इसी प्रक्रिया में मेनगेट चंग नेजंग मैरीकॉम यानी एमसी मैरीकॉम, पहले लोकतक क्रिश्चियन मॉडल स्कूल और फिर सेंट जेवियर मोरांग में पढ़ाई करने लगी।
0: पढ़ाई से अधिक वो खेल कूद में आगे रहती। आदिम जाति लई स्कूल इम्फाल में वो हाई स्कूल की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सकी, लेकिन मैरीकॉम के खिलाड़ी मन ने हार नहीं मानी और ओपन स्कूल के माध्यम से वो परीक्षा में फिर बैठी।
1: गरीब परिवार होने के कारण मैरीकॉम को समुचित पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता था, लेकिन मैरी का खेलों के प्रति समर्पण इतना गहरा था कि उन्होंने महज 14 दिनों में मुक्केबाजी के आधारभूत गुर सीख लिए थे। उनके मुक्के में इतना दम था कि कई सालों से बॉक्सिंग सीख रही लड़कियां उनके शुरुआती दिनों में भी उनके सामने नहीं टिक पाईं।

0: गरीबी ने उनके आत्मसम्मान को सदैव ताकत दी।
1: ये घटना उनके स्कूली दिनों की है जब वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कॉलोनी से बाहर निकली।

0: अरे लगता है कोई सवारी आ रही है।
1: रिक्शा वाले भैया, एम्बेसी चर्च चलोगे?
0: अरे आपको ले जाने से कौन मना कर सकता है। बैठिए बैठिए बैठिए।
1: पैसे कितने लोगे?
0: अरे मैडम जी जो देना हो दे देना, आपको तो रेट मालूम ही है ना।
1: ठीक है चलो फिर।

0: मैडम जी, एक बात बोलूं आपसे?
1: बोलो।
0: अगर आप लाल रंग पहने तो बहुत सुंदर लगेंगी।
1: सुनो, ज्यादा बकबक नहीं, अपने काम से काम रखो।
0: बात क्या है कि आप तो दिखती ही ऐसी हैं, कुछ बोले बिना मन नहीं मानता ना।
1: जरा रोको रिक्शा। अरे रिक्शा रोको, सुन रहे हो तुम?
0: अरे गुस्सा क्यों हो रही है? रोकता हूँ।
1: आइंदा किसी लड़की को अकेला देखकर कमजोर मत समझ लेना, समझे?
2: विषम परिस्थितियों में संयम से काम लेना, उनसे डटकर मुकाबला करना एक अच्छे खिलाड़ी का गुण होता है। इन्हीं गुणों के कारण एमसी मैरी कॉम सन 2000 से 2005 तक लगातार 5 बार महिला हॉकी की राष्ट्रीय चैंपियन रही। ऐसा नहीं है कि मैरी कॉम के साथ प्रत्येक कदम पर सफलताएं ही थीं।
3: उन्हें बैंकॉक में होने वाली थाईलैंड एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सिलेक्शन कैंप में शामिल होने के लिए जाना था। सफर के दौरान ट्रेन में उनका पूरा सामान चोरी हो गया। उसमें उनके कपड़े, दस्ताने, पैसे, यहाँ तक के पासपोर्ट भी था।
2: इतने नाजुक हालात का मैरी कॉम ने डटकर मुकाबला किया। उनके एक परिचित अंकल ने भरोसा दिया कि यदि मैरी का सिलेक्शन हो जाता है तो वो सारी व्यवस्थाएं कर देंगे।
3: उन हालात में मैरी कॉम ने अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की टीम में अपना स्थान बना लिया, लेकिन इस बार मैरी को खाली हाथ वापस आना पड़ा।
2: लेकिन मैरी कॉम ने हार नहीं मानी। अमेरिका में आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में मैरी को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। सन 2002 में तुर्की में उन्होंने द्वितीय महिला विश्व स्तरीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। एशियाई प्रतियोगिताएं तो लगातार मैरी कॉम के नाम रही हैं।
3: लेकिन इतने सारे सोने के तमगे मैरी कॉम के घर का चूल्हा जलाने और लगातार प्रशिक्षण व पौष्टिक आहार के लिए पैसा नहीं जुटा पा रहे थे। सन 2005 तक उनके पास न तो नौकरी थी और न ही कोई स्पॉन्सर।
2: शादी के बाद जब मैरी गर्भवती हुई तो लोगों को लगा कि अब इस चमत्कारी मुक्केबाज का करियर खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गर्भ के 7वें महीने तक मैरी कॉम मुक्केबाजी की रिंग में जाती रही। वो अपने पास पड़ोस के बच्चों को मुक्केबाजी का प्रशिक्षण देने लगी। इससे उनका अभ्यास बरकरार रहा।
3: 2 साल तक बॉक्सिंग रिंग से दूर रहने के बाद जब मैरी कॉम ने फिर से मुक्केबाजी के ग्लव्स पहने तो एक नया संकट उनके सामने था।
1: कोच सर, मैं फिर से रिंग में आना चाहती हूँ।
4: फिर से जी। देखो मैरी, तुमने खेल को बहुत कुछ दिया, लेकिन अब तुम्हारी हालत ऐसी नहीं लगती कि फिर से।
1: कोच सर, मेरा शरीर जब तक चलेगा तब तक मैं खेलूंगी। अब बताइए मेरी फिटनेस में क्या कमी है?
4: मैरी, तुम खेलती हो 46 किलोग्राम में, ठीक है ना?
1: जी सर।
4: जब तुम गर्भवती थी तब तुम्हारा वजन क्या था?
1: 67 किलो।
4: और अब?
1: 61 किलोग्राम।
4: देखो मेरी, 61 किलो वजन में तो कोई जगह खाली है ही नहीं। अब तुम 46 किलो कैसे बनोगी? यानी समझ गई ना?
1: कोई बात नहीं सर, मैं आपसे कुछ दिनों बाद मिलती हूँ।
4: कुछ दिनों बाद मिलती हूँ।

वजन कम करने की चुनौती को मैरी कॉम ने सहर्ष स्वीकार किया। उनके पति के ऑनलर ने इस घड़ी में उनका साथ दिया। ऑनलर मोटरसाइकिल पर होते और मैरी कॉम दौड़ लगाती।

0: 15 किलो वजन कम करना लेकिन अपनी ऊर्जा को बचाए रखना कोई साधारण काम नहीं था। साथ में दो बच्चों को भी पालना था। बच्चे केवल 2 महीने के थे और मैरी कॉम को गुवाहाटी में हुई एशियाई चैंपियनशिप के लिए कैंप में जाना पड़ा।
1: उनकी गैर मौजूदगी में उनके दोनों बच्चों की देखभाल उनके पति ने की।
0: तभी तो जब चीन में संपन्न 5वीं महिला अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में मैरी कॉम को गोल्ड मेडल मिला तो उन्होंने इस पदक को अपने पति और बच्चों को समर्पित किया। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, कठिन परिश्रम और आत्मविश्वास से वो यहाँ तक पहुंची थी। अपने बच्चों के प्रति भावुक पलों में उन्होंने कहा,
2: उन्हें छोड़कर आना बहुत मुश्किल था। वो अभी बोलते नहीं लेकिन रवानगी के समय मुझे हैरानी से देख रहे थे कि मम्मी उन्हें छोड़कर कहाँ जा रही हैं। उनसे दूर रहना मुश्किल था लेकिन मैं मुक्केबाजी को उतना ही प्यार करती हूँ।
0: मैरी कॉम को पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार सहित कई सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है। इम्फाल के खेल गांव की ओर जाने वाली सड़क का नाम MC मैरी कॉम मार्ग रखकर मणिपुर सरकार ने इस जीवट वाली मुक्केबाज महिला को

0: किसी ने पूछा, यदि आप मुक्केबाज नहीं होती तो?
1: तो मैं गायिका होती, मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है।
0: अब मैरी कॉम का लक्ष्य है ओलंपिक में हिस्सा लेना।
1: मेरा सबसे बड़ा सपना है ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करना, और उम्मीद करती हूँ कि सन 2012 में लंदन ओलंपिक में मेरा ये सपना जरूर पूरा होगा।
2: खेल जिंदगी को मैरी कॉम की तरह एक ऊंचे मकाम तक पहुंचा सकते हैं, बशर्ते इसके प्रति लोगों का नजरिया बदले।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज।

मार्च का महीना है। होली के रंगों के साथ ही स्वेटर रजाई बक्सों में बंद होने लगे हैं। पिछले यही तो दिन थे जब अचानक सुबैया सुबह सुबह आया था, चाय की चुस्की के साथ बोल पड़ा था, यहां के हल्ले गुल्ले भीड़ भाड़ से परेशान हो गए हैं, कहीं ऐसी जगह चलो जहां कुछ पल सुकून के मिले। ढेर सारे नक्शे किताबें पलटी थी हमने। अरे हाँ सुबैया मेरा दोस्त, इससे तो मिलने, मेरा मित्र, मेरा सहकर्मी, शांत गंभीर संकोची लेकिन जिज्ञासु,

हम पहुंच गए वहां जहां लगा कि शायद स्वर्ग की कल्पना यही होगी। वहां देखे सुने महसूस किए हर पल हर घटना को मैंने अपनी डायरी में दर्ज किया है। तो मेरी डायरी के सहयात्री बनेंगे

0: यमुनोत्री, यमुना का उद्गम स्थान। यमुनोत्री तक की यात्रा आसान नहीं थी। एक ओर ऊंचे पहाड़, चढ़ाई, उस पर तेज ढलान, उन पर चढ़ना मेरे लिए मुश्किल था। जैसे तैसे उठते बैठते हांफते हुए चढ़ तो गए। साथ में कुछ लोग और भी थे, उन्होंने हिम्मत बनाए रखी।
1: अब मुश्किल लगेगी भाई।
2: चलो भाई, बस बस थोड़ी दूरी तो है।
0: अरे तुम तो अभी कम उम्र के हो सुरैया।
1: मैं थोड़ा सुस्ता लूं।
2: ठीक है।

चढ़ते वक्त गर्मी महसूस हो रही थी, लेकिन पसीना नहीं आ रहा था। रास्ते में ऊंचे ऊंचे पहाड़, एक ओर गहरे खड्ड और घाटियां जो हरे

भरे पेड़ पौधों से ढकी हुई थी। दूसरी ओर ऊंची चोटियां बर्फ से ढकी दूर दिखाई दे रही थी। तेज हवा अपनी मौजूदगी का एहसास करा रही थी, लेकिन पहाड़ियों का सिलसिला चलता ही जा रहा था।

0: अरे लगता है हम यमुनोत्री पहुंचने वाले हैं।
1: अरे चलो चलो, वो उस सामने ही यमुनोत्री है।
0: हाँ सामने? सच में?
1: हाँ हाँ,
0: इतना पास
1: सामने। चलो संभल कर।
0: अब मुश्किल लग रही है भाई।
2: फिर चढ़ना शुरू किया। सस्ताने से थोड़ी ताकत व हिम्मत बन गई। बर्फ की सफेदी इतनी थी कि आसमान का नीलापन भी कम दिखाई दे रहा था। मेरे लिए ये एक नया अनुभव था। कुछ देर की चढ़ाई के बाद हम यमुनोत्री पहुंच गए।
1: अरे बस बस पहुंच ही गए। आ जाओ आ जाओ।

0: बिल्कुल सामने देखो, सूर्य की किरणों का कमाल।
1: वाहरे कुदरत, बर्फ के इतने रंग। अरे मैंने कभी सोचा भी नहीं था सूर्य की किरणें बर्फ में रंग भर सकती हैं। वाह,
0: हम यही कोई समुद्र तल से 3000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर हैं। हर यमुनोत्री उत्तराखंड राज्य के टिहरी और उत्तर काशी जिले में पड़ता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की एक चोटी है बदरपुच्छ, जानते हो ये सुमेर भी कहलाती है।
1: अच्छा,
0: इसका एक भाग है कलिंद, यही यमुना का उद्गम है।
1: वाह सुभैया, खूब जानकारी।

पहने हुए गर्म कपड़े सर्दी नहीं रोक पा रहे थे। पास में चाय का एक खोखा था। हमने चाय पी, कुछ गर्मी आई। कभी कभी सांस लेने में कठिनाई सी जरूर होती थी। हम हांफने लगते थे क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। यमुनोत्री एक हिमनद यानी बर्फ का चलता हुआ ग्लेशियर है। इसी से यमुना नदी निकलती है। यमुनोत्री पीर पंजाल की पहाड़ियों का ऊपरी भाग है जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है। पीर पंजाल की पहाड़ियां छोटे और बड़े हिमालय के बीच का भाग है। यहां पर वायुमंडल की निचली परत ट्रोपोस्फीयर में तापमान ऊंचाई के अनुसार घटता जाता है, इसीलिए पहाड़ों पर तापमान कम होता है, सर्दी मैदान से अधिक पड़ती है। यमुनोत्री पर चारों ओर सन्नाटा था। हम केवल चंद ही लोग थे वहां। एकदम जीवन रहित, यहां तक कि परिंदे भी दिखाई नहीं पड़ते थे, केवल बर्फ ही बर्फ, वो भी दूर दूर तक। बर्फ पर चलने से पैर नीचे की ओर धस रहे थे। तापमान शून्य से कम होने के कारण पेड़ पौधे घास फूस कुछ भी नहीं उग पाते।

लोग टहलते हुए पहाड़ की दूसरी ढलान की ओर गए। वहां कुछ और ही देखने को मिला। बर्फ के नीचे से थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा था, और वो भी शून्य से कम तापमान पर, जहां सब कुछ जमा हुआ था।

0: सब कुछ जमा हुआ है, वहां पानी कैसे?
1: जब करीब जाकर देखा, बर्फ का निचला भाग खोखला था। अंदर हाथ डालने से पता चला कि बर्फ का खोखलापन दूर तक है। इसका कारण क्या है, मैं सोचता रहा और अंत में मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि बर्फ जमीन की गर्मी से पिघल रही है। एक पतली सी पानी की धार ढलान से नीचे की ओर बह रही थी।

पानी की धारा का रुख उत्तर की ओर था। इसके साथ साथ हमने नीचे उतरना शुरू किया। यहां छोटी छोटी कई और धाराएं भी मिल रही थी। पानी को हाथ में लेकर देखा, बहुत ठंडा था। ठंड से हाथ में ठिठुरन चढ़ गई। उतरते हुए देखा नीचे की ओर बर्फ कम हो रही थी। केवल दो पहाड़ों के बीच की घाटियों में काफी बर्फ थी। हिमालय पर्वत परतदार चट्टानों से बना है। परतों के बीच बीच में मिट्टी, कंकड़, पत्थर देखे जा सकते हैं। ऐसी बनावट कमजोर होती है, खास तौर से बरसात के समय। पानी जब मिट्टी, कंकड़, पत्थर के बीच से गुजरता है तो चट्टानें कमजोर होकर खिसकने लगती हैं। बरसात के मौसम में लैंडस्लाइड का खतरा रहता है।

कुछ दूर चलने पर हमें मलबा दिखाई दिया। अब पहाड़ एवं ढलानों पर कहीं कहीं घास दिखाई देने लगी। मैंने एक चोटी से खड़े होकर देखा, कुछ दूर भेड़ बकरियां

पानी की धारा भी अब बड़ी हो गई थी। इसी के साथ हम नीचे की ओर उतर रहे थे। पानी की इस धारा को यमुना नदी मानने में कुछ झिझक हो रही थी। सो चरवाहों के पास जा पहुंचे।

0: अरे भैया जरा सुनना।
1: कहो बाबूजी।
0: क्या यही यमुना है?
1: यमुना नदी देख रहे थे?
0: हाँ
1: यही यमुना है।
0: क्या इतनी छोटी सी?
1: हाँ आगे चलकर बड़ी हो जाएगी।
0: अच्छा

चारों ओर देखा कि घाटियों में बड़े बड़े पेड़ थे, ढलानों पर घास थी, चट्टानें काई से ढकी थी, कहीं कहीं नई घास निकल रही थी। चरवाहों के साथ साथ हम भी आगे बढ़ने लगे। यहां पर चरवाहों को बकरवाल कहते हैं। हमने स्थानीय बोली में उम्र में छोटे दिखाई देने वाले एक चरवाहे को रोका और भुला कहकर संबोधित किया। भुला का मतलब है छोटा भाई।

0: अरे सुनो भाई।
1: जी साहब।
0: भोला, इतनी ऊंचाई पर इतनी ठंड में भेड़ों के साथ क्यों आते हो?
2: साहब ऐसा है, गर्मियों के समय मैदानों में पानी और घास सूख जाती है। हिमालय के पहाड़ों में पानी घास फूस खूब मिलता है साहब।
0: अच्छा अच्छा, ये बताओ कि कब तक रहते हो यहाँ?
2: हम यहाँ आना शुरू करते हैं साहब अप्रैल मई में।
0: अच्छा।
2: पहले शिवालिक की पहाड़ियों में घास चराते हैं। यहाँ बड़े पत्ते वाले पेड़ हैं, भेड़ बकरियाँ कम खाती हैं, इसलिए यहाँ कम समय रहते हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, शिवालिक की पहाड़ियों के बाद आप कहाँ जाते हैं?
2: शिवालिक के बाद साहब धौलाधार के पहाड़ों में चराते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं क्योंकि धौलाधार के पहाड़ों में खूब घास मिलती है।
0: अच्छा।
2: गर्मियों में बर्फ पिघलने के बाद नई नई घास फूटती है जो भेड़ बकरियों को ताकत देती है। इसे खाकर ये अच्छी खासी तंदुरुस्त हो जाती है साहब। हम इन पहाड़ों में कई महीने रहते हैं। पहाड़ की चोटियों पर सर्दियों में बर्फ खूब जमती है साहब। जब घास कम होने लगती है तो हम आगे बढ़ जाते हैं।
0: अच्छा भोला, तुम्हारे बाल बच्चे?
2: हमारे बाल बच्चे सामान के साथ खच्चर या गधों पर बाद में आते हैं। छोटे बच्चों को सामान के साथ गधों पर बैठा देते हैं।
0: गधों पर?
2: हाँ, औरतें हाँकती हुई चली आती हैं। परिवार के साथ कुत्ते होते हैं साहब। वो हमारी रक्षा करते हैं साहब।
0: भाई तुम्हारा जीवन तो बहुत कठिन है भोला।
2: नहीं नहीं साहब, यही तो हमारी जिंदगी है। अच्छा लगता है साहब।
0: अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था क्या है?
2: साहब पढ़ाई लिखाई का तो कोई जुगाड़ नहीं हो पाता, क्या करें, बच्चों को भी यही काम करना पड़ेगा। पैसों का जुगाड़ हो तो पढ़ाई लिखाई की सोचे।
0: धौलाधार के बाद कहाँ जाते हो?
2: धौलाधार की पहाड़ियों के बाद छोटे हिमालय की पहाड़ियों की ओर निकलते हैं। वहाँ हरी घास खूब मिलती है साहब।
0: अच्छा।
2: छोटे हिमालय की ऊंचाई धौलाधार से भी ज्यादा है साहब।
0: अरे वाह,
2: ठंड भी ज्यादा पड़ती है।
0: तो ठंड से बचने के लिए क्या करते हो?
2: ठंड से बचने के लिए साहब हमारे पास ऊनी कपड़े जैसे कंबल, लोई, पट्टू के कोट होते हैं। रात में पड़ाव पर आग जलाते हैं, जंगली जानवरों से बचाव हो जाता है, और हमारे कुत्ते तो रक्षा करते ही हैं साहब।
0: अच्छा ये बता भूला कि सबसे लंबा पड़ाव किन क्षेत्रों में होता है?
2: साहब सबसे लंबा पड़ाव पीर पंजाल के पहाड़ों में रहता है।
0: पीर पंजाल?
2: जी, पीर पंजाल के पहाड़ों में डेरा डाल देते हैं। तंबू ही हमारा घर होता है। हम बकरवाल लोगों का जीवन तो घास फूस पानी चरागाह से जुड़ा हुआ है ना साहब।
0: लंबे पड़ाव के समय तुम क्या काम करते हो?
2: पहाड़ों के चढ़ने की थकान उतारते हैं साहब। जड़ी बूटियां इकट्ठी करते हैं।
0: अच्छा।
2: यही भेड़ बकरियां दूर दूर तक चरती हैं। जगह जगह के बकरवाल यहाँ आकर इकट्ठा होते हैं और हमारी पंचायत भी यही होती है साहब।
0: अच्छा,
1: शहर भी।
0: बहुत अच्छे।

बकरवाल से विदा लेने के बाद हमने नदी के साथ नीचे की ओर उतरना शुरू किया। एक सपाट भूभाग दिखाई दिया जहां तरह तरह के फूल खिले हुए थे। बड़ा अजीब सा लगा, जंगल में मंगल। फूलों को देखकर हमारी थकान दूर हो गई।

0: ऐसा निजाम है कुदरत का। हाँ? एकाएक ये फूल कहां से? भाई ऐसे फूल हिमालय में एक खास ऊंचाई पर मिलते हैं, पर क्यों? एक खास वातावरण के कारण।
1: अब मैं कुछ समझा नहीं।
0: देखो सुबैया, तुमने देखा कि सबसे ऊपर बर्फीले क्षेत्र, काई व हरी भरी घास थी।
1: हाँ।
0: इसके बाद जंगली फूल और जड़ी बूटियां, फिर पेड़ पौधे, जीव जंतु व मानव बस्तियां।
1: अच्छा अच्छा, यानी एक खास आबो हवा में ही ऐसे फूल वाले पेड़ उग सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: अब समझा।
0: तभी दूसरी ओर से एक और भेड़ बकरियों का समूह आता दिखाई दिया।

0: उनके करीब गया।
1: आप सुनिए
2: जी साहब,
0: आप भी बकरवाल हैं?
2: नहीं नहीं साहब, हम तो भोटिया कबीले के हैं साहब।
0: भोटिया?
2: भोटिया?
0: हाँ। अच्छा, अपने बारे में कुछ बताओ।
2: साहब, हमारा पुराना संबंध तिब्बत से था।
0: अच्छा।
2: पहले भारत चीन के बीच व्यापार करते थे साहब। 1962 में भारत चीन की लड़ाई के बाद व्यापार बंद हो गया साहब।
0: अच्छा।
2: अब हम केवल भेड़ बकरियां पालते हैं साहब। हम में से कुछ हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में याक भी पालते हैं साहब।
0: अच्छा, याक भी पालते हैं?
2: हाँ साहब, हमारा एक खास कबीला है साहब, जो गर्मियों में बद्रीनाथ केदारनाथ के आसपास रहते हैं साहब। माणा हमारा आखिरी गांव है जो भारत चीन की सीमा पर है साहब।
0: हाँ हाँ हाँ।
2: माणा हमारा गर्मियों का ठिकाना है साहब। हम पांडवों को अपना पूर्वज मानते हैं साहब।
0: क्या कहा? पांडवों को?
2: हाँ साहब।
0: अरे वाह।
2: आज भी खास उत्सवों पर हम पांडव लीला का अभिनय करते हैं। ये उत्सव कई रोज चलता है साहब। बड़ा ही आनंद आता है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
2: बहुत अच्छा। और हाँ साहब, हम बड़े हिमालय से लेकर मैदानी भागों तक भेड़ बकरी चराते हैं साहब। हमारी औरतें ऊन की कताई, बुनाई, कपड़ा बनाना, बेचना, सभी कामों में निपुण है साहब।
0: सभी कामों में?
2: हाँ, ऊन के बनाए गए कपड़ों को वो खुद ही बेचती है साहब।
0: क्या कहा? खुद ही बेचती है?
2: हाँ साहब।
0: कमाल की बात।
2: अच्छा साहब, नमस्ते साहब।
0: अच्छा, नमस्ते नमस्ते। बकरवाल और भोटिया में कुछ बातें समान है, जैसे भेड़ बकरियां पालना, चरागाह का प्रबंध करना, आने जाने के लिए घोड़े, रक्षा के लिए कुत्ते पालना आदि। ऐसे घुमंतू कबीले हिमालय में कई और भी हैं। भेड़ बकरियों का पालन इनका मुख्य धंधा है। चरागाहों के साथ घर ठिकाना सब बदलता है। गर्मी और सर्दी के ठिकाने अलग अलग होते हैं। भोटिया कबीले के सरदार से बातें करते करते कितनी दूर निकल आए पता ही नहीं चला। अब यमुना की धारा बड़ा रूप धारण कर चुकी है और मुझे लगा यमुना मुझसे कुछ कह रही है।

0: मेरा नाम यमुना है, लोग मुझे जमुना के नाम से भी पुकारते हैं। प्राचीन ग्रंथों में मुझे सूर्य की पुत्री सूर्यतन्या, यम की बहन यमी और कालिंदी भी कहते हैं। गंगा की तरह मैं पवित्र नदियों में से एक हूं। मैं उत्तराखंड राज्य के यमुनोत्री हिमनद से निकलती हूं, जो उत्तर काशी के टेहरी जिले में पड़ता है। यहाँ पीर पंजाल की पहाड़ियों की कुछ चोटियां हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं। इन्हीं चोटियों के बीच यमुनोत्री हिमनद स्थित है। यहाँ बर्फ का ही साम्राज्य है। चारों ओर दूर दूर तक केवल बर्फ। वही मेरा उद्गम स्थान है। इसकी ऊंचाई कहीं 3,000 मीटर तो कहीं 4,000 मीटर है। बर्फ के पिघलने से मेरे जीवन की शुरुआत होती है। जमीन की गर्मी मुझे जीवन देती है। पहाड़ों की ढलान मुझे गति प्रदान करती है। कई सरिताएं मिलकर मेरा आकार और पानी की मात्रा बढ़ाती है। लेकिन आज मैं संकट में हूं। हिमनद जलवायु के परिवर्तन से सिकुड़ रहे हैं। इसका असर आप भी महसूस कर रहे होंगे।
1: हम यमुना के साथ जल्दी जल्दी आगे बढ़े। सोचा रुकने का ठिकाना तलाश करें। थोड़ी देर में बस्ती के पास पहुंचे। ये पहली बस्ती थी बरकोट। पहाड़ी की ढलान पर बसा था ये छोटा सा कस्बा और साथ में यमुना नदी बह रही थी। सड़क के दोनों ओर घर, नीचे दुकानें, चाय व खाने के ढाबे थे। एक छोटे से होटल में हमने खाना खाया और अपना ठिकाना तलाश कर लिया।

0: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं झाबुआ की आवाज पर रेडियो टंट्या भील 90.8 FM, आप ही के रेडियो साथी आरजे राकेश के साथ। तो दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे फाइलेरिया रोग के बारे में। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हाथी पांव बीमारी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं फाइलेरिया बीमारी के बारे में विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी।
0: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
2: हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है फाइलेरिया। फाइलेरिया एक ऐसा रोग है जिसके संक्रमण होने के बाद उसके लक्षणों का पता कभी कभी 10 से 12 वर्षों में चलता है। इस बीमारी से बचाव ही इसका इलाज है। और वो आसान सा बचाव क्या है? साल में एक बार खाई जाने वाली फाइलेरिया से बचाव की गोली। और इस विषय पर हमें आज जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आई हुई हैं डॉक्टर सारिका सिंह। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब तकनीकी सलाहकार हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश से। और डॉक्टर साहब, हम फाइलेरिया विषय पर बात कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे सबसे पहले आपको बताएं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे पता चल सकता है कि कोई व्यक्ति फाइलेरिया से संक्रमित है।
3: जी, फाइलेरिया रोग जो है वह परजीवी कृमि से होता के फैलने से होता है। इसके जो मुख्यतः लक्षण होते हैं वह शरीर में, मनुष्य के शरीर में, शरीर के कुछ अंगों में जैसे कि पैर है, हाथ है, उनके अंडकोश हैं, उसमें सूजन आने लगती है। वह सूजन इस प्रकार होती है कि हाथी के पाँव के समान लगती है, इसलिए उसको हाथी पाँव भी कहा जाता है। इसमें शरीर में लालपन भी आ जाता है, इसमें फीवर आ जाता है, बुखार आता है और त्वचा भी निकलने लगती है शरीर से।
2: जी, तो ये सारे तमाम सारे लक्षण हैं और जैसा कि आपने बताया इसे बोलचाल की भाषा में हाथी पाव भी कहते हैं। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि फाइलेरिया रोग कैसे होता है और उसके बाद ये फैलता कैसे है।
3: जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह परजीवी कृमि से होता है। जो फाइलेरिया के कीटाणु हैं वह संक्रमित मनुष्य को अगर कोई मच्छर क्यूलेक्स होता है अगर काटता है तो वह उसको संक्रमित करता है। फिर उस संक्रमित मच्छर अगर फिर से वह किसी मनुष्य को काटता है तो वह उनको संक्रमित करता है। इस प्रकार से यह चक्र चलता रहता है।
2: यानी कि आपके कहने के आधार पर क्यूलेक्स नाम का जो मच्छर है वो इस बीमारी का वाहक है। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है कि जो विसंगतियां हमारे शरीर में आ जाती हैं फाइलेरिया रोग की वजह से, हाथों पैरों में या शरीर के किसी अंग में सूजन, क्या वो कभी ठीक हो पाती हैं?
3: एक बार जब विसंगति आ जाती है जैसे कि शरीर में सूजन आ जाती है हाथ या पैर हो, तो वह पूरी तरीके से नहीं सही हो सकती है। इसलिए इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है।
2: जी जी जी, जान लेना चाहिए कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली इस उन्मूलन अभियान में खिलाई जाती है उसका जरूर सेवन करें। और जी बताइए
3: आकांक्षा जी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये अभी जड़ से नहीं खत्म कर सकते हैं, इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है। तो इसको, लेकिन अगर ये एक बार फाइलेरिया ये हो गया है किसी को, तो वह चिकित्सा परामर्श लेके इसके लिए हमारे पास दवाइयां उपलब्ध हैं सरकारी अस्पताल में, उनसे वो चिकित्सा उपचार लेके वह दवाइयां खा सकते हैं। साथ में ये हमारी सरकार जो है यहाँ पे हाइड्रोसिल के ऑपरेशंस भी होते हैं जिनसे कि वह दूर होता है उससे।
2: जी डॉक्टर साहब, फाइलेरिया उन्मूलन का जो अभियान चलाया जाता है हमारे प्रदेश में, हमारे दर्शकों को बताइए कि वो कब से कब तक चलाया जाता है और इसके अंतर्गत जो गोली खिलाई जाती है क्या वो किसी एक निश्चित स्थान पर खिलाई जाती है?
3: ये हमारा जो ये फाइलेरिया अभियान होता है, उन्मूलन अभियान होता है, इसको मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। हमारे यहाँ प्रदेश में यह दो चरणों में चलता है, एक फरवरी में और एक नवंबर में। ये दो तो हमारे खत्म हो चुके हैं लेकिन अगले वर्ष फिर से यह शुरू होगा। इसमें स्वास्थ्य कर्मी सभी ग्रामीण और शहरी इलाकों में घर घर जाकर फाइलेरिया की गोली निःशुल्क देते हैं और अपने सामने खिलाते हैं। यह एक साथ खिलाया जाता है, सार्वजनिक रूप से खिलाया जाता है, इसलिए इसका उन्मूलन के लिए यही प्रयास है।
2: जी बिल्कुल। और हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहेंगे कि जब भी उनके घर पे उन्मूलन के लिए गोलियां खिलाने के लिए कार्यकर्ता पहुंचे वो इस गोली का सेवन जरूर करें। डॉक्टर सिंह के मन में जरूर एक बात आ रही होगी कि यदि किसी को बुखार है या कोई और छोटी मोटी सीजनल परेशानियां चल रही हैं तो क्या तब भी वो इस गोली का सेवन कर सकते हैं?
3: जी, ये दो वर्ष से कम बच्चों को नहीं दिया जाता है, गर्भवती महिलाओं को नहीं दिया जाता है और अगर वह किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं तो उनको नहीं दिया जाता है। बाकी ये सभी प्रकार के व्यक्ति खाना चाहिए, सभी उम्र के व्यक्तियों को खाना चाहिए।
4: जी मेरा प्रश्न ये है कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली है ये क्या फाइलेरिया ग्रसित व्यक्ति खा सकता है या स्वस्थ व्यक्ति को भी खानी चाहिए?
2: जी बताइए डॉक्टर।
3: ये संक्रमित और असंक्रमित दोनों प्रकार के व्यक्ति खा सकते हैं और इनको साल भर में एक बार अवश्य सेवन करना चाहिए।
2: जी डॉक्टर साहब की तरफ से ये भी हमारे कार्यक्रम की तरफ से आपको जरूर जाननी चाहिए कि यदि फाइलेरिया हो चुका है तो दवाओं के माध्यम से इसे उसी स्टेज पर रोका जा सकता है, इसलिए बचाव की खोली खानी जरूरी है आप सभी के लिए। और डॉक्टर साहब इसी के साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या फाइलेरिया से बचाव की गोली जब भी हमें किसी को संक्रमित व्यक्ति है वो भी खा ले या सिर्फ जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वही खाएं, दोनों के लिए कितनी फायदेमंद है?
3: ये दोनों के लिए फायदेमंद है। अगर कोई संक्रमित है इससे तो वह उसी स्थान पे उसको दूरगामी प्रभावों से रोका जा सकता है और जिसको नहीं है उसको उसके बचाव के लिए ये उपाय है हमारे लिए,
2: तो दोनों को ही खानी चाहिए।
3: और अगर किसी को गंभीर बीमारी है, अगर उनको कोई भी शक है कि हम ये खाएं या ना खाएं, तो वह हमारे निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाके वहां पे उनके चिकित्सा उपचार ले सकते हैं और उनसे परामर्श ले सकते हैं,
2: अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं।
3: जी
2: और डॉक्टर साहब एक
5: क्या फाइलेरिया की दवा एक बार खा लेने से साल में पूरे साल इससे बचा जा सकता है?
2: बताइए।
3: जी नितिन जी, एक बार अगर आप सेवन इसका कर लीजिए तो इनके दूरगामी प्रभावों से बचा जा सकता है।
2: आज हम बात कर रहे हैं फाइलेरिया विषय पर और हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तकनीकी सलाहकार डॉक्टर सारिका सिंह जी। और डॉक्टर साहब हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो उन्मूलन का अभियान है इसमें जन सामान्य से किस तरह के सहयोग की अपेक्षा हम कर सकते हैं?
3: ये जब अभियान चलता है हम सभी यही बोलेंगे कि आप कृपया उनका सेवन अवश्य करें, जब हमारे स्वास्थ्यकर्मी उनके घर जाते हैं तो उनका सहयोग उनमें सहयोग प्रदान करें और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें, इसका सेवन करना बहुत आवश्यक है जिससे हम इनका उन्मूलन कर सकें।
2: जी और डॉक्टर साहब एक चीज और बहुत जरूरी जानकारी है जो इससे रिलेटेड हमारे दर्शकों को जरूर मिलनी चाहिए कि क्या फाइलेरिया रोग किसी खास वातावरण, मौसम या उम्र में ही होता है?
3: नहीं, इसके फाइलेरिया के जो है वह किसी उम्र या वातावरण से संबंधित नहीं है, या किसी भी समय और किसी भी मौसम में हो सकता है और किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। यह विशेषता इसके जो कीटाणु हैं वह शरीर में जो रक्त प्रवाह है उसमें वह रात में 10 बजे से लेके 2 बजे तक ज्यादा परिलक्षित होते हैं। अच्छा। तो जब किसी का कोई भी अगर किसी को जांच करानी होती है तो वह उनका जो ब्लड का सैंपल है वह रात में ही लिया जाता है।
2: अच्छा। जी जी, रात के 10 बजे से 2 बजे तक दबा ज्यादा
3: वह सबसे ज्यादा दिखते हैं। जी
5: जी। और मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि क्या फाइलेरिया की कोई होम्योपैथिक दवा भी है?
2: जी बताइए।
3: इसके लिए मैं आपसे यही आग्रह करूंगी कि आप अपने निकट के चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए और वहां पे आप चिकित्सकीय सलाह लीजिए।
2: जी
1: श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने फाइलेरिया रोग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त किया। श्रोताओं, हमने जाना है फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें हमारे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहिए और इसकी गोली को अवश्य खाना चाहिए। तो श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनते रहिए रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज पर।
0: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
6: हूँ से आरजे राकेश
7: अने हूँ से आरजे कमता डामोर
6: समूह हामली रासे कार्यक्रम खेती वाड़ी आपड़ा झाबवाना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआनी आवाज पर।
1: नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है तुम्हारो सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआनी आवाज पर। हूँ से आरजे राकेश अने रोजनी जेम तमारी वस मा आज फेर कार्यक्रम खेतीवाड़ी लीने हाजिर थायो से। अने किसान भाइयों, हूँ रोज तमारी वस मा खेतीवाड़ी देखा जोड़ायेला मुद्दा, खेतीवाड़ी नी समस्याओं अने तिना समाधान नी वातियो लीने रोज इना समय पर हाजिर थातो रहूं से। तो किसान भाइयों, आज ना खेतीवाड़ी कार्यक्रम मा आपु वातियो हमलवाना से एकीकृत खेती नी वातियो बड़ी वातियो आपुन बताड़ है कृषि था जोड़ायेला विशेषज्ञ अने अनुभवी लोग अने हाथे हाथ एवा किसान भाई त्या ये खेती करीने घणो असल अने मोटो मुनाफो कमाई रहा से। तो सालो किसान भाइयों, आज ना कार्यक्रम नी शुरुआत करिए अने हामली एकीकृत खेती नी तकनीकी बातें।
8: हमारा देश प्रगति की राह पर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसमें बहुत बड़ा योगदान है कृषि के क्षेत्र का, वो भी खास तौर पर हमारे उन किसानों का जो कि प्रगतिशील किसान है और नवाचार नई तकनीक को अपनाकर अपनी जिंदगी संवार रहे हैं, साथ ही अन्य किसानों के लिए भी नए नए अवसर पैदा कर रहे हैं। ये किसान कृषि स्टार्टअप, पशुपालन और खेती से जुड़े हुए किसान है, इसीलिए हमारी कोशिश होती है कि देश के कोने कोने में उभरती हुई प्रतिभाओं की कहानियां हम आप तक पहुंचाएं। आज के हमारे सफल किसान है प्रमोद दीक्षित। प्रमोद दीक्षित कई वर्षों से अपने खेतों में प्राकृतिक तरीके से खेती करते आ रहे हैं। इसके अलावा वो मधुमक्खी पालन भी करते हैं जिससे उन्हें अतिरिक्त लाभ होता है। आज के समय में उन्हें कई गुना लाभ हो रहा है। आइए जानते हैं प्रमोद दीक्षित की कामयाबी की कहानी के बारे में।
9: उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध की निर्वाण स्थली के रूप में जाना जाता है, लेकिन यहाँ का इलाका काला नमक चावल की खेती के लिए भी मशहूर है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से के 11 जिलों में काला नमक चावल की खेती की जाती है। सबसे ज्यादा काला नमक धान की खेती बस्ती, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, बलरामपुर, गोरखपुर आदि जिलों में की जाती है। यहाँ के किसान भी काला नमक धान की खेती के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ के किसान अपनी सेहत के प्रति जागरूक हैं। इसी जागरूकता की वजह से किसान खेतों में रासायनिक उर्वरकों की जगह जैविक उर्वरकों का प्रयोग कर जैविक उत्पादों को उगाना बेहतर मानते हैं। जैविक और प्राकृतिक उत्पाद मानव स्वास्थ्य को बेहतर रखने के अलावा खेत की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने में मददगार होते हैं।
8: बहुत सारे अन्य किसानों की तरह प्रमोद दीक्षित भी पहले अपने खेतों में रसायनों का इस्तेमाल करते थे। लंबे समय से रसायनों के अंधाधुंध इस्तेमाल से उनके खेत की मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बहुत कम हो गई थी और ऐसे में उन्हें नुकसान होना शुरू हो गया था। तब उन्होंने जाकर प्राकृतिक खेती को गले लगाया। जी हाँ, वो समझ चुके हैं कि प्राकृतिक खेती ही समय की मांग है और पूरी तरह से उन्होंने रसायनों से तौबा कर लिया। आज के समय में वो देखते हैं कि न सिर्फ मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बेहतर हुई है बल्कि उन्हें अच्छा फसल उत्पादन भी अपने खेतों से प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं इसके बारे में और विस्तार से।
9: भारत सरकार में वैज्ञानिक पद पर काम कर चुके प्रमोद के पास करीब 10 एकड़ जमीन है जिस पर उनके पिताजी खेती करते थे। प्रमोद रिटायर होने के बाद गांव वापस आए तो उन्होंने देखा कि पिताजी सहित क्षेत्र के अधिकांश किसान खेत में रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे खेत को नुकसान हो रहा है, उत्पादकता कम हो रही है। खेत की दशा सुधारने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए उन्होंने प्राकृतिक खेती को अपनाया जिससे उनके खेत की उत्पादकता और आमदनी दोगुना तिगुना बढ़ी। इस बारे में प्रमोद जी कहते हैं,
10: मेरे पास करीब करीब 3-4 गांव में मिला के 10 एकड़ जमीन है तो उसकी खेती मैं करता था और बेसिकली हमारे पिताजी करते थे, हम तो बाहर में थे तो उसमें रासायनिक खाद इत्यादि बहुत डालते थे लोग। और जब मैं रिटायर्ड हो गया तो देखा गांव में सारे लोग डाल रहे हैं इसको, इससे खेत नुकसान हो रहा था, खेत की उत्पादकता कम हो रही थी, केंचुआ नीचे के मर रहे थे। तो मैं सोचा कि क्यों ना खेती को ठीक से किया जाए, वैज्ञानिक तरीके से किया जाए। तो 37 साल का जो अनुभव था कई प्रदेशों का, कई देशों का, उसको संकलित करते हुए मैं इस गांव में, चूंकि अब मेरा अपना गांव था तो यही सोचा कि यहां से कुछ किया जाए ऐसा कि लोग उसको देखें तो उनको फायदा मिले। तो सबसे पहला कदम मैंने कहा किया कि ऑर्गेनिक खाद बनाया, ऑर्गेनिक खाद केचुआ खाद का बनाया। मेरे बगल में 20 गायें थी उनके गोबर को लेके और केचुआ में पंतनगर विश्वविद्यालय से लाया और उसको डाला, खाद बना, उस खाद का प्रयोग मैं अपने सारे खेतों में किया, उत्पादन मेरा ठीक हो गया और मेरा जो ऑर्गेनिक कार्बन है खेत का बढ़ गया और नतीजा ये हुआ कि मैं इस समय 1 कट्ठे में 1 क्विंटल धान पैदा कर रहा हूँ, गन्ना पैदा हो रहा है और हमको 4-5 साल के अंदर में 5-6 लाख रुपया अतिरिक्त मिल गया जो कि हमको पहले 1-2 लाख मिलता था। तो हमारी आमदनी दोगुनी हो गई और किसी किसी उत्पाद में मेरी आमदनी 4 गुनी 5 गुनी 6 गुनी हो गई। और मैं जो है सारा इसको वैश्विक पटल पर भी बेचता हूँ, जो मेरे सारे उत्पाद हैं 24 उत्पाद में बेचता हूँ ऑनलाइन, और वैश्विक पटल पर अमेजन के थ्रू जाता है। तो इससे क्या हुआ कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई, मेरा उत्पादन जो है कम खेत होते हुए भी डबल हो गया, डबल से ट्रिपल हो गया, और कम खेत होने के बावजूद भी मैं जिसके पास 25 एकड़ जमीन है 30 एकड़ उससे ज़्यादा में आमदनी हमको हो रही है। मेरा स्वास्थ्य ठीक है, मेरे परिवार का स्वास्थ्य ठीक है, मेरे खेत का जो मैं जांच कराया था उसकी उर्वरता बढ़िया है, ऑर्गेनिक कार्बन बहुत बढ़िया है, और मधुमक्खी पालन, केचुआ पालन, खेत और पत्ती का खाद और तमाम तरह से करी का पत्ता, सहजन का पत्ता, नीम का पत्ता, और मैंने एक दवा बनाई है संपूर्णा, उससे जो है उत्पादन भी बढ़ता है और बीमारी भी कम होती है। तो कुल मिला के मैं इस ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती से काफी संतुष्ट हूँ।
11: जैविक या प्राकृतिक खेती एक ऐसी पद्धति है जिसमें प्रकृति से मिली चीजों का भरपूर उपयोग किया जाता है। खेत में रासायनिक उर्वरकों, रासायनिक कीटनाशकों और रासायनिक खरपतवार नाशकों की बजाय गोवंश के गोबर और मूत्र के अलावा प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग कर खेत और फसल दोनों को समृद्ध बनाया जाता है। खेत में जैविक खाद, हरी खाद, केचुआ खाद, जीवाणुओं के टीके और कीट प्रबंधन में गोबर और गोमूत्र का प्रयोग किया जाता है। मिश्रित खेती कर खेत की उर्वरा शक्ति को सुधारने का प्रयास किया जाता है। जैविक खेती से भूमि की उर्वरा शक्ति और जल धारण क्षमता में बढ़ोतरी होती है और पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता है। जैविक खादों के प्रयोग से कृषि लागत में कमी आती है और उत्पाद की गुणवत्ता बेहतर होती है। जैविक पद्धति से उगाई जाने वाली फसलों और सब्जियों का मानव जीवन पर कोई प्रतिकूल असर भी नहीं पड़ता है। खेत में प्राकृतिक खेती के फायदे को जान कुशीनगर के सरगरिया गांव के किसान प्रमोद दीक्षित प्राकृतिक खेती ही कर रहे हैं। इसके लिए वो प्राकृतिक संसाधनों और गोवंश के गोबर और गोमूत्र का उपयोग जैविक और बर्मी कंपोस्ट बनाने में करते हैं। गोबर की खाद और प्राकृतिक कीटनाशक बनाने के लिए प्रमोद जी ने गाय भी पाल रखी है। गोमूत्र का उपयोग वो जीवामृत बनाने में करते हैं। प्राकृतिक रूप से मिश्रित खेती करने के फायदे ही फायदे हैं। कुशीनगर और आसपास के जिलों में काला नमक धान यानी बुद्धा राइस की खेती की जाती थी, लेकिन नुकसान के चलते किसान इसकी खेती बंद कर चुके थे। इसे देख प्रमोद जी ने काला नमक धान की पैदावार बढ़ाने का फैसला किया। प्रमोद जी को काला नमक धान उगाने के दौरान डर का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और काला नमक धान उगाने में सफल रहे।
8: इसी के साथ ही सफल किसान में यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सफल किसान में हम आपको बताएंगे कि कैसे प्रमोद जी को मधुमक्खी पालन से फायदा हो रहा है, जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।

0: ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। आज सफल किसान में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से संबंध रखने वाले प्रमोद दीक्षित की। जी हां, प्रमोद जी रासायनिक खेती को छोड़कर अब पूरी तरह से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इसके साथ साथ वो अपने खेतों में मधुमक्खी पालन भी करते हैं, जिससे उन्हें कई तरह के लाभ होते हैं। एक तो ये कि मुख्य फसल में परागण बढ़ता है और दूसरा मधुमक्खी पालन से उन्हें अतिरिक्त आय भी होती है। आइए जानते हैं कि कैसे फॉर्मूला उनके लिए लाभ लेकर आया है।
1: प्राकृतिक खेती करने वाले प्रमोद जी के पास 10 एकड़ जमीन है, जिसमें वो तिलहन खाद्यान्न फसलों के अलावा शहद का भी उत्पादन करते हैं। उनके खेत में लगी सरसों और गेहूं की फसल उनकी सूझबूझ की गवाही देता है। सरसों के खेत के पास प्रमोद जी वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी का पालन कर अपनी आमदनी और स्वास्थ्य दोनों सुधार रहे हैं। वर्कर मधुमक्खियों के परागण के चलते फसल और शहद उत्पादन में भी बढ़ोतरी हो रही है। इस बारे में प्रमोद जी कहते हैं,
2: ये मधुमक्खी उत्पादन के क्रम में मैं यहाँ पर हूँ इस समय अपने खेत में, और यहाँ सरसों का खेत लगा हुआ है। तो सरसों का जो मधु होता है सबसे बढ़िया होता है, तो इसमें आवश्यकता होती है कि खेत के पास होना चाहिए और गांव से बाहर होना चाहिए, तो उसको सोचते हुए इसको बाहर में लगाया गया है और खेत के पास है। तो इसमें मधुमक्खियां उड़ती हैं, इनके जो वर्कर होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, ये उड़ती हैं और खेत में जाती हैं, और दिन भर वो सरसों जितना है 3 किलोमीटर के रेंज में सरसों के पराग को, नेक्टर को और रस को और पालन को लाती हैं। लाने के बाद जो है इसमें अंदर, तो ये सबसे, ये जो नीचे वाला बॉक्स है, दो भाग हैं इसके, ये वैज्ञानिक तरीके से हमने बॉक्स तैयार किया है, यही तरीका होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि नीचे वाला ब्रूड बॉक्स कहलाता है, जिसमें मधुमक्खी रहती है, रानी रहती है, उसके सिपाही रहते हैं, नर मादा रहते हैं, नर भी रहता है। और ऊपर में लगाया गया है एक थर्मोकॉल का बॉक्स, तो उसमें जो है केवल मधुमक्खियां शहद बनाती हैं। तो इससे फायदा क्या होता है कि जब हम शहद लेना होता है तो हम नीचे डिस्टर्ब नहीं करते हैं, क्योंकि जो नीचे अगर डिस्टर्ब कर देंगे तो ये मधुमक्खियां समाप्त हो जाएंगी। तो पहले यहाँ किसान जो है मैं देखता था, वही नीचे वाला करते थे, ऊपर वाला नहीं जानते थे। तो मैं इसको वैज्ञानिक विधि से लाया कि इसको सुपर, इसको बोलते हैं सुपर बॉक्स। तो ये सुपर बॉक्स जो है, हनी बॉक्स, ये दोनों कहलाता है। अब इसको हम निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले ये दबा देते हैं ताकि कोई, ये उसके ऊपर एक ये बॉक्स है, एक लेयर ये निकालो, उसके बाद ये थर्मोकॉल का कवर है, ये बोरा इसे रखते हैं कि शाम को रात में ठंडा ज्यादा पड़ता है तो 2-3 बोरा रखते हैं। अब देखिए मैं इसको खोल दिया, तो ये जो मधुमक्खियां ये बना रही हैं, इसमें केवल शहद बना रही हैं, और नीचे बहुत कम से कम 15,000-20,000 मधुमक्खियां नीचे में हैं, वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा उनको। जो एकदम पक जाती हैं वो ऊपर आती हैं, और ये अपना अब ये तैयार है। अब इसको हमको करना क्या है कि ब्रश से झाड़ देना है इसी में, और इसको निकाल लेना है। निकालने के बाद डब्बे में करके, वो अंदर में जो है हमारा मधुमक्खी रस निकालने वाली मशीन है, वहां ले जाएंगे, और एक में से कम से कम 4 बोतल भर जाएगा, 1 किलो आराम से, 2-2 किलो भी भर जाएगा। तो इस तरह से अगर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो एक बार में निकालेंगे तो एक डिब्बे से 15 किलो निकल जाएगा।
1: खेतों में लगी फसल के लिए प्रमोद जी अपने द्वारा बनाए गए जैविक कंपोस्ट खाद का ही उपयोग करते हैं, जिससे फसल बेहतर हो। प्राकृतिक रूप से काला नमक धान की खेती करने, मधुमक्खी पालन करने और किसानों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए प्रमोद जी स्वयं बताते हैं,
2: मधुमक्खी पालन, केचुआ पालन, पत्ती खाद उत्पादन, काला नमक धान उत्पादन, करीब 24-25 उत्पाद हम जो है पैदा कर रहे हैं विभिन्न विभागों के सहयोग से, जैसे कृषि विभाग हुआ, आपका उद्यान विभाग हुआ, कृषि विज्ञान केंद्र, इनके सहयोग से, प्रयासों के साथ, मैं उनके साथ वो जो उत्साहवर्धन कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों का, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ।
1: प्राकृतिक और जैविक खेती से उत्पादित प्रोडक्ट्स को बाजार में पहुंचाने में प्रमोद जी के बेटे नीरज काफी मदद करते हैं। इसके लिए नीरज ने जॉब की ओर न जाकर पिताजी का सहयोग करने का निश्चय किया और ऑनलाइन के माध्यम से उत्पादों की बिक्री कर काम को आगे बढ़ा रहे हैं। इस बारे में नीरज कहते हैं,
3: जो ऑर्गेनिक खेती हमारे खेतों में होती है, जैसे काला नमक चावल, इन सबको पूरे भारत में अमेज़न के थ्रू मैंने बेचने में, सेल करने में मदद की। मैं तमाम यूथ लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि वो जॉब के अलावा भी कृषि में ऑनलाइन मार्केटिंग के माध्यम से अपना कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं।
1: मिश्रित खेती से खेत की उर्वरा शक्ति में बढ़ोतरी होती है। इसे जानकर प्रमोद जी के आसपास रहने वाले दूसरे किसान भी प्राकृतिक खेती करते हुए खेत में जैविक फसलों का ही उत्पादन करते हैं, जिससे उनकी आय में भी बढ़ोतरी होती है। क्षेत्र के किसान शिवाय दीक्षित और इंद्रजीत दीक्षित बताते हैं कि ये प्रमोद जी के प्रयास का ही नतीजा है कि प्राकृतिक खेती का विकास कर रहे हैं। प्रमोद जी प्राकृतिक खेती की तकनीकी जानकारी देते रहते हैं।
4: जैसे कि यहाँ खेती का काम होता है और प्रमोद जी के माध्यम से तरह तरह की तकनीकी लगाई जा रही है, उसकी वजह से तमाम सारे वैज्ञानिक आते हैं यहाँ, उन लोगों को आने का अवसर मिलता है और उनसे हम लोगों को बहुत सीख मिलती है, तरह तरह की तकनीक के बारे में जानकारी मिलती है। काफी सालों से चल रहा है प्रमोद जी का प्रयास।
5: प्रमोद दीक्षित के साथ मिलके यहाँ, चूंकि प्रमोद दीक्षित जी वैज्ञानिक लोगों को ले आके इस गांव में और कुछ तकनीकी सलाह दे रहे हैं, और बर्मी कंपोस्ट और ये मधुमक्खी पालन और तमाम चीजों का, और यहाँ इस गांव के किसानों का मनोबल बढ़ा रहे हैं।
0: इसी के साथ ही सफल किसान में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि किसानों को मिश्रित खेती और प्राकृतिक खेती के लिए कैसे कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े हुए हमारे कृषि वैज्ञानिक किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और उन्हें सही राह दिखा रहे हैं।

0: ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के समय में खेती वैज्ञानिक खेती है और ऐसे में बहुत आवश्यक है कि हमारे किसानों तक वैज्ञानिक सलाह पहुंचती रहे और नई तकनीक का इस्तेमाल करते रहे। कैसे कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े हुए हमारे कृषि वैज्ञानिक किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और उन्हें सही राह दिखा रहे हैं, कैसे इससे उन्हें लाभ हो रहा है।
1: पिछले कुछ सालों में भारत ने दुनिया भर में खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करके प्रमुख कृषि प्रधान देश की इमेज बनाई है और ये संभव हुआ है देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे कृषि अधिकारियों वैज्ञानिकों की ओर से किसानों को मिलने वाले कृषि संबंधी मार्गदर्शन से। इस बारे में कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यरत कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक राय बताते हैं।
2: तो जनरली ये कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के क्या समस्या है उस पर हम लोग किसानों के गांव में जाके ट्रेनिंग प्रोग्राम कराना, उनको प्रशिक्षित देना, उनके जो क्राप जो फसल उत्पादन ले रहे हैं, जैसे अभी कुशीनगर जनपद में मेन मुख्य रूप से गन्ना का उत्पादन, फिर धान का उत्पादन, सब्जी का उत्पादन और गेहूं का उत्पादन मुख्य रूप से किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ अभी आज के डेट में देखा जाए तो केला एक डबल इनकम का मुख्य सोर्स बना हुआ है, जो कि 15,780 हेक्टेयर एरिया में कुशीनगर में केला का खेती मुख्य रूप से किया जा रहा है। उसमें G9 का केला काफ़ी प्रचलित अभी हुआ है और FPO के माध्यम से और छोटे छोटे जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उसके माध्यम से उसको प्रोडक्शन में किया जा रहा है और उसको वैल्यू एडिशन में, जैसे हमारा जो प्रोसेसिंग चैम्बर है उस पर भी काफी किसान अभी आगे आके काम कर रहे हैं।
1: खेतों में जैविक अनाजों के उत्पादन और प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को जानकारी देने के लिए उद्यान विभाग के अधिकारी भी खेतों तक पहुंच रहे हैं। आइए इस बारे में सहायक उद्यान निरीक्षक विपिन उपाध्याय से जानते हैं।
3: श्री प्रमोद दीक्षित जी हम लोग से सन 2021-22 में जुड़े विभाग से और इन्होंने इसके बारे में पता किया वर्मी कम्पोस्ट पहले कि कैसे तैयार करें, तो हम लोगों ने बताया कि गोबर की खाद और केचुआ इसका प्रयोग करेंगे आप और इस पे आपको विभाग द्वारा प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। तो 21-22 में इन्होंने इसका लाभ विभाग से लिया।
1: खेतों में रासायनिक का प्रयोग न करने और प्राकृतिक रसायनों का प्रयोग कर जैविक फसल लेने और मिश्रित खेती को बढ़ावा देने में केवी के विशेषज्ञ लगातार प्रयास कर रहे हैं। खेतों के आसपास मधुमक्खी का पालन करने से फसल उत्पादन और खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। इसे बताने और किसानों को अन्य जानकारी देने की दिशा में कृषि विभाग लगा हुआ है। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विशेषज्ञ शमशेर सिंह।
4: ये जो कृषि विज्ञान केंद्र है ये किसानों के बीच तकनीक हस्तांतरण का काम करता है, तो हम लोग बहुत सारे तकनीक जो कि उद्यान से संबंधित है उसके ऊपर किसानों के यहाँ जा करके प्रशिक्षण के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से उनकी इनकम को बढ़ाने में सहायक होते हैं, उनको प्रशिक्षण देते हैं। तो जैसे अभी बात हो रही थी मधुमक्खी की, तो मधुमक्खी पालन बहुत जरूरी है। आज के समय में जिस तरह से अंधाधुंध रसायनों का प्रयोग हो रहा है, इन रसायनों का प्रयोग होने से मधुमक्खियों की संख्या बहुत कम होती जा रही है, दिन पर दिन वो मरती जा रही हैं। और ऐसा देखा गया है रिसर्च के माध्यम से कि जिस खेत में मधुमक्खी पालन किया गया वहां पर उस फसल का, लीची का या अन्य फसल का उत्पादन ज्यादा हुआ, जहां पर रसायनों का प्रयोग ज्यादा होता रहा वहां पर मधुमक्खियां कम आती हैं। मधुमक्खियां कम आने से फलों में जो फूल होता है उसका परागण नहीं हो पाता है ठीक से, और परागण न होने

0: वजह से फूलों में फल धारण करने की क्षमता कम हो जाती है। इस वजह से हम किसानों को यह सलाह देते हैं कि अपने खेतों में रसायनों का प्रयोग कम से कम करें, अधिक से अधिक ऑर्गेनिक का प्रयोग करें। तमाम जो किसान पालक हैं जिनके यहाँ पशु हैं वो अपने पशु से विभिन्न तरह के ऑर्गेनिक खाद बना सकते हैं। वो बर्मी कंपोस्ट हो सकता है, नादिप कंपोस्ट हो सकता है, वो बर्मी वास हो सकता है। इन सब का अगर खेतों में प्रयोग करें, फसलों पर प्रयोग करें, तो निश्चित तौर पे उनके जो लागत है वो लागत में कमी आएगी। क्योंकि जब रसायनों का जब हम बर्मी कंपोस्ट वगैरह का खेत में प्रयोग करेंगे तो निश्चित है कि हमारी जो रासायनिक खाद है उसकी मात्रा की जरूरत कम पड़ेगी। और इन बर्मी कंपोस्ट वगैरह में लगभग सारे तत्व हैं, लेकिन रासायनिक खादों में तो वही तत्व है जो हम देते हैं पौधों में। चाहे यूरिया है तो केवल नाइट्रोजन मिलेगा, फास्फोरस या पोटास देंगे तो केवल पोटास मिलेगा। लेकिन अगर हम बर्मी कंपोस्ट देते हैं तो लगभग सारे तत्व मिलते हैं पौधों के विकास के जो तत्व चाहिए। तो इस तरह से अगर बर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करते हैं खेतों में तो निश्चित है कि हमारे रासायनिक खादों की मात्रा का जरूरत कम पड़ेगा, और जब हम लागत को कम करेंगे तभी हम लाभ ज्यादा पाएंगे।
1: हूँ से आरजे राकेश
2: अने हूँ से आरजे कमता डामोर
1: तमु हामली रासे कार्यक्रम खेती वाड़ी आपड़ा झाबवाना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआनी आवाज पर। तो सालो किसान भाइयों हाव लई एक नानो ब्रेक अने हामली आपड़ा झाबवा जिला मा भील समुदाय मा जब लाडो पैणे अने जान जाई तीन मा जो गावे त्यू घणु मजा नु अने असल गीत हामली ने पासा भेला था हूं कार्यक्रम खेतीवाड़ी मा। तो किसान भाइयों जाजो मती कही था हामलता रेजो झाबवानी आवाज पर सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटिया भील 90.8 FM।

0: सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको देश के कोने कोने से खेती किसानी से जुड़ी हुई ऐसी प्रतिभाओं से रूबरू करवाते हैं जो खेती किसानी में आगे आकर विकास की नई गाथाओं को लिख रहे हैं। सफल किसान, जैसे कि नाम से ही आपको पता लग रहा है कि सफल किसान के जितेंद्र कसाना ने कैसे जैविक खेती को अपनाया और आगे कैसे वो विकास की नई गाथाओं को लिख रहे हैं।
1: जिला यूं तो राजनीतिक हलचलों के मामले में काफी आगे है, लेकिन यहां के किसान भी खेती के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यहां के किसान अपनी सेहत के प्रति जागरूक हैं। इसी जागरूकता की वजह से किसान खेतों में रासायनिक उर्वरकों की जगह जैविक उर्वरकों का प्रयोग कर जैविक उत्पादों को उगाना बेहतर मानते हैं। जैविक और प्राकृतिक उत्पाद मानव स्वास्थ्य को बेहतर रखने के अलावा खेत की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने में मददगार होते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र मुरादनगर के कृषि वैज्ञानिक की प्रेरणा से जितेंद्र कसाना पिछले कई सालों से अपने खेत में गोबर से तैयार खाद का प्रयोग कर सरसों आदि फसलों की जैविक खेती कर रहे हैं। जितेंद्र बताते हैं कि कोरोना काल में कुछ मुश्किलों का सामना करने पर उन्होंने दूध का व्यापार किया और वहीं से उन्होंने जैविक तरीके से ज्वार, गेहूं के अलावा सब्जियों की खेती प्रारंभ की, जिसमें उन्हें अच्छा फायदा हो रहा है।
2: हम पारंपरिक खेती करते थे पहले, तो अब जो है फिलहाल जैविक में आ गए। 2015 में हमें जो है डॉक्टर विपिन कुमार से हमारे संपर्क हुए, वे मुरादनगर केवीके में रहते थे। उन्होंने जो है हमको गाइडलाइन दी कि कुछ बदलो, ये तो पारंपरिक आप करते गेहूँ धान ये तो आप करते ही आ रहे हो, कुछ दूसरी तरफ चलो। फिर हम जो जी सब्जी की तरफ चले। उसके बाद में हमने सरसों का भी काम कराया, उन्होंने हमसे सरसों खरीद

0: का व्यापार कर लिया जी, और दूध का व्यापार करके अब इस खेत में हमने जो ज्वार बो रखी है, गेहूं काट के ज्वार बोई है, ज्वार बोने के बाद में हम इसमें धान लगा देंगे, धान के बाद में फिर गेहूं, और कुछ सब्जी की खेती करते हैं जी, आलू भी बोते है। तो हमारे पास 6-7 एकड़ जमीन है, उसमें अदलवा बदलवा कुछ ना कुछ करते रहते हैं जी सर। और अब जो फिलहाल हमारी अच्छी आमदनी हो रही है, बढ़िया काम चल रहा है जी। दूध हम यहाँ पे 50 रुपया किलो कटवाते हैं जी, और 70 रुपया किलो दिल्ली में सप्लाई करते हैं।
1: जैविक तरीके से होने वाली ज्वार को जितेंद्र अपने पशुओं के चारे के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज वे जैविक अनाज ही पैदा कर रहे हैं, जैविक उत्पाद ही उनका आहार बन चुका है। इस बारे में जितेंद्र कहते हैं,
0: ज्वार जो जी अपने पशुओं के लिए चारा करते हैं जी इसमें जी, और चारा खिला करके हमारे पास जो है 10-12 भैंस हैं, गाय हैं, दूध का व्यवसाय है, और चारे से जो है मतलब अच्छी जैविक चारा है, पशु भी जैविक खाते हैं हमारे, और हम भी जैविक अनाज पैदा करते हैं जी। जैविक का ही खान पीन, रहन सहन हमारा सब कुछ जैविक के उससे रहता है जी, एकदम साधारण सिंपल। और पशुओं में भैंसों में जो जी अच्छी हमें जो आमदनी हो रही है जी।
1: जैविक खेती करने के साथ साथ पशुपालन बेहद फायदेमंद होता है, इसे जानकर जितेंद्र गाय भैंस पालकर डेयरी का भी काम करते हैं। सुबह उठकर पशुओं के काम में लगकर दूध निकालते हैं और उसे बाजार में बेचते हैं। अच्छी नस्ल के पशुओं को वे रोहतक लाते हैं जिनसे दूध अधिक निकलता है। पशुओं के चारे और टीकाकरण का जितेंद्र पूरा ध्यान रखते हैं। वे युवाओं को सलाह देते हुए कहते हैं कि युवा नौकरी के बजाय कृषि को अपनाएं और सफलता हासिल करें।
0: मेरा मुख्य काम भैंसों का दूध की डेयरी, ये काम है मेरा। मैं सुबह जो है 4 बजे उठ करके और अपना दूध निकालता हूँ भैंसों का, उनका चारा करता हूँ, चारा वगैरह करके उन्हें नहवा धोला करके और अपने कार्य को जो मतलब 10 बजे तक फारिग हो जाता हूँ, दूध की सप्लाई कर आता हूँ, और पशु जो है रोहतक से लाता हूँ। हम जो जी गर्मियों में तो जी इन्हें नहलाना पानी से 2 बार, एक बार सुबह एक बार शाम को जी, और अपना धान की पराल जो होती है हम उसको वेस्टेज नहीं करते ना, उसमें ये कि मतलब आग लगा दे या वो कर दे, अपनी धान की जो पराल होती है उसको इकट्ठा कर लेते हैं और मशीन पे काटते और अपने पशुओं को खिलाते हैं जी। टीकाकरण समय पर करवाते हैं जी, हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल है निस्थौली में, वहाँ से डॉक्टर आते समय समय पर आते रहते हैं और समय समय पर भी टीका लगाते हैं। अब भी लगा के वो टीका, अब से 15-20 दिन पहले टीका लगा करके वो गए।
1: भारत की समृद्धता प्राचीन काल से विख्यात रही है और यहाँ की कृषि पद्धति भी। प्राचीन काल से ही भारत के खेतों में गोवंश का बोलबाला रहा है। खेत और गोवंश एक दूसरे के पूरक माने जाते रहे हैं। गोवंश का गोबर और गोमूत्र का उपयोग खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने और बीजों को रोग रोधक बनाने में किया जाता रहा है। मानव और खेत दोनों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर के चलते कृषि विभाग ने जैविक खेती को बढ़ावा देने का निश्चय किया। कृषि विभाग के प्रयासों के कारण एक बार फिर किसानों का रुझान जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहा है। कृषि विभाग जैविक खेती को बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चला रही है जिसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आने लगे हैं।
2: दोस्तों वक्त हो गया यहाँ ब्रेक का, ब्रेक के उस पार हम जानेंगे राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र के प्रयासों के बारे में, कैसे किसानों को वो जोड़ रहे हैं और कैसे किसानों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।

Tamunama, yama, bo, boyo, osa.

0: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। सवाल किसान के इस कार्यक्रम के दास्तान को आगे बढ़ाते हैं और आप बात करते हैं राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र के प्रयासों के बारे में कि कैसे उन्होंने किसानों को आगे बढ़ाया और किसानों को इससे जोड़ने की कितने प्रयास किए जा रहे हैं, किसानों को कैसे जागरूक किया जा रहा है, वो तमाम तरह के अभियानों के बारे में जानते हैं।
1: खेतों में रासायनिक खादों के चलते उगने वाली फसलों के दुष्प्रभावों को देखते हुए किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर मोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर किसानों को आकर्षित करने के लिए राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र की स्थापना की गई है। इस दिशा में संस्थान अपनी गतिविधियों के माध्यम से किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर मोड़ने का प्रयास कर रही है। इस बारे में जानकारी देते हुए संस्थान के निदेशक डॉक्टर जगनेश शर्मा जी बताते हैं।
2: हमारा जो संस्थान है वो देश में जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रमुखतया यहाँ पर कार्यरत है और हमारे जो संस्थान है इसके चार मुख्य मैंडेट्स हैं, जो कार्य हैं हमारे। सबसे पहला जो है हमारा कार्य वो ट्रेनिंग है, कैपेसिटी बिल्डिंग है किसान भाइयों से लेके और सभी जितने भी एक्सटेंशन ऑफिसर्स हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, उन सब के साथ मिल के जो है हम कृषि के जितने भी जैविक कृषि के ट्रेनिंग्स हैं, हमारे जो प्रशिक्षण के प्रोग्राम हैं वो चलाते हैं और कैपेसिटी बिल्डिंग करना सभी स्टेक होल्डर्स की, ये हमारा सबसे पहला दायित्व है। दूसरा जो है हमारा प्रमाणीकरण है कि प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाना है देश में। आपको पता ही है कि दो प्रकार की प्रमाणीकरण की प्रक्रियाएं हैं देश में। पहली तो है थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन, जो अपेडा एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स उनके द्वारा चलाई जाती है, जो एक्सपोर्ट के लिए और डोमेस्टिक ट्रेडिंग के लिए दोनों के लिए कार्य करती है।
1: राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र किसानों को ट्रेनिंग के अलावा उत्पादित फसलों के प्रमाणीकरण और उसकी टेस्टिंग की दिशा में भी काम करती है। इनका पूरा प्रयास रहता है कि लोग जैविक तरीके से उगाई जाने वाली फसलों को अपनाएं और स्वस्थ जीवन जिएं। इसलिए संस्थान जैविक उत्पादों का प्रमाणीकरण करती है कि ये उत्पाद पूर्णतया जैविक हैं। इस बारे में एपीडा के अलावा किसान भाई भी फसलों का प्रमाणीकरण कर सकते हैं। इस बारे में डॉक्टर जगनेश शर्मा जी बताते हैं।
2: हमारा जो संस्थान है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का, हमारे यहाँ पर पीजीएस सेक्रेटरिएट है जिसका नाम है पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम ऑफ सर्टिफिकेशन। तो ये सर्टिफिकेशन ग्रुप बेस्ड सर्टिफिकेशन है और जैसे कि आपने नाम सुना पार्टिसिपेटरी, मतलब किसानों द्वारा खुद का निरीक्षण खुद करके और खुद ही अपना पीयर इंस्पेक्शन पीयर अप्रेजल्स के द्वारा डिक्लेयर करना कि हाँ हम जो है केमिकल फ्री फार्मिंग कर रहे हैं और हमारी जो है जैविक खेती हम जैविक कर रहे हैं और स्टैंडर्ड्स और जो मानक हैं उनके आधार पर जैविक खेती कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया है वो भी हमारा दूसरा दायित्व है। और तीसरा जो हमारा मैंडेट है वो है टेस्टिंग का। हमारे यहाँ पर हमारे संस्थान के साथ हमारे पांच और संस्थान हैं जिनका हम क्षेत्रीय संस्थान कहते हैं और जो रीजनल सेंटर हैं हमारे अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में हैं, जैसे कि हेडक्वार्टर गाजियाबाद से शुरू करें यहाँ पर, तो ये जो संस्थान है यहाँ पर लेबोरेटरी भी है जो ऑर्गेनिक जो इनपुट्स हैं जैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं, बायो फर्टिलाइजर्स हैं, जो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 है उसके तहत हमारी लैब्स जो हैं वो नोटिफाइड हैं और हमारी जो हेडक्वार्टर की लेबोरेटरी है वो तो NABL एक्रेडिटेड भी है और इसके अलावा बेंगलोर की लेबोरेटरी है RCNF बेंगलोर और RCNF नागपुर है और इसके अलावा जो है हमारी RCNF भुवनेश्वर है, इसके अलावा हमारे RCNF मणिपुर है। तो हमारी पांच संस्थान हैं क्षेत्रीय जो ट्रेनिंग भी करते हैं, टेस्टिंग भी करते हैं और उसके साथ साथ में सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया को भी सुचारू रूप से चलाने में सहायक हैं।
1: जैविक एवं प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों को जागरूक करने के लिए संस्थान अन्य गतिविधियां करने के अलावा किसानों को ट्रेनिंग आदि भी देते हैं। जैविक उत्पादों की जांच के लिए संस्थान अपनी लैब को अपग्रेड भी कर रहा है जिससे उत्पादों की सही जांच हो सके और लोगों को सही जैविक उत्पाद मिल सके। इस बारे में जगनेश जी कहते हैं।
2: ट्रेनिंग में हमारे सबसे बड़ा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो 30 दिवसीय सर्टिफिकेट प्रोग्राम है जिसमें हम प्लस टू तक के जो बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं जैविक खेती एवं प्राकृतिक खेती के ऊपर। सर्टिफिकेशन के बारे में भी उनको जानकारी दी जाती है और उनको ट्रेन किया जाता है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करवाई जाती है और उनको कहीं भ्रमण पर भी ले जाया जाता है। तो इस तरह से 30 दिन में उनको एक्सपोज किया जाता है सभी प्रकार के जैविक खेती एवं प्राकृतिक खेती की जितनी भी गतिविधियां हैं वो सब उनसे उनको अवगत कराया जाता है। 20 लेक्चर्स रखे जाते हैं जो हमारे नेशनल लेवल के एक्सपर्ट होते हैं, वो चाहे साइंटिस्ट हों, वैज्ञानिक हों IARI के या किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, उनको हमने एम्पैनल और एक्सपर्ट्स को अपने पैनल में रखा होता है, उनको बुलाया जाता है इन ट्रेनिंग्स को करवाने के लिए। इसके साथ साथ हम कंपाइलेशन करते हैं डिफरेंट पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस की, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा वैलिडेटेड टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजी है, उसको हम ट्रेनिंग मॉड्यूल्स के फॉर्म में पब्लिश करते हैं। हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग का न्यूज़लेटर भी है, बायोफर्टिलाइजर न्यूज़लेटर भी है, जो साल के दो बार हम पब्लिश करते हैं और किसानों तक ही नहीं सभी स्टेक होल्डर्स तक वो पहुंचता है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में भी जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके लिए भी ये न्यूज़लेटर उनकी लाइब्रेरी में उपलब्ध होता है। तो इस तरह से हमारा संस्थान ट्रेनिंग की जो प्रक्रिया है उसको सुचारू रूप से चलाता है। एक दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है जो किसानों के लिए किया जाता है, खेत में जहां पर किसान गांव में कोई मॉडल डेमोंस्ट्रेशन फार्म है उनके इन एंड अराउंड हम ये ट्रेनिंग रखते हैं और 50 किसानों को इसमें भागीदार बनाते हैं और उनको भी एक दिवसीय ट्रेनिंग में एक्सपोज किया जाता है जैविक खेती में प्राकृतिक खेती प्रमाणीकरण। और साथ ही साथ हमारा टू डेज एक्सटेंशन ऑफिसर्स ट्रेनिंग भी है और इसके साथ साथ PGS इंडिया का जो हमारी रीजनल काउंसिल्स होती हैं, एजेंसीज होती हैं, ताकि उनके ऑडिटर्स और इंस्पेक्टर्स ट्रेन हो, उसके लिए भी हमारी दो दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाता है।
0: कैसे जैविक खेती और प्राकृतिक खेती से जुड़कर किसान भाई आगे आ सकते हैं और कितनी अपार संभावनाएं हैं प्राकृतिक और जैविक खेती से जुड़कर आप उत्पादन बढ़ा सकते हैं और जो आपकी उत्पादन की गुणवत्ता है उसको भी आप कितना महत्वपूर्ण है और कितना बेहतर आप कर सकते हैं, ये सब कुछ संभव है जैविक और प्राकृतिक खेती के जरिए। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र के प्रयासों के बारे में आपको बताएंगे कि कैसे इनके जरिए भी किसानों को आगे बढ़ाया जा रहा है, किसानों को जागरूक किया जा रहा है और तमाम तरह की व्यवस्थाएं किसानों के लिए ये उपलब्ध करा रहे हैं।

0: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम सफल किसान के दास्तान को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं कि कैसे कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विश्वविद्यालय ये दोनों ही विभाग किसान को सफल किसान बनाने के लिए अग्रसर हैं। कैसे ये दोनों विभाग किसानों को सफल किसान बनाने के लिए कौन कौन से प्रयास कर रहे हैं, कैसे वो जागरूक करते हैं और कैसे किसानों को जोड़ने का काम करते हैं। इनके प्रयास खेती किसानी के क्षेत्र में अमूल्य हैं और यही कारण है कि आज हमारे देश भर के कोने कोने से ऐसे किसान प्रतिभाएं निकल कर आ रही हैं जो आज अपने आप को एक सफल किसान के तौर पर स्थापित कर रही हैं।
1: पिछले कुछ सालों में भारत ने दुनिया भर में खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करके प्रमुख कृषि प्रधान देश की इमेज बनाई है और ये सब संभव हुआ है देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे कृषि विश्वविद्यालयों के अधिकारियों की ओर से किसानों को मिलने वाली कृषि संबंधी मार्गदर्शन से। मेरठ जिले के मोदीपुरम में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रसार निदेशालय में कार्यरत डॉक्टर सिंह बताते हैं।
2: सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रसार निदेशालय के नियंत्रण में 18 जनपद आते हैं जिसमें 4 मंडल हैं और इन 18 जनपदों में 20 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं। प्रत्येक जनपद में एक कृषि विज्ञान केंद्र और तीन हमारे ऐसे जनपद हैं जहां दो दो कृषि विज्ञान केंद्र हैं जिसमें मुरादाबाद, बिजनौर एवं बदायूं हैं। प्रसार निदेशालय कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से तकनीकी हस्तांतरण में अपना योगदान दे रहा है जिसमें हमारा जो मुख्य रूप से हम जो खेती में लगे किसान भाई हैं उनके लिए, महिलाओं के लिए और खेती में युवाओं का रुझान बढ़ाने के लिए हम तकनीकी रूप से उनको सशक्त बनाने में लगे हुए हैं और जो भी इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की प्राथमिकताएं हैं उन पर प्रसार निदेशालय कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के माध्यम से तकनीकी हस्तांतरण करा रहा है जिसमें मुख्य रूप से अगर हम कहें तो क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट, क्योंकि फसल अवशेष प्रबंधन की बहुत आवश्यकता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां पर धान और गेहूं का फसल चक्र है और गन्ने में भी है, जहां पर पराली जलाने की बात होती है, गन्ने की पत्ती जलाने की बात होती है, वहां पर हम किसान भाइयों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं।
1: खेतों में पानी के बेहतर इस्तेमाल के बारे में भी किसानों को जागरूक किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण के अलावा युवाओं को खेती के प्रति रुझान पैदा करने के लिए भी विश्वविद्यालय लगातार प्रयास कर रहा है। कृषि के मामले में किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रयास जारी हैं। आइए इस बारे में जानते हैं।
2: बहुत सारी ऐसी तकनीकी है जिससे जल को बचाया जा सकता है, ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर है, उसके बारे में भी उनको बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा जो महिलाएं हमारी हैं उनके सशक्तिकरण के लिए विशेष हमने एक अभियान चलाया हुआ है जिसमें माननीय राज्यपाल महोदया जी के निर्देशन में हमने 1000 अशिक्षित महिलाओं को प्रशिक्षण दिया है जिसमें से 73 महिलाओं ने अपना लघु उद्योग स्टार्ट किया है और उसके माध्यम से वो स्वयं भी अपना आय का अर्जन कर रही हैं और उन्होंने 4 से 5 लोगों को और भी उसी गांव में रोजगार मुहैया कराने का कार्य किया है। तीसरा जो हमारा जो सबसे बड़ा टारगेट ग्रुप है वो है आज का युवा। युवा आज विमुक्त हो रहा है खेती की तरफ से, तो उनको खेती में रुझान किस तरह से पैदा किया जाए उसके लिए हम उनका एक स्किल ओरिएंटेड ट्रेनिंग करा रहे हैं और इस स्किल ओरिएंटेड ट्रेनिंग के माध्यम से विशेषकर हम 3 से 4 चीजों पर फोकस कर रहे हैं जिसमें मधुमक्खी पालन, मछली पालन और मशरूम और पोल्ट्री, क्योंकि ये एक चारों चीजें इस तरह की हैं जो कि आय का अतिरिक्त साधन भी देती हैं और इनका खेती के साथ सामंजस्य भी है और हमारे पास आज बहुत सारे ऐसे मॉडल युवा हैं जिन्होंने बहुत अच्छा इस दिशा में कार्य किया है।
1: देश में किसानों को तकनीकी जानकारी देने और खेतों में पैदावार बढ़ाने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों की भूमिका काफी बढ़ रही है। ये संस्थाएं खेत में पैदावार बढ़ाने के लिए उन्नत किस्म के बीजों को विकसित करने के अलावा किसानों को बेहतर सुविधा देने का प्रयास करती हैं। मेरठ का सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भी कृषि के क्षेत्र के विकास में जुटा हुआ है। इस बारे में बता रहे हैं विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर के सिंह।
3: हमारे विश्वविद्यालय के कार्य क्षेत्र 4 मंडल जिसमें कि सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद और बरेली, इन 4 मंडलों के 18 जिले आते हैं और इसके अंतर्गत 20 हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं और विश्वविद्यालय का मैंडेट कृषि क्षेत्र के में शिक्षा देना, स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी, ये सब प्रोग्राम हैं। और शोध कार्य है कृषि से जुड़े हुए क्षेत्रों में शोध कार्य, और उसका प्रचार प्रसार हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हम प्रचार प्रसार करते हैं तकनीकों का। इसमें हम लोग उद्यमिता विकास पर प्रशिक्षण कार्य देते हैं अलग अलग क्षेत्रों में कृषि के, चाहे वो मुर्गी पालन हो, मशरूम का प्रोडक्शन हो, या बकरी पालन हो, हमारा नेचुरल फार्मिंग में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में, और मोटे अनाज से जुड़े हुए प्रसंस्करण, मोटे अनाजों का उसका उत्पादन और प्रसंस्करण, इस सब पर हम लोग उनको प्रशिक्षण देते हैं और वो प्रशिक्षण लेकर के अपना कोई न कोई रोजगार शुरू करते हैं, महिलाएं हों या युवा हों।
1: भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। आज के दौर में कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विभाग से जुड़ी संस्थाओं और कृषि विज्ञान केंद्रों में कार्यरत अधिकारी व वैज्ञानिक किसानों को प्रगतिशील बनाने में सक्रिय हैं। हर किसी का प्रयास है कि खेतों में उत्पादन बेहतर हो और किसानों की आय बढ़े। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करीब 18 जिलों में किसानों और खेतों की दशा सुधारने और जैविक खेती को बढ़ाने में मेरठ का सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय एवं अन्य संस्थाएं सक्रिय हैं। ऐसे में किसान इनकी राय लेकर उत्पादन को बेहतर बना सकते हैं।
4: तो सालो किसान भाइयों, यो हो तो आज नो कार्यक्रम खेतीवाड़ी। आज ना खेतीवाड़ी कार्यक्रम में आप ही बात हामली एकीकृत खेती नी बातियो अने हाथे हाथ पशुपालन नी खेती मा सफल किसान नी बातियो पण इना कार्यक्रम मा आपुई हामळियो। किसान भाईयो, हमु रोज तमारी हारू एवा असल थी असल खेतीवाड़ी ना कार्यक्रम लीन आवी छे अने आशा पण करी छे कि हमारा झाबुआ जिला ना किसान भाई ये बधी वातियो हामळे अने खेतीवाड़ी ना क्षेत्र मा आगाड़ी बढ़े अने असल मोटो मुनाफो कमाई सके। तो सालो किसान भाईयो, आ सारू बस एतरी वात, केम के हाव समय थाई गयो से बीजा कार्यक्रमों नो। हूँ आरजे राकेश लू से तमारी देखी इजाजत, पण तमुज आजो मती कहता हामल तारे जो झाबवानी आवाज पर सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटिया भील 90.8 FM तमारा रेडियो खतवार आरजे राकेश नी हाते। धन्यवाद।

0: जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग। और दोस्तों, आज का रंग है फिल्मों की दुनिया का बहुरंगी रंग। मैं आपकी आवाज की दुनिया का दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, किसी फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिलना किसी भी फिल्म मेकर के लिए एक बेहद खास उपलब्धि होती है। लेकिन जब कोई फिल्म एक रीजनल लैंग्वेज, एक लोक संस्कृति और एक पूरे प्रदेश की पहचान को राष्ट्रीय मंच तक लेकर जाती है, तो वह सम्मान सिर्फ एक फिल्म मेकर का नहीं, पूरे फिल्म जगत का हो जाता है। वह उस भाषा, उस संस्कृति और उस मिट्टी का भी सम्मान मिल जाता है। हाल ही में 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में गढ़वाली फिल्म ढोली को बेस्ट गढ़वाली फिल्म के लिए प्रतिष्ठित रजत कमल से सम्मानित किया गया है और उस फिल्म के डायरेक्टर हैं दिनेश पी भोसले हैं। लेकिन दिनेश भोसले की कहानी सिर्फ ढोली की कहानी नहीं है। गोवा से शुरू हुआ उनका सफर थिएटर और ऑडियो विजुअल वर्क से होते हुए फिल्म मेकिंग तक पहुंचा। उन्होंने रेनाउंड फिल्म एडिटर वामन भोसले के साथ काम किया, FTII पुणे में सिनेमा को समझने की कोशिश की और मरमंद, कैलापोर, एनिमी और अमोरी जैसी फिल्मों के जरिए अपनी एक अलग पहचान बनाई। और दिलचस्प बात यह है कि ढोली उनका पहला नेशनल अवार्ड नहीं है, उनकी पिछली फिल्मों को भी नेशनल रिकॉग्निशन मिल चुका है। तो सवाल कई है, एक फिल्म मेकर आखिर गढ़वाली फिल्म बनाने उत्तराखंड क्यों पहुंचता है? ढोली की कहानी क्या है? क्या उन्हें पहले से विश्वास था कि फिल्म नेशनल अवार्ड तक पहुंचेगी? और एक रीजनल फिल्म मेकर के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती क्या है? इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ हैं नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर, राइटर एंड डायरेक्टर श्री दिनेश पी भोसले। दिनेश जी, रेडियो SN पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले हमारी पूरी टीम की ओर से आपको और ढोली की पूरी टीम को इस शानदार उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई।
2: धन्यवाद आलोक जी, मेरा सब श्रोताओं को प्रणाम, नमस्ते।
1: तो चलिए दिनेश जी, शुरुआत करते हैं बातचीत की। आपसे तो एक गुफ्तगु होगी, वो भी आपकी प्रिय सब्जेक्ट के बारे में, तो मैं ही बहुत ज्यादा बहुत खुश हूँ, पता नहीं क्यों। तो सबसे पहले तो ये बताइए दिनेश जी कि ये सवाल आपसे कई बार पूछा भी जाता होगा कि जब नेशनल अवार्ड की घोषणा हुई तो आपने अपना नाम ढोली के साथ सुना होगा, तो उस मोमेंट या उस लम्हे में आपको कैसा लगा, क्या आपके रिस्पॉन्स रहा था?
2: मैं जब ये टीवी पे देखा, सुना, तो मुझे मेरा इमोशन से ज्यादा मुझे ये ज्यादा ये था कि मेरे जो बाकी लोग थे, जैसे मेरे जो टीममेट्स थे ये फिल्म के, उनका इमोशंस के बारे में ज्यादा ये था, क्योंकि मैंने दो बार फिल्म में लिया था नेशनल, तो मेरा उतना बड़ा इमोशंस बहुत बढ़ के आना नहीं था। तो मुझे बहुत कंसिडरेट करना था कि मुझे मेरी जो ढोली टीम है, जो जिसके मेंबर्स गढ़वाल में या उत्तराखंड में है, उनके बारे में मुझे ज्यादा सोचा आ रहा है कि उनका इमोशंस क्या होगा, उनका रिएक्शन क्या होगा, वो मुझे ज्यादा ये हो रहा था और वो मुझे ज्यादा जानना था, तो वो मैं देख रहा था कि वो कैसे रिएक्ट कर रहे थे।
1: बहुत सुंदर बात है, इसका मतलब है आपको अपनी जो टीम है या जो उत्तराखंड में जिनके साथ आपने शूटिंग वगैरह की थी, उनका ख्याल आपके दिमाग में आया था, उनको कितनी खुशी हो रही होगी। वाह, क्या जवाब है आपका, यू आर ए टीम मैन सर।
2: थैंक यू थैंक यू।
1: तो नेशनल अवार्ड जैसे रिकग्निशन उम्मीद किसी न किसी फिल्म मेकर को कहीं ना कहीं जरूर होता है। आपको क्या शुरू में जब ये फिल्म आप बना रहे थे या जब रिलीज होने वाली थी तो आपको कुछ कहीं से दिमाग के अंदर कहीं ये बात थी कि भाई इसको नेशनल अवार्ड मिल सकता है या पूरी तरह इट वॉज अनएक्सपेक्टेड?
2: नहीं, अनएक्सपेक्टेड तो नहीं था, क्योंकि जिस हिसाब से हम फिल्म बना रहे थे और जिस हिसाब से हमने प्लान किया था, पूरा स्क्रिप्ट से लेके डिटेलिंग किया था और कैसे करना है, और प्रॉपर प्रोफेशनली हमने किया था, टेक्निकली वेरी साउंड फिल्म, और जिस हिसाब से वो मींस माउंटेन टेरेन पे जाके शूट करना बहुत मुश्किल है, पर वो जो वहां जाके हमने पूरा कॉन्फिडेंस के साथ और बाकी लोगों को ट्रेन करके और जितना हमने कोशिश की थी ना और जितना हमने इसको इसके लिए जो तकलीफें ली थी, और हमने ये फिल्म ना एट पार विद एनी अदर फिल्म हमने फिल्म बनाई थी, तो मुझे खुद को कॉन्फिडेंस था क्योंकि ये नेशनल अवार्ड जीतेगी करके, पर मैं किसी को बताया नहीं था।
1: अच्छा अच्छा ये बात जोरदार है। हाँ मतलब आपके हिसाब से इट इज ये एट पार पिक्चर किसी भी अच्छी टेक्निकली और हर तरह से ये बिल्कुल क्वालिफाई करती थी आपके हिसाब से, राइट?
2: जी हाँ, क्योंकि हमने शूटिंग वहां पे किया उत्तरकाशी में वहां पे, और बाद में डबिंग करने के लिए हमने, क्योंकि आर्टिस्ट सब देहरादून से थे मैक्सिमम, तो हमने डबिंग देहरादून के एक हमारे कपूर करके है रिकॉर्डिस्ट, उनके उनका स्टूडियो है रिकॉर्डिंग, उनके स्टूडियो में हमने सब डबिंग किया, और बैकग्राउंड भी स्कोर भी वहां पे किया जहाँ पे हमारे वहां के बहुत बड़े नामी संगीतकार नरेंद्र सिंह नेगी जी ने किया था। अच्छा। तो उनका स्टूडियो है, उनके स्टूडियो में हमने बैकग्राउंड सॉन्ग्स वगैरह रिकॉर्ड किया, पर उसके बाद जो मास्टरिंग जो होता है वो सब हमने प्रोफेशनल बड़े रिकॉर्डिस्ट या मिक्सर से बम्बई में किया था।
1: Okay.
2: पूरा उसका VFX से लेके उसका कलर ग्रेडिंग और फाइनल मिक्सिंग वगैरह सब उसका बम्बई में हुआ।
1: तो चलिए इसी जो जिस तरह से आपको कॉपरेशन मिला और जिस तरह से आपने बात बताई गढ़वाली फ्लेवर और उत्तराखंड की सारी बातें इसके फिल्म के अंदर है, इस पे रुक के हम एक गाने के लिए रुक जाते हैं पहाड़ों की याद करते हुए और फिर इस बातचीत को जारी रखते हैं।

0: हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो एसएन और रेडियो टाटिया भील, और मैं बात कर रहा हूँ दिनेश भोसले जी से, जिनको अभी अभी हाल ही में नेशनल अवार्ड मिला है, रजत कमल मिला है। तो दिनेश जी, अब ये बताइए, अब उसके बारे में बात करते हैं जिस फिल्म ने आपको ये सम्मान दिलाया है। चलिए शुरुआत से शुरुआत करते हैं, आप आखिर ढोली की कहानी आपके पास कैसे आई, और इस फिल्म को बनाने का जो ख्याल है वो किस तरह से जन्म लिया उसने, किस तरह से, हाउ इट ऑल स्टार्टेड?
1: ये ढोली फिल्म बनाने से पहले मैंने 5 और फिल्में बनाई थी, वो अलग अलग लैंग्वेज में। तो हमारी एक मेरी जो एक थर्ड फिल्म थी, जो गोवा की लैंग्वेज में कोकणी में थी, एनिमी करके, एनिमी क्वेश्चन मार्क, और वो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के ऊपर थी। तो उसमें क्या, जो एनिमी एक्ट के ऊपर थी, तो उसमें एक कैरेक्टर था जो हिंदी स्पीकिंग था, जो सेंट्रल मिनिस्टर थे, कैरेक्टर था। तो उसके लिए हमारे एक पहचान वाले या दोस्त सही थे, जिसने हमारे पहली फिल्म में भी काम किया था एज ए राइटर, शिशिर कृष्ण शर्मा, वो एनिमी में थे। तो एनिमी को जब नेशनल अवार्ड मिला तो उनके दिमाग में आया कि हम लोग एक गढ़वाली लैंग्वेज में फिल्म करते हैं। तो उनके दिमाग में आया, तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा ऐसा करेंगे। तो एक सब्जेक्ट है जो उनको उनके किसी दोस्त ने, डॉक्टर हटवाल कर है हमारे देहरादून में, उनका एक नाटक है जमनदास ढोली, वो उनको शिशिर जी को बताया था, उनके किसी दोस्त ने रिकमेंड किया था। तो वो नाटक के ऊपर ये ढोली फिल्म बनाने की प्लान हुआ था। इट वाज ऑल द एफर्ट्स टेकन बाय शिशिर कृष्ण शर्मा। इस हिसाब से वो मीन्स रास्ता तय हो गया था। और उसके बाद उन्होंने खुद हटवाल जी से बात करके वो नाटक मंगवाया। वो नाटक मंगवाने के बाद हमने उसे पढ़ने के बाद उसको हमने जो भी फिल्म का रूप देना है उसे, उसके फिल्म स्क्रिप्ट को हमने फिल्म स्क्रिप्ट का रूपांतर दिया। तो उसके फिल्म स्क्रिप्ट का रूपांतर देते समय शिशिर जी को उसमें कुछ स्टोरी में चेंजेस करने पड़े, क्योंकि नाटक का स्टोरी अलग होता है और फिल्म के लिए कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, जो सिनेमेटिक लिबर्टी लेके हमें, और कंसिडरिंग एनवायरमेंट और कल्चर ऑफ उत्तराखंड, गढ़वाल रीजन, हमने वो स्टोरी में चेंजेस किए। और चेंजेस करने के बाद एक स्क्रिप्ट, जो स्क्रिप्ट बन गई, स्क्रिप्ट बनने के बाद वो शिशिर जी ने इनिशियली इंग्लिश हिंदी में डायलॉग लिखे, क्योंकि उनको खुद को गढ़वाली लैंग्वेज नहीं आती है। तो एक बार हिंदी डायलॉग लिखने के बाद वो स्क्रिप्ट हमारे स्टोरी राइटर हटवाल जी को गई, और डॉक्टर नंदकिशोर हटवाल, उन्होंने बाद में वो जो हिंदी में डायलॉग थे वो गढ़वाली लैंग्वेज में ट्रांसलेट या एडप्ट कर किए उन्होंने, और उसके बाद वो स्क्रिप्ट बनी।
0: भाई मजा आ गया अब दिनेश जी सुन के, क्योंकि अब हमें ये रियलाइज हो रहा है कि एक फिल्म बनाना कितनी कठिन प्रक्रिया है और कितनी मेहनत लगती है इसमें। बंदा आइडियाज की तो बात ही छोड़ दीजिए, अपने आप में कितना एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है सारा। तो मजा आ गया सारी बात सुन के, किस तरह से आपने एक नाटक की स्क्रिप्ट को बेसिकली एडेप्ट किया अपनी फिल्म के लिए, और उसमें लैंग्वेज के भी चेंजेस किए और भी सारे चेंजेस किए। वाह।
1: थैंक यू।
0: तो अब सर मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि हमारे श्रोता हो सकता है ढोली से परिचित नहीं हो, लेकिन आप ही अपने शब्दों में बताइए कि ढोली की कहानी क्या है शॉर्ट में, और इस फिल्म का मूल भाव क्या है?
1: ढोल जो है वो उत्तराखंड स्टेट का राज्य वाद्य है। तो उसमें हर एक उनके त्योहार में ढोल लगता है उनको, और उसको ढोल को वो पवित्र, बहुत डिवाइन मानते हैं, पवित्र मानते हैं। तो कुछ भी उनके बर्थडे हो, उनके शादी हो, किसी का प्रोमोशन हो गया हो, किसी के घर में बच्चा हो गया हो, कभी डेथ हो गई हो, हर टाइम उन्हें ढोल बजाना पड़ता है, ढोल बजाते हैं वो। और हर हर हर इसके लिए, हर त्योहार या हर वक्त के लिए वो ढोल का बीट्स अलग रहता है, और वो ढोल बजाने से पहले ढोल की पूजा भी की जाती है, सब कुछ होता है। पर वो ढोल जो बजाता है उसको बहुत डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उसको ढोली बोलते हैं। कि उसके लाइफ के ऊपर वो कैरेक्टर है, मींस स्टोरी है, और मेन चीज इसका जो फोकस हमने किया है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिस्क्रिमिनेशन द करंट जनरेशन, अभी का जो जनरेशन ये डिस्क्रिमिनेशन से ऊपर आके अपने एजुकेशन से और जो उनकी जो उनकी जो आर्ट है उससे उभरते हुए ये ऑल दिस डिस्क्रिमिनेशन सरपास करके ऊपर कैसे आ सकते हैं, वही ये सब्जेक्ट है।
0: वंडरफुल। अच्छा, मतलब एक ढोली की कहानी है जो अपने एडवर्स सर्कमस्टांसेस को ओवरकम करके और आगे लाइफ में बढ़ता है और आगे बढ़ता है।
1: जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ,
0: मजा आ गया। तो ये तो, और ये बात भी हमें पहली बार पता लगी कि उत्तराखंड का राष्ट्रीय या राज्य का जो वाद्य है वो ढोल है, और उसकी पूजा होती है, मतलब जब ढोल बजना शुरू होता है उससे पहले पूजा होती है, क्या बात है। तो चलिए इसी बढ़िया सी बात पे रुक के हम एक गाने के लिए एक पॉज लेते हैं और फिर इस बातचीत को जारी रखते हैं।

0: हाँ वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो एसएन और रेडियो टाटिया भील, और हम बात कर रहे हैं दिनेश भोसले जी से, जो जिन्होंने अभी अभी हमें ढोली की कहानी सुनाई है, और इतनी मजेदार कहानी है कि क्या कहूँ आपको। लेकिन चलिए अब थोड़ा सा हम दिनेश जी से उनकी जिंदगी में के फ्लैशबैक में ले चलते हैं, उनको पीछे ले चलते हैं। दिनेश जी, आपका अपना सिनेमेटिक बैकग्राउंड गोवा और मुंबई से जुड़ा रहा है, और
1: जी
0: आपकी
1: जी
0: पिछली फिल्मों की जो बैकग्राउंड है या पृष्ठभूमि भी अलग रही है, फिर गढ़वाली फिल्म बनाने का एक तो आपने डिसीजन कैसे लिया, उत्तराखंड और गढ़वाली कल्चर से आपका कनेक्शन कैसे बना, ये सब कैसे हुआ, हाउ यू शिफ्टेड टू दिस साइड?
1: ये जब तय आपको जो बताया कि कैसे हिस्टोरी बनी, क्या
0: हाँ
1: बनी, वो जो
0: बताओ
1: मैं
0: बताओ
1: शिशिर शर्मा जी के थ्रू ये सब हो गया। पर अभी क्या होता है, स्टोरी बने, फिल्म बनाना है ना, तो वो जो जहाँ पे आप बनाते हैं, जो मिट्टी में आप बनाते हैं, वो मिट्टी का सब डिटेल्स आपको मालूम होना चाहिए। उनका कल्चर ये सब अगर आपको नहीं मालूम होता है, तो देन वो स्टोरी आप पूरी तरीके से सही तरीके से लोगों के सामने ला नहीं सकते, और वो इलॉजिकल हो जाता है। तो इसलिए मैंने खुद क्या किया, मैंने ये नाटक तो पढ़ा, तो उसके बाद मैं खुद देहरादून आया। देहरादून आके मैं हटवाल जी से बात की, उन्होंने मुझे दो तीन बुक्स दिए, वो बुक्स मैं पढ़े, कुछ बुक्स मैं खरीदा, वो मैं पढ़ा। उसके बाद मैं जो डोली कम्युनिटी है, तो उनकी उन लोगों को मैं मिला, उनके थ्रू मुझे बहुत सी जानकारी मिली। और हमारे साथ एक जुड़े हैं प्रेम जी, प्रेम हिंदवाल जी, जो खुद एक बहुत अच्छे ढोल वादक है, तो उन्होंने भी मुझे बहुत कुछ बताया। जो वो सब बातें मुझे जानने के बाद, पूरी तरह से इनका कल्चर, देन ढोल कैसे बजाते थे, हर अलग अलग वातावरण में या अलग अलग जो फेस्टिवल को या त्योहार को कैसे ढोल बजाया जाता है, या कोई अगर किसी का देहांत होता है तो कैसे ढोल बजाया जाता है। क्योंकि पहाड़ों में क्या होता है, एक गांव अगर ये पहाड़ी के ऊपर है, तो दूसरा गांव दूसरे पहाड़ी के ऊपर, और बीच में वैली है, तो उनका कम्युनिकेशन सिस्टम ढोली है। तो इनको अगर उस पार अगर बताना है कोई यहाँ पे डेथ हो गई है, तो एक अलग बीट है, वो बीट बताने के बाद उस पार पता चलता है कि ये गांव में किसी की डेथ हो गई है, और वो अगर कोई है वो आते हैं यहाँ पे, उसके कम्युनिकेशन होता है, और देन जैसे भी उनकी अर्थी निकलती है, तो वहां पे अलग तरीके से वापस बीट स्टार्ट हो जाता है। या शादी में भी उनका अलग बीट है, जैसे अगर शादी शादी में दूल्हा दुल्हन शादी होके निकलती है घर से, तो वहां अलग बीट बजता है, और अगर वो दलान के नीचे चल के आ रही है तो अलग बीट है, या अगर वो ब्रिज के ऊपर से जा रही है नदी पार करके, अलग बीट है, और बस में बैठ के अभी बस निकलने वाले, तो अलग बीट है। तो ये सब हमने बहुत जानकारी की थी, और ये सब डिटेल्स हमने फिल्म में लाने की कोशिश की।
0: भाई दिनेश जी, ये तो अद्भुत है, आपने आज हमारी बहुत लर्निंग कर दी कि कितनी तरह की बीट से, और ऑब्वियसली पहाड़ियों पे जो कम्युनिकेशन का है, और जैसे पहले सिग्नल के थ्रू कम्युनिकेशन होता था, इससे साउंड के थ्रू पहले जमाने में भी होता था, एक एक एक आवाज से दूसरी आवाज तक मैसेज पहुंचता था बिल्कुल से, और राजाओं के जमाने में भी यही होता था, ढोल से पता लगता था कोई शत्रु की सेना आने वाली है, राइट। तो चलिए अब मैं एक और बात आपसे जानना चाहूंगा कि आपने ढोली की जो शूटिंग है उत्तरकाशी और रसी गंगा वैली में की है, आसपास के पहाड़ी क्षेत्र में, तो ये पहाड़ों पे शूटिंग करने का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा? क्या लोकेशन की और एनवायरनमेंट ने फिल्म मेकिंग में चुनौती आती है, कोई दिक्कत आती है, या एक कहानी को और ज्यादा ऑथेंटिक बना देती है?
1: एक्चुअल लोकेशन पे अगर आप शूट करें, जो जरूरत है आपकी कहानी को, तो वो उसको ऑथेंटिसिटी देती है, और बहुत अच्छा लगता भी हो। तो ये जो हमने गांव शूट किया था, वहां पे हमें जो चाहिए था एज पर द स्टोरी, वो परफेक्ट सब मिल रहा था। पर पहाड़ियों पे शूट करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि पहाड़ों पे शूट करना मीन्स वहां पे क्या होता है, हर 10 मिनट में लाइट का जो ये होता है कंडीशन, वो चेंज हो जाता है, कभी ब्राइट हो जाता है, कभी अति ब्राइट हो जाता है, कभी एकदम डाउन हो जाता है। तो ये जो एक मींस कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, और बिकॉज इट इज अ रीजनल फिल्म, हमारे पास बजट कंस्ट्रेंट्स थे, तो और उसका ज्यादा ये रहता है कंट्रोल करना, और थोड़ी मुसीबत हो जाती है। दूसरा क्या होता है वहां पे, आपको क्या लाइट्स या जो भी है इक्विपमेंट वो लेके जा नहीं सकते, क्योंकि उनका एक जगह पे आके आपको रुकना पड़ता है, और बाकी एरिया ऊपर जाने के लिए चल के जाना पड़ता है।
0: ओके
1: क्योंकि नैरो लेंस रहते हैं, और नैरो लेंस और नीचे एक डीप वैली रहती है, तो आपको नैरो लेंस से वो सामान लेके आधा घंटा चल के जाना पड़ता था। तो वो तो इनिशियली हम लोगों को भी चलने को बहुत तकलीफ हो रही थी, डर डर के हम चल रहे थे, पर एक 7-8 दिन में हम उनके साथ ही, हम उनके जैसे ही हो गए। तो उसमें भाग के करना, पर वो वहां पे शूटिंग करना बहुत मुश्किल है, मीन्स पहाड़ों में शूटिंग करना, एक तो आपके पास बहुत बजट होना चाहिए और सब इक्विपमेंट्स होने चाहिए, पर ये रीजनल लैंग्वेज होने के खातिर उसका ये कंसेप्ट, पर वो जो आपको वहां शूट करने के बाद आपको जो लुक मिलता है ना, जबरदस्त लुक मिलता है फिल्म का लुक, क्योंकि वो ओरिजिनल, और उसमें आपने लॉजिकली या जो ऑथेंटिसिटी मिलती है वो आप कहीं पे जो आपको अच्छा, कहाँ पे प्रॉब्लम नहीं, जहां जाके शूट, कन्वीनियंट जगह पे जाके शूट किया, वही ऑथेंटिसिटी नहीं मिलेगी। तो वो हमने बहुत ये किया, मीन्स वो उस हिसाब से वो लोकेशन हमारा बहुत अच्छा था, असली गंगा वैली।
0: नहीं, ये बात आपने बहुत जोरदार बताई।

0: पहुंचना बहुत बड़ी बात है दिनेश जी। तो कुछ आप बताइए, आपके हिसाब से ढोली में ऐसा क्या था जिसने लैंग्वेज के बैरियर को भी क्रॉस कर लिया और नेशनल अवार्ड की जो जूरी है उसको भी उसने इम्प्रेस कर लिया? ऐसी क्या खास बात थी ढोली में?
1: ढोली में कहीं पे भी जो नकली बोलते हैं ना, ये नहीं था,
0: आर्टिफिशियल? हाँ,
1: आर्टिफिशियल कुछ नहीं था। जो था मीन्स आपको जो रियल है वो रियल हमने दिखाया था। एंड जो शूट करने के लिए मीन्स, जैसे कि मैं बताता हूँ कि कई फिल्म में आपने देखा होगा कि हीरो ढोल बजाता है और ढोल कोई और बीट बज रहा है और सिर्फ ढोल बजाने का नाटक कर रहा है। पर हमने क्या किया था, हमारे जो कैरेक्टर ढोली कैरेक्टर का जो प्ले कर रहा था आर्टिस्ट, उसको हमने कम से कम 1 महीना ढोल बजाने का ट्रेनिंग दिया था और उसको परफेक्ट ढोली बनाया था हमने कि वो हर बीट बजा सकता था।
0: नहीं, बहुत सही बात है। और ये बात तो आपने बहुत ही अच्छी बता दी कि मैं समझ गया कि ढोली ने ट्रेन ढोली था, ऐसे नहीं था कि वो एक्ट कर रहा था ढोल बजाना। वाह, बहुत ही बढ़िया बात है। क्योंकि ज्यादातर मैंने देखा है, एक वो पिक्चर आई थी जयाप्रदा ऋषि कपूर की, उसमें वो ढप बजाता है, तो उसमें
1: हाँ
0: कोई रियल में वो नहीं बजाता है, नाम तो याद नहीं आ रहा है, मुझे याद है लेकिन
1: वो
0: वो पिक्चर का
1: सरगम,
0: ढप, सरगम सरगम सरगम सरगम, बिल्कुल
1: वो
0: आपसे याद
1: सरगम फिल्म मेरे चाचा की ही थी।
0: है।
1: वामन जी मेरे चाचा है।
0: अच्छा, वामन जी की है। चलो, वामन जी के बारे में तो मुझे अभी बात कर ली है आपसे, अभी उनका जिक्र आ गया हमारे। वामन जी के बारे में तो मुझे आपसे काफी बात करनी है। ओके
1: ओके
0: ओके
1: ओके ओके
0: तो
1: ओके
0: ओके चलिए, तो सरगम पे नाम पे एक अपन गाने के लिए रुक जाते और फिर इस बातचीत को जारी रखते हैं।

0: हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं दिनेश जी भोसले से और बात हो रही है ढोली की और उसमें ढोल बजाने वाले की। तो अब मैं दिनेश जी एक और आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, हालांकि आपने उसका जवाब अब काफी पहले दे चुके हो आप मुझे, कि आपकी फिल्म से कई लोग जुड़े हैं जैसे शिशिर शर्मा जी, उनका भी स्टोरी डेवलपमेंट, हिंदी डायलॉग इन सब में बड़ा एक सहयोग रहा है आपके साथ, तो कुछ उनके बारे में बताइए। किस तरह से वो आपके, आपने बता ही दिया है काफी किस तरह से जुड़ गए वो, लेकिन पहले तो ये बताइए आप दोनों का मिलान कैसे हुआ, कुछ ये बता दीजिए।
1: मैं एक हिंदी फिल्म कर रहा था 2012 में,
0: ओके
1: तो तभी हमें डायलॉग राइटर्स की जरूरत थी। तो हमारे जो सिनेमाटोग्राफर थे महेश अणे, उन्होंने उनका नाम रिकमेंड किया, तो वहां उनसे हमारे पहले बार पहचान हो गई। तो वो फिल्म में हमारे मेरे हिंदी फिल्म में वो डायलॉग राइटर थे, उससे हमारी पहचान हो गई। उसके साथ हम जो एनिमी फिल्म बनाए थे उसमें उनको हमने एक मेन विलेन का कैरेक्टर दिया था, नेगेटिव कैरेक्टर जो सेंट्रल मिनिस्टर रहता है, तो उसके बाद दूसरी फिल्म में वो हमारे थे, और बाद में तीसरी ये फिल्म जो ढोली बनी उसमें हमारा ये थर्ड ये है। पर इसके साथ क्या हो गया, शिशिर जी जो ज्वाइन होने के बाद वहां जब हम उत्तराखंड देहरादून में गए, तो वहां से और बहुत अच्छे अच्छे लोग हमारे साथ जुड़ गए, जैसे डॉक्टर हटवाल, देन अतुल बिश्नोई जी,

0: जो वहाँ के एक्टर भी हैं और वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी है, तो वो भी जुड़ गए। उसके बाद प्रेम हिंदवाल जो अच्छे ढोल वादक है वो हमारे साथ जुड़ गए। देन सुनील सिंह करके युवा है वहाँ पे, जो कास्टिंग डायरेक्टर जैसे साथ कास्टिंग डायरेक्टर करके हमारे साथ जुड़ गए। और ये और बहुत से लोग जुड़ गए। देन इसमें और एक इम्पोर्टेंट सदस्य हमारे ये यूनिट के थे, हमारे एडिटर वीरेंद्र गारसे। वीरेंद्र गारसे जो है वो हमारे मेरे चाचा के असिस्टेंट थे, तो वो मेरे फर्स्ट फिल्म से हमारे साथ है। तो मेरी फर्स्ट फिल्म है, डेब्यू फिल्म थी, वहां से वो हमारे साथ थे। तो वो भी डोली में जब हम फिल्म बना रहे तो वो भी स्क्रिप्ट टीम में बैठे थे। तो मैं, शिशिर जी और वीरेन तीनों मिलके फाइनल स्क्रिप्ट की थी। तो ये ऐसा करके हमारी एक टीम बन गई जो देहरादून में।
1: हाँ, तो लोग आते गए, कारवां बनता गया और नेशनल अवार्ड तक पहुंच गया। क्या बात है, क्या बात है। अब थोड़ा सा मैं दिनेश जी आपको पीछे ले चलना चाहता हूं दोबारा एक बार। दिनेश भोंसले नाम के उस यंगस्टर्स की कहानी मुझे बताइए, जिसे एक दिन फिल्मों की दुनिया ने अपनी ओर खींच लिया। सिनेमा से आपका पहला रिश्ता कैसे बना? क्या ये बचपन से ही था या कुछ खास ऐसी बात हुई कि सिनेमा की तरफ आप अट्रैक्ट हो गए?
0: मेरे बचपन में अगर बताया तो मैं, मुझे मालूम है कि हमारे गांव में बिजली नहीं थी, तो वो केरोसिन के दिए पे ऊपर या पेट्रोल मैक्स पे घर में लोग रहते थे। और दूसरा ये है कि अगर कोई मनोरंजन का साधन है तो वो एक सिर्फ रेडियो था। और मेरे वार्ड में, जो वार्ड बोलते हैं हमने, तो वो एरिया में सिर्फ एक ही घर में रेडियो था। और रेडियो भी कैसे, आप अभी जैसा नहीं, तो शाम को कुछ गीत बजते थे, ऐसा कुछ था। तो वो एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट था और बाकी ऐसा कुछ था नहीं। और साल में हमारे यहाँ रामनवमी हो जाती होती है गांव में अभी भी, तो वहां पे 3 नाटक हो जाते थे। तो लोग हर साल उसका ही इंतजार करते थे कि 3 नाटक कैसे मिलेंगे हमें देखने को। तो उसके बाद क्या हो गया था, मैं बचपन में, हम लोगों को थिएटर तो मालूम ही नहीं था कभी। तो हमें, जब मैं 8 साल का, 9 साल का या 10 साल का होगा मुझे याद नहीं है, पहला फिल्म जो मुझे अभी थोड़ा सा याद आया है वो भक्त प्रहलाद करके, जिसका मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। सिर्फ मैं डरा हुआ था क्योंकि उसमें मुंडी वगैरह काटते हैं तेल में वगैरह, उसको ये करते, तो वो देख के मैंने आंखें बंद कर ली थी। तो वो इतना ऐसा मुझे थोड़ा सा धुंधला सा याद आ रहा है। तो बाकी हमें कोई फिल्म नहीं था। अगर कोई बाद में, क्या जैसे बड़े हो गए, 4th में वगैरह आ गए, तो जैसे मेरे चाचा की अगर कोई फिल्म आती थी, जैसे अभी जिक्र हुआ सरगम, तो मेरे मामा के साथ हमें भेजा जाता था फिल्म देखने को, मैं, भाई, बहन सब, तो वो देखते। देन ऐसी फिल्म, ऐसे फिल्मों से रिश्ता हुआ। और बाद में मुझे मालूम भी नहीं था भाई, मैं बम्बई में जब आया, जब मैं 8th में था, तो मेरे चाचा के यहाँ आया था, तभी एक्चुअली मेरा ज्यादा ये आ गया कि फिल्म क्या है, कि एडिटिंग क्या होता है। मैं चाचा के साथ स्टूडियो में गया तो पता चला, और धीरे धीरे मेरी उसमें इंटरेस्ट बढ़ता गया। तो ये था कि मेरे मेरा इंटरेस्ट था, पर बाकी लोगों को, मेरे घर में बाकी लोगों को मुझे उसमें भेजने का इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि बिकॉज ऑफ माय हेल्थ कंडीशंस एंड और सब नेगेटिव ही थे। पर वो वहां से मेरे दिमाग में था कि मैं अगर जाऊंगा तो ये क्षेत्र में ही जाऊंगा। पर वो इंटरेस्ट मेरा बढ़ता गया, मरता है। और क्या होता है कि आपको कोशिश करनी, करती रहनी चाहिए, एंड देन ऑलवेज ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स।
1: बिल्कुल, क्या बात कही है आपने दिनेश जी, कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वाह, क्या बात। तो अब थोड़ा सा, जिनके आप चाचा जी के बारे में बात कर रहे थे, वामन भोसले जी के बारे में, अब आपके कैरियर में उनका एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है, एक पड़ाव रहा है, साथ काम किया है आपने। तो उनके साथ काम करने से आपने फिल्म मेकिंग के बारे में क्या-क्या महत्वपूर्ण सीखा, कुछ उसके बारे में बताइए। वामन जी के बारे में भी बताइए कि उनकी कौन-कौन सी खास-खास फिल्में थी, क्या था, कुछ बताइए उनके बारे में।
0: ये वामन जी जो है, मेरे चाचा है वो बंबई में आया आपसे आफ्टर पासिंग टेंथ, तभी टेंथ पास होना मीन बहुत ये था, मीन्स बहुत बड़ा अचीवमेंट था क्योंकि गांव में कोई स्कूल नहीं रहता था, तो टेंथ उनको एग्जाम देने बंबई में आना पड़ता था, क्योंकि गोवा में ये नहीं था, सेंटर नहीं था, तो टेंथ में आने के बाद वो यहाँ पे रह गए क्योंकि काम का कोई सुविधा नहीं था वहां पे जॉब का, तो यहाँ पे रह के वो जॉब करने लगे, तो उनको वो जो जॉब कर रहे थे क्योंकि मेरे बड़े बड़े चाचा के साथ थे वो, जो डाई मेकिंग का, मेरे बड़े चाचा डाई मेकर थे बंबई में, पर वो पर क्या होगा उनको काम नहीं जम रहा था क्योंकि वो लोखंड का काम था, काटना तोड़ना फोड़ना, तो उनको जम नहीं रहा था, तो उन हमारे पड़ोस में मेरे पड़ोसी के जो जमाई थे वो फिल्म एडिटर थे
1: ओके,
0: वो बम्बई में, तो मेरे चाचा को उतना मालूम था, पर उनको उस हिसाब से जाके मेरे पिताजी ने उनको मिलवाया और उन्होंने उनको ज्वाइन किया एज एन असिस्टेंट, और वहां से उनकी वो सीए स्टार्ट हो गए, एडिटिंग से फिल्म में यात्रा स्टार्ट हो गए, और उन्होंने ये जो एडिटर थे जिनके साथ वो असिस्टेंट थे उनका नाम था डी एन पाई, जिन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में की, ब्लैक एंड व्हाइट, साइलेंट फिल्म से ब्लैक एंड व्हाइट और सब बड़ी बड़ी फिल्म में बड़े नाम था उनका, तो उनके साथ उन्होंने आराम 12 साल असिस्टेंट काम करने के बाद उनको फर्स्ट टाइम जो ब्रेक मिला वो बड़ी फिल्म थी राज खोसला साहब की दो रास्ते, वो टाइम की वो बड़ी गोल्डन जो फिल्म थी, और उनका जो करियर ग्राफ है वो ऊपर जाते गया, और वो तभी एक वो आ गया था, अगर किसी को किसी बच्चे किसी स्टार को अपने बच्चे को लॉन्च करना है तो वामन भोसले, वामन जी को एडिटर लो, वामन गुरु करके जोड़ी बनी थी, तो वो वामन भोसले गुरुदत्त शिराले, अच्छा, तो वो उनको ले लो तो आपको कामयाबी मिलती है, तो उस हिसाब से बहुत से जो एक्टर्स को लॉन्च की थे किए थे तो उनकी फिल्में भी वामन जी ने एडिट की थी, और बहुत से डायरेक्टर है जो बड़े नाम हो जिनका बाद में बहुत बड़ा नाम हो गया, जैसे कि सुभाष जी, सुभाष गई,
1: देन
0: देन महेश भट्ट जी, देन गुलजार साहब, इनके सब की फर्स्ट फिल्म वामन जी ने किया, और उसके बाद बहुत सी फिल्में उनकी उन्होंने की है, तो वामन जी के ने बहुत बड़े शेखर कपूर से लेके देन सब बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ उन्होंने एज एन एडिटर काम किया, और सब लोग सब डायरेक्टर उनको लेना चाहते थे, पर उनके साथ उतना टाइम नहीं था कि सबकी फिल्में करे, और वो मुझे लगता है फर्स्ट जो एडिटिंग में नेशनल अवार्ड मिला था वो उनको मिला था, जो अच्छा। फिल्म का टाइटल था इनकार,
1: इनकार
0: मुंगड़ा मुंगड़ा वाली इनकार, उन्होंने अराउंड 278 फिल्में की है एडिटिंग,
1: मुझे ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के टाइटल्स आते थे तो वामन भोसले का नाम भी आता था उसमें, बहुत उसी जगह
0: जी जी।
1: और आपकी बात से ये बात भी साफ हो गई है दिनेश जी की एडिटर का काम कितना इम्पोर्टेंट है फिल्म मेकिंग में,
0: जी हाँ
1: है ना, क्योंकि आपने बताया कि नए जब स्टार किड्स लॉन्च होते थे तो उनको उनको उनके लिए वो इनका सहयोग मांगते थे, ये तो चलिए इसी बात पे हम वामन भोसले जी की बात पे रुक के एक गाना सुनते हैं और फिर अपने इस जर्नी को आगे जारी रखते हैं।

0: हाँ, वेलकम बैक दिनेश जी। अब थोड़ी सी बात करते हैं आपकी फिल्म्स मर्मबंद, कैल्पो, एनिमी और अमोरी के बारे में। तो आपने ढोली तक का सफर तय किया है, तो अगर पूरी सिनेमेटिक जर्नी को देखें हैं तो कौन से दो तीन पड़ाव आपको सबसे ज्यादा टर्निंग पॉइंट लगते हैं अपनी फिल्म के?
1: मुझे सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मेरे लाइफ का था जो तो मैंने मेरी फर्स्ट फिल्म मर्मबन बनाई थी।
0: ओके
1: मर्मबन जो है वो मराठी में थी फिल्म, और वो तब बनाई थी कि मेरे पास 5,000 थे और मैंने 55 लाख की फिल्म बनाई थी। तो वो मेरा सपना था कि मैं फिल्म बनाऊं, और वो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। जो सब्जेक्ट था कि प्री लिबरेशन ऑफ गोवा, आई मीन बिफोर 1960s, गोवा में थिएटर का जो ये था, थिएटर नाटक का जो नाटक क्षेत्र था, उसके बारे में था कि जैसे वहां पे फीमेल कैरेक्टर्स वे प्लेड बाय मेल कैरेक्टर,
0: अच्छा
1: ऐसे एक एक्टर की जीवन गाथा थी वो।
0: ओके
1: तो वो फिल्म हमने बनाई थी 2006 में, और ये बजट में बनाई थी और गोवा में शूट की थी, और वो पूरा पीरियड हमने एस्टेब्लिश किया था। और अभी के जैसा तभी नहीं था, तभी फिल्म पे शूट किया जाता था, अभी डिजिटल कैमरा थे। क्रिटिकली मींस बहुत ये किया, एक्लेम मिला उसको, प्लस अवार्ड्स भी मिले थे। जैसे महाराष्ट्र स्टेट जी गौरव, जी जो जी आज बोलते हैं, जी टीवी, उनके अवार्ड, देन गोवा स्टेट अवार्ड, बहुत। पर वो क्या मालूम है, उस वक्त अचानक वो ग्लोबल रिसेशन आ गया था, इसलिए हमने वो मींस कमर्शियली सक्सेसफुल हो नहीं सकी। पर उस वक्त अगर अगर वो ग्लोबल रिसेशन नहीं आता था तो वो फिल्म और बड़े मींस आगे जा सकती थी, और वो वेनिस फिल्म फेस्टिवल को भी शॉर्टलिस्ट हुई थी, पर हमारे हमारे कुछ गलती के उसे के लिए वो डिस्क्वालीफाई की गई।
0: अच्छा, मैं बस इसी में एक ही बात आपसे एक फॉलो अप क्वेश्चन पूछ, थोड़ा सा मुझे बताइए मर्मबंध का जो अर्थ है वो क्या है?
1: मर्मबंस मीन्स इमोर्टल बंस,
0: इमॉर्टल बंध,
1: नहीं
0: अच्छा
1: नहीं इमोर्टल बॉन्ड्स, बॉन्ड्स,
0: बॉन्ड्स, बॉन्ड्स, हाँ बंध मतलब बॉन्ड, ठीक है मैं समझ
1: या
0: गया, जैसे
1: इमोर्टल
0: बाजू
1: बॉन्ड्स।
0: बंध होता है, बाजू बंध होता है वैसे। हाँ
1: वैसे बॉन्ड होते हैं ना, हम बोलते हैं ना बॉन्ड, मेरा और
0: हाँ
1: मेरे
0: बॉन्ड,
1: फ्रेंड का एज अ फ्रेंडली बॉन्ड,
0: हाँ
1: वैसे। हाँ
0: इमॉर्टल बॉन्ड। तो आप थोड़ा सा ये बताइए कि आप डिजिटल सिनेमा को काफी नेशनल लेवल पे भी रिकॉग्निशन मिल रही है, तो गढ़वाली जैसी भाषाओं में फिल्मों के सामने आपकी नजर में सबसे बड़ी अब आजकल चैलेंज क्या है? फाइनेंस का, डिस्ट्रीब्यूशन का, थिएटर का, ऑडियंस का, या ओटीटी का, क्या सोचते हो आप इसके बारे में?
1: अभी ये फिल्म जो हमने डोली बनाई, उसके बाद हमने जब रिलीज करने का अभी प्लान चल रहा था, तो मैं ये गरवाली फिल्म रिलीज करने वाले हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है अनिल ध्यानी जी करके, वो दिल्ली में बेस्ड है, तो उनको मिला मैं और उनसे जानकारी कि कैसे फिल्म करे, क्या कैसे कैसे करे रिलीज करने के लिए। तो वहां पे उन्होंने मुझे कुछ जो बातें की, उसमें मैं आपको बताता हूँ कि जो प्रॉब्लम्स क्या है, ज्यादातर प्रॉब्लम्स ही है। प्रॉब्लम ये है कि वहां पे थिएटर जो है ना सिर्फ सिटी में है। जैसे अगर उत्तरकाशी में फिल्म रिलीज करनी है तो वहां पे थिएटर है नहीं, या और कहीं पे वहां पे उनका टाउन है वहां पे करना है तो वहां थिएटर नहीं है। और दूसरी बात बहुत ये हो गई है कि वहां पे गढ़वाली जो फिल्म फिल्म जो रिलीज की जाती है, तो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर उनका ये कहना था कि थिएटर वाले 50% ऑक्यूपेंसी मांगते हैं। वो तो ओके है, वो कोई भी थिएटर वाले मांगते हैं, पर प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वो बोलते हैं कि कुछ फिल्म मेकर्स ने एक गलत मीन्स रास्ता चुना है, जो खुद लोगों को फुकट में टिकट देते हैं और गाड़ी में बिठा लेके आते हैं और थिएटर में बिठाते हैं। और तो इसलिए वो बोलते हैं कि जो टिकट खरीद के आने वाले जितने थे वो कम हो गए हैं, क्योंकि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो फिल्म फाइनेंस स्कीम है गवर्नमेंट की, उसमें आपको एक कंडीशन है कि आपकी फिल्म कम से कम 5 थिएटर में 1 वीक चलनी चाहिए। इसलिए ये सब ऐसे गलत रास्ते कुछ लोग पकड़ रहे हैं, तो ये बहुत सा मींस नेगेटिव असर हो रहा है ऑन फिल्म बिजनेस इन गढ़वाली लैंग्वेज। तो ये
0: तो मैं समझ गया ये कर, हाँ बहुत हाँ। तो ये तो कॉम्प्लीमेंट्री लोगों को भीड़ इकट्ठी करना और थिएटर ही कम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही हो
1: रहा है। इंटीरियर्स में तो थिएटर ही है ना, जैसे उत्तरकाशी में बहुत लोग इंतजार करे कि ये फिल्म वहां पे दिखाए, वहां के लोगों का मुझे फोन भी आता है तो अभी मैं दिखाऊंगा कैसे वहां पे फिल्म। उनका कहना है कि वहां पे एक थिएटर है, वहां पे हम प्रोजेक्टर लगा के वे करके स्क्रीन लगा मैं वो बहुत टफ है, क्योंकि जब थिएटर में जो देखने का फिल्म का मजा आता है ना, वो ऐसा छोटा सा प्रोजेक्टर लाके वो मजा नहीं आएगा।
0: तो चलिए अब हम एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेते हैं गाने के लिए और फिर हम अपने एक दूसरे सेगमेंट की तरफ आ रहे हैं जिसमें हमारे साथ कुछ एक्टिव लिसनर्स जुड़ेंगे, तो अब उसके बारे में दिनेश जी से बात करते हैं।

0: हाँ, वेलकम बैक दिनेश जी। दिनेश जी, जब हमने अपने लिसनर्स को बताया और हमारे ग्रुप में डाला कि ढोली के डायरेक्टर आ रहे हैं, तो सब बहुत एक्साइटेड हो गए। कुछ ने कहा कि हम भी उनसे सवाल करना चाहते हैं, ये करें, तो अब सबके लिए तो पॉसिबल नहीं था। लेकिन एक हमारे यंग लिसनर्स हैं जो बहुत ही टैलेंटेड है, और उनका नाम है तनुषा, तनुषा नागरथ। शायद बहुत
1: हाँ
0: लोगों को उनको पूरा नाम नहीं पता है, लेकिन आज उनका नाम पता लग जाएगा कि उनका पूरा नाम है तनुषा नागरथ। उन्होंने बहुत एक अच्छा सा सवाल पूछा है आपसे, और वो सवाल ये पूछा है आपकी फिल्म के बारे में ही है कि चलिए, नेशनल फिल्म को मिल गया, बहुत अच्छी बात है, ये सबका एक ड्रीम होता है कि आपको नेशनल अवार्ड मिले। लेकिन अगर अवार्ड को अपन एक तरफ रख देते हैं, तो ढोली की जो जर्नी है, उससे अगर कोई एक बात कोई लेके जाना चाहे, एक मेमोरी, एक सीन या एक कोई इमोशन अपने साथ घर लेके जाना चाहे, तो वो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए पूरी फिल्म से?
1: क्या होता मालूम है, फिल्म जब बनाते हैं ना, तो हम लोग ऐसा किसी को क्या लेना चाहिए क्या है वो कभी दिमाग में रखते नहीं, क्योंकि हर एक का एक हर एक आदमी का एक कैरेक्टर अलग रहता है। हो सके तो जैसे फिल्म देखने के बाद, मेरे एक फिल्म है आमोरी करके, उसमें फिल्म हर एक को ना अलग अलग एंगल से दिखती है। जैसे ढोली जो है ना अलग अलग, पर उसमें पॉजिटिव बात यह है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो क्लाइमेक्स में हमने जो दिखाया है ना, क्लाइमेक्स में जो ये लड़के का जो जो डिस्क्रिमिनेशन से जाके अब ऊपर आया है, वो ना सिर्फ वो कैरेक्टर को ही नहीं, पर हर एक के लाइफ में हमने अगर ये सीख ली ना, तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं।
0: बहुत बढ़िया जवाब। मतलब चैलेंजेस को जिस तरह से ओवरकम किया और लाइफ में आगे बढ़ा
1: हाँ
0: है, वो बहुत एक
1: हाँ
0: बड़ा
1: हाँ
0: टेक अवे है इस फिल्म का। वाह।
1: या
0: तो तनुषा जी, थैंक यू
1: थैंक
0: फॉर योर क्वेश्चंस। और अब एक हमारे दूसरे बहुत ही एक्टिव और बहुत बढ़िया लिसनर है, रविशंकर जी। उनका एक सवाल है, क्या आपने अपने आप को फिल्म के टीनेजर के रूप में सोचा था? आपने विजुलाइज किया था कि ये टीनेजर हूं मैं? क्यों, तभी क्या लाइफ का टर्निंग पॉइंट आता है इस फिल्म में? किस तरह से टर्निंग पॉइंट आया था उसकी लाइफ में?
1: ये जो कैरेक्टर जो है इसमें जमनदास, या मैं एज अ डायरेक्टर आई हैव टू बी विथ एवरी कैरेक्टर। जब कैरेक्टर लिखते हुए वो कैरेक्टर मुझे खुद होना पड़ता है, तभी हम कैरेक्टर लिख सकते हैं, ताकि वो कैरेक्टर को हम जिंदा कर सकते हैं।
0: जी
1: तो ये जो कैरेक्टर है, जो जिसने वो टर्न ओवर टर्न टर्न टर्निंग पॉइंट उसका लाइफ का था, जब वो इज अ टीनेजर, क्योंकि उसी वक्त उसके फादर की डेथ हो जाती है, और फादर डेथ से पहले उसे रिक्वेस्ट करता है कि तुम गांव छोड़ के शहर जाओ, यहाँ पे कुछ नहीं है, जैसे तुम्हारा बड़ा भाई गया है। पहले पिताजी को लगता है कि बड़ा भाई गलत कर रहा है, और अभी
0: अच्छा
1: उसको लग रहा है कि डेथ पे है, तो कि यहाँ रह के कुछ होने वाला नहीं है, बिकॉज ही वॉज आर्डेंट फॉलोअर ऑफ दैट कल्चर, या जो सालों सालों से चल रहा जो उनका ये था रीति रिवाज, उसका फॉलोवर था। इसलिए वो बड़े बेटे को बोलता है कि मत जाओ ये छोड़ के, यहाँ पे हमारा सब कुछ है। तो बड़ा जाता है, देन एट द डेथ बेड पे उनको लगता है, ये रियलाइज इस डेथ कि बड़ा लड़का ठीक था, और इसको बोलता है कि तुम अभी जाओ, यहाँ पे कुछ नहीं है। एंड देन लड़का बोलता है नहीं, मैं जाने वाला नहीं छोड़ के, जो है मुझे यहाँ करना है, यहाँ ही हासिल करना है, और लोगों को दिखाना है। ये है, ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है उसमें।
0: बहुत बढ़िया, मजा आ गया। आपने तो एक ऐसे फिल्म की स्टोरी के धागे हमारे सामने छोड़ दिए कि हमें लग रहा है कि हम इस पिक्चर को जल्दी से जल्दी देखें किसी तरह से।
1: थैंक यू
0: बिल्कुल, आपने ऐसे
1: थैंक
0: सूत्र छोड़

0: रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर भी हैं और एक आला दर्जे के वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं। मैं समीर भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहली बात तो उनके मन में भी अगर कोई सवाल हो तो वो जरूर पूछें, और दूसरा दिनेश जी को हमारे शो में आने के लिए शुक्रिया अदा करें रेडियो की तरफ से।
1: दिनेश जी थैंक यू सो वेरी मच, आपका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने व्यस्त शेड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकाला, हमारे सभी लोगों ने सुना। जाहिर सी बात है जो भी बात मैं सुन रहा था लगातार, तो सवाल तो बहुत सारे हैं, बहुत बहुत सारे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है आपके पास भी इतना वक्त नहीं होगा और हमारे पास तो छोटे छोटे बच्चों जैसे सवाल भी हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। मैं तो बिल्कुल जो एप्रोप्रिएट और पर्टिनेंट सवाल है वो कोशिश कर रहा हूँ आपसे पूछने की। हम लोग किसी ज़माने से सभी लोग मानते हैं कि सिनेमा या फिल्म जो होती है वो हमारे जीवन का आईना होती है, हमारे समाज का आईना होती है। जैसे आपने अभी ढोल के बारे में बोला, बहुत खूबसूरत बात आपने बताया कि अलग अलग वक्त पर ढोल अलग अलग ताल में बजता है, अपने आप में यही कितनी खूबसूरत बात है, बड़ी खूबसूरत कि भाई डोली विदा होती है तो ऐसे, किसी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे, बस में बैठती हैं तो ऐसे, कितने जबरदस्त वेरिएशन है। पॉइंट यह है कि सभी लोगों को ये बात समझ में आवे कि किस तरीके से वेरिएशन आता है। मेरा जो सवाल है सर वो थोड़ा आर्टिस्टिक ही है, बात हो रही है ढोल को सुनने की। मैं थोड़ा स्वार्थी होकर ये सवाल पूछूंगा दिनेश सर, बिकॉज हम लोग रेडियो में डील कर रहे हैं। मैं आवाज को सुनने का बहुत बड़ा फैन हूं, मेरा बहुत तहे दिल से मानना है कि जब हम आवाज सुनते हैं तो हमारे दिमाग में पिक्चर बनती है, और मुझे ऐसा ही लगता है जब कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर फिल्म बनाता होगा तो उसे कुछ तो सुनाई देता होगा, कुछ तो पिक्चराइजेशन उसके दिमाग में होता होगा, और फिर वो उसको कैनवस पर उतारने की कोशिश करता है। तो आज की डेट में दिनेश सर मेरा सवाल यह है, सुनने का क्या महत्व बचा है, आई मीन टू से रेडियो का रेलिवेंस कितना है। आपने भी अभी जिक्र किया था कि किसी जमाने में आप रेडियो सुना करते थे, आज की डेट में रेडियो का रेलिवेंस क्या है, दिनेश सर हमें गाइड कीजिए।
2: पहले जो मैं बोला था कि रेडियो सुनते थे क्योंकि वो स्कार्सिटी था, रेडियो किसी के था नहीं, और जाके और बाकी कोई सुविधा या बाकी कोई और एंटरटेनमेंट सुविधा नहीं थी, तो रेडियो वाज़ द ओनली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर अस, तो हम वहां जाके वो रेडियो सुनते। पर आज क्या हो गया कि रेडियो के साथ आपको इतने अलग अलग चैनल आ गए हैं, बहुत से चैनल आ गए, मीन्स FM रेडियोज, और जो आप बोल रहे अलग, तो कंपटीशन बहुत टफ हुआ है फॉर रेडियो। और पर क्या होता है कि लिसनर्स जो है ना वो रेडियो बहुत सुनते हैं, जैसे मुझे लग रहा है, क्योंकि रेडियो सुनने का एक अलग ये है, जैसे कि जैसे आप काम करते करते भी रेडियो सुन सकते हैं, जैसे कि वीडियो में ऐसा नहीं होता है, आपको दोनों लिसन भी करना पड़ता है और व्यू भी करना पड़ता है। इसमें क्या होता है, आप बैठ के अगर कोई बुक पढ़ रहे तो भी रेडियो पर सुन सकते हैं, घर में काम करे तो भी रेडियो सकते हैं, खेत में काम कर रहे रेडियो सुन सकते हैं। और रेडियो एक पहले जैसा एक ही काम का नहीं रहे, रेडियो में अभी अलग अलग तरह से आपका एंटरटेनमेंट, जो आप गाने भी बजाए, जैसे अगर अभी ये कार्यक्रम आप कर रहे उसमें से क्या हो रहा है, गाने तो सुनने को मिल रहे और अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग कुछ नया सीखने को लोगों को मिल रहा है। तो रेडियो तो चलेगा ही आगे जाके, ऐसा नहीं कि रेडियो डाउन होगा, पर चलेगा, क्योंकि हम जैसे हम आगे जा रहे हैं तो उसको नया नया इनोवेशन लेके आना पड़ता है। जैसे वो रेडियो के लिए नहीं, फिल्मों में भी हमें नया नया इनोवेटिव कुछ लेके आना पड़ता है, तभी लोगों को वो अप्रिशिएट करे या अट्रैक्ट करे। वैसे रेडियो में भी नया नया नए नए कुछ आइडियाज लेके आते हैं, इसलिए तो लोग लिसनर्स बढ़ते जाते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत बहुत खूब, क्योंकि आप सीजन्ड कलाकार रहे हैं, कलाकार मतलब आर्टिस्ट जिनके दिमाग में कुछ चलता है, जिन्होंने फिल्में बनाई, तो इस वजह से आपसे एक लर्निंग लेने की कोशिश के चलते ये सवाल मैंने आपसे पूछा था।

0: मैं हूँ, आलोक जी हैं और हमारे साथ कुछ और हमारे दोस्त हैं जो मिलके रेडियो को, हमारा मिशन है रेडियो को वापस से जिंदा करना, वापस से मेन स्ट्रीम में लेके आना। मैं मानता हूँ कंपटीशन बहुत है। दिनेश सर, थैंक यू सो वेरी मच, आपका बहुत बहुत आभार है। दोस्तों, आज आपने सुना दिनेश भोसले साहब को, जो बहुत सीजन्ड फिल्म मेकर है, बहुत बहुत सारे प्रतिभाशाली और टैलेंटेड डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के साथ उन्होंने तमाम फिल्में बनाई हैं, आपने इस पूरे प्रोग्राम में सुना ही। तो हमें भी इनसे कुछ तो सीखने को मिला, कुछ तो एनलाइटनमेंट हमें भी मिला, हम किस तरीके से सोचें। दिनेश सर, आपका बहुत बहुत करबद्ध आभार मैं प्रकट करता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए, हम ऑनर्ड हैं। थैंक यू।
1: थैंक यू समीर जी, थैंक यू आलोक जी मुझे मंच में लाने के लिए।
2: थैंक यू दिनेश जी, थैंक यू समीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत आभार और शुक्रिया। और दोस्तों, जिन्होंने ढोली नहीं देखी है जरूर देखिएगा। नमस्कार।
0: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

आइए दोस्तों, थोड़ा सा जोश से भर जाते हैं, थोड़ा उत्साहित होते हैं। पूरी जिंदगी हमारी उसी पर निर्भर करेगी दोस्तों। दोस्तों, हमारे पूर्वजों की जीवन शैली हेल्दी रहने के लिए इसलिए थी क्योंकि वो प्रकृति के पास थे, नेचर के नजदीक थे। सुबह सुबह का वातावरण इतना शांत और पवित्र होता है कि ऋषि मुनि ब्रह्म मुहूर्त में भजन पूजन करते थे। वे मुर्गे की बांग के साथ उठते थे और चांद निकलने पर तुरंत सो जाते थे। वो अपने शरीर को प्रकृति के साथ चलाते थे। आज प्रकृति का मनुष्य से संपर्क तो टूट ही चुका है। रात को देर तक जागने से, सुबह देर से उठने से स्फूर्ति का अभाव तो होता ही है और आलस भरा रहता है। नए अनुभवों से सामंजस्य बैठाने के लिए पॉजिटिव आत्म छवि यानी कि अपने बारे में अच्छा सोचना बहुत जरूरी है। जब आपकी सोच बदलती है तो आपके एक्शन बदल जाते हैं, जिससे आपकी उपलब्धियां बदल जाती हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने, सम्मान पाने और अच्छे परिणामों से सकारात्मक बदलाव लाने की चाबी अच्छी आत्म छवि बनाए रखने में है। अपने बारे में अच्छा सोचिए दोस्तों। अपनी बातों पर अड़े रहने का रवैया आपकी तरक्की की राह में बाधा बन जाएगा दोस्तों। फ्लेक्सिबल होना सीखिए, लचीला बनना सीखिए। इस अड़ियलपन से निजात पाने के लिए आपको अपने पुराने विचारों को उस समय हटाना ही पड़ेगा जब कोई ये साबित कर रहा हो कि इससे नया और बेहतरीन विचार उनके पास है। जरा सुन तो लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। ठहराव से बचना है तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि आप गलत हो सकते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति की पहचान यही है कि वो नए के लिए तैयार रहे।

दोस्तों, रेडियो सुनने का एक और फायदा बताता हूं। रेडियो अच्छे सकारात्मक गीत संगीत और विचारों के साथ आपके दिमाग की आपके मस्तिष्क की व्यायाम शाला है। आप रेडियो बिना उसकी तरफ देखे हुए सुन सकते हैं। अपने काम करते रहिए और रेडियो सुनते रहिए, है ना मजेदार रेडियो के साथ।

ये करीब 90 साल पुरानी बात है। एक बनारसी बंगाली किशोर बड़े ही शौक से कलकत्ता पहुंचा। देश की राजधानी रह चुका हुआ यह शहर तब दिसंबर की गुलाबी ठंड से सराबोर था। कलकत्ते से समुद्र ज्यादा दूर नहीं है, पर वो उस हुगली नदी की गोद में बसा हुआ है जिसमें गंगा का जल बहता है। बड़ी खूबसूरत बात है कि बंगाल में आते ही गंगा जी ज्यादा कलाकार हो जाती हैं, अपना नाम बदलकर पद्मा और हुगली रख लेती हैं। बहरहाल वो जमाना था जब कलकत्ते में खड़े होकर बनारस के रंग को महसूस किया जा सकता था। वो किशोर भी बस उसी रंग में डूबा हुआ था। कहीं से सितार, कहीं से शहनाई, तो कहीं से मृदंग की गूंज उठती थी। वहां विशाल संगीत समारोह चल रहा था। देश भर के आला संगीतज्ञ वहां थे, एक से बढ़कर एक सजीले, खूब चमकदार रंगीन पोशाकें और उन पर शोभित खूब सारे पदक मेडल्स, उस पर से भी भारी भरकम गहनों के क्या कहने, मानो किसी राजा की बारात जा रही हो जिसमें खूब सारे राजा राजकुमार आए हो, पूरा जौहर जलवा दिखाने। पर सजीलों की भीड़ में एक बहुत ही सादे और साधारण से व्यक्ति भी विराजमान थे। बस उन्हीं पर किशोर की नजर ठहर गई। वो किशोर 4 साल से नर्तकों की दुनिया का वासी था, 10 साल की ही उम्र में यूरोप घूम रहा था। एक से बढ़कर एक कलाकार सामने आए थे उसके, पर अभी नजर बार बार ऐसे सज्जन पर ठहर जाती थी जो कतई प्रभावशाली नहीं दिख रहे थे। किशोर ने शायद अपने बड़े भाई उदय शंकर से पूछा तो पता चला कि ये साधारण से दिख रहे संगीतज्ञ का नाम उस्ताद अलाउद्दीन खान है। कई तरह के साज बजाते हैं, किसी संत की तरह रहते हैं। वाकई वो किसी दीपक की तरह लग रहे थे जिनकी संगीतमय आभा कानों में घुल रही थी, दिल में उतर रही थी और नसों में पसर कर रोम रोम को हर्षित कर रही थी। जब शारदा मां की पावन भूमि मैहर से आए उस्ताद का संगीत सामने आया, तब चारों तरफ फैले सजीले लोग अपना अर्थ खो बैठे। मन बोल उठा कि ऐसे उस्ताद से जरूर कुछ सीखना चाहिए। बड़े सौभाग्य की बात रही कि उदय शंकर की गुहार पर उस्ताद नृत्य मंडली के साथ यूरोप जाने को तैयार हो गए। अब तो उस किशोर को उस्ताद के साथ सुबह शाम रहने का मौका मिल गया। कभी कभी किशोर के मन में होता था कि वो अलाउद्दीन खान साहब को विधिवत उस्ताद बना ले, तो कभी किशोर का मन कच्चापन से हावी हो जाता था। तब उस्ताद ने कहा, तुम पहले तय कर लो कि करना क्या है, सीखना क्या है, कहीं एक जगह मन लगा लो तो चले आना मेहर और सीखना। खैर एक दिन आया जब शिष्य ने फैसला कर लिया, बड़े भाई की ग्लैमरस नृत्य मंडली को अलविदा कहा और बहुत साधारण लिबास में मैहर पहुंचकर उस्ताद के चरणों में समर्पित हो गए। उस्ताद बहुत पक्के थे, उन्होंने ना सीखने में समझौता किया था और ना ही सिखाने में। उस्ताद ने अपनी बेटी अन्नपूर्णा देवी और बेटे अली अकबर खान के समान ही मानकर अपने उस शिष्य को पारंगत किया। पूरे मनोयोग से सीखने सिखाने का दौर चल पड़ा। राग भैरव से भोर होती थी, भीम पलासी से दोपहरी तपती थी, यमन से शाम और मल्लार से रात चढ़ती थी। उस्ताद के आंगन में रोज 18 घंटे संगीत लहरियां उठती थीं। वो संगीत के मैहर घराने का स्वर्णिम काल था। अकबर सरोद सीखते थे, अन्नपूर्णा सुरबहार, और उस युवा को सितार के तार पर उंगलियां साधने में लगभग 7 साल लग गए। तब दुनिया को पंडित रवि शंकर के रूप में
एक विरल संगीतज्ञ मिला। ऑल इंडिया रेडियो की नौकरी से न्यूयॉर्क लंदन तक पंडित रविशंकर के नाम का सिक्का चलता था। संगीत के जादू से सम्मान की बारिश तो होती ही थी। 7 अप्रैल को दुनिया में आने वाले रविशंकर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो अपने उस्ताद को किसी ईश्वर की तरह मानते थे और हमेशा तमन्ना रहती थी कि उस्ताद कुछ और सिखा दें। देश की अद्भुत हस्ती उस्ताद ने भी रविशंकर को सब कुछ दिया। अपनी बेटी अन्नपूर्णा का हाथ देकर दामाद भी बनाया। वो संसार के व्यस्ततम संगीतज्ञों में शुमार रखते थे। आज यहां तो कल वहां। उस्ताद ने एक बार उन्हें डांटा भी, तुम तितली की तरह हो, एक साथ बहुत सारी चीजें करते हो। समय बदला पर एक साथ कई काम की ललक छूटी नहीं। फिल्मों के लिए भी खूब काम किया। राज्यसभा में मनोनीत हुए, भारत रत्न से नवाजे गए। वो कहते थे, जब मैं कोई राग बजाना शुरू करता हूं तो सबसे पहले अपने आसपास की दुनिया को बंद कर देता हूं और फिर अपने भीतर गहराई तक उतरने की कोशिश करता हूं। अब दोस्तों, ऐसी कोशिश का ही तो कमाल है कि उनका

0: रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज।
1: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
2: एक बार सोनू ट्रेन में सफर कर रहा था। ट्रेन में बहुत भीड़ होने की वजह से वो एक गंजे आदमी की गोद में बैठ गया। आदमी बहुत गुस्से में चिल्ला, मेरे सर पे आके बैठ जा। सोनू बोला,
3: नहीं अंकल, मैं यही ठीक हूँ, वहां से फिसल कर तो गिरने का डर रहता है ना।

संत महजी के प्रकांड पांडित्य और विरक्त स्वभाव की ख्याति पूरे जापान में फैली हुई थी। अक्सर जिज्ञासु उनके पास आते थे और अपनी शंकाओं का समाधान लेकर संतुष्ट होकर लौट जाते थे। एक दिन जापान के राज्यपाल कियाजारी उनके दर्शन के लिए पहुंचे। उन्होंने अपने निजी सचिव को अपना परिचय पत्र यानी कि विजिटिंग कार्ड दिया और संत जी के कमरे में भेजा। संत जी ने विजिटिंग कार्ड पढ़ा, उसमें उनके राज्यपाल होने की चर्चा थी। संत जी ने सचिव से कहा, सुनिए भैया, उनसे कहिएगा कि मैं राजकाज की बात करने वाले किसी भी व्यक्ति से नहीं मिलता, क्योंकि मुझे दरअसल राजनीति की बातें आती ही नहीं है। मैं तो केवल धर्म और साहित्य की चर्चा कर सकता हूं। निजी सचिव ने बाहर लौटकर राज्यपाल को संत जी के सारे बातों के बारे में बताया। राज्यपाल जी को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने कागज पर सिर्फ अपना नाम लिखकर भेज दिया। संत जी ने उन्हें बुलवा लिया। घंटों तक बैठकर उनके साथ धर्म की और ईश्वर के संबंध में चर्चा आई करते रहे। जब राज्यपाल लौटने लगे तो संत महजी ने कहा, देखिए महाराज, धर्म का सार सेवा, परोपकार, न्याय और करुणा जैसी चीजें होती हैं। ये सभी गुण मानव को अमर बनाते हैं, उसे शांति देते हैं। आप व्यावसायिक तौर पर क्या करते हैं, ये आप नहीं हैं, तो इसे हर जगह पर दिखलाते मत घूमा करिए। दोस्तों, समझने वाली बात है, जब कोई हमसे पूछता है कि आप कौन हो, तो हम बताते हैं कि हम इंजीनियर हैं, हम डॉक्टर हैं, हम साइंटिस्ट हैं, हम पॉलिटिशियन हैं, हम टीचर हैं, हम मजदूर हैं, हम ठेकेदार हैं, हम आर्किटेक्ट हैं और जाने क्या क्या। लेकिन दोस्तों, आपको नहीं लगता कि ये सारी चीजें वो काम हैं जो आप करते हैं? मरीजों को ठीक करना डॉक्टर का काम है, तो आप डॉक्टरी का काम कर रहे हैं। कोई ब्रिज बनाना, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना, कोई नई चीज को बनाना इंजीनियर का काम है और आप इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं। इसी तरीके से और चीजें, पर दोस्तों, आप दरअसल हैं कौन? आराम से विचार करिएगा। हमारे पद, हमारे काम, क्या यही बस हमारी पहचान है? इन काम और पदों के पीछे भला हम हैं कौन? एक बार पूछ के देखिएगा किसी से।

दोस्तों, रेडियो सुनने का एक और फायदा बताता हूं। रेडियो अच्छे सकारात्मक गीत संगीत और विचारों के साथ आपके दिमाग की आपके मस्तिष्क की व्यायाम शाला है। आप रेडियो बिना उसकी तरफ देखे हुए सुन सकते हैं। अपने काम करते रहिए और रेडियो सुनते रहिए, है ना मजेदार रेडियो के साथ।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: माँ, ये लड़कियां इतने व्रत क्यों रखती हैं?
2: माँ ने कहा, बेटा इतनी आसानी से थोड़े ही मिल जाएगा किसी को। तू टिल्लू जो था वो मनी मन सोचता हुआ सोचने लगा, कसम से आज पहली बार देवता वाली फीलिंग सी आ रही है।

मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप हैं जाबुआ के अपने रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम पर और आप सुन रहे हैं प्रेरणादायक बातों के साथ प्रेरणादायक गीत। जर्मनी के क्लॉस्टल शहर में उस बच्चे ने होश संभाला, तब अपने परिवार को खूब लंबा चौड़ा पाया। उसके दो तो बड़े भाई थे और उससे छोटे 10 भाई बहन, मतलब पूरे 11 भाई और 2 बहनें। छोटे भाइयों को बड़े भाइयों के बड़े होने का इंतजार रहता था ताकि बड़ों के कपड़े उन्हें मिल जाएं। हफ्ते में 2 दिन अच्छा खाना मिलता था, बाकी दिन सूखी ब्रेड। शक्कर का तो स्वाद बच्चों ने चखा ही नहीं था। पिता खदान में काम करके बस जरूरी धन कमा पाते थे। देर रात जब पिता सुस्ताते थे तब दूर देश की कहानियां सुनाते थे, तो वो बच्चा भी दुनिया घूमने की तमन्ना से भर जाता था। धन की सीमा होती है पर मन की तो नहीं ना, मन तो बार बार सरहदें लांग जाता है। सरहद पार की खबरें अखबारों में ही आती हैं, तो वो बच्चा आसपास आने वाले अखबारों में झांकने लगा। अखबार पढ़ने वालों से सुनता रहता था और पढ़े हुए अखबार को बार बार पलट पलट कर देखता था। एक एक अक्षर में झांकते हुए वो बच्चा अखबार पढ़ना सीख गया। एक दिन मां बाप दोनों दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो गए कि उनका महज 5 साल का बच्चा अखबार पढ़ रहा है, ये तो चमत्कार है। अक्षर तोतली आवाज में साकार होने लगे, जबकि बच्चा स्कूल भी नहीं गया था। खुशनसीब मां बाप ने मन ही मन इस बच्चे पर खास ध्यान देने का फैसला कर लिया। उसके बाकी भाई बहन खूब खेलते थे, लेकिन वो जीव जंतु फूल पत्ती में ही लगा रहता। एक दिन वो पिता के टूटे हुए संदूक के सामान को देख रहा था, उसमें उसे एक पुराना पॉकेट लेंस दिखाई दिया। उस मैग्नीफाइंग ग्लास में खरोंच के निशान थे, पर बालक ने उसे उठा लिया और पिता के पास पहुंचा। पापा ये मुझे दे दीजिए ना, मैं अपने जंतुओं को इसकी मदद से देखूंगा। पिता फिर चौंक उठे और उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो जानते थे कि उनका पुत्र प्रकृति के प्रति अथाह जिज्ञासा से भरा है, तो इसे रोकना ठीक नहीं होगा। उन्होंने खुशी के साथ कहा, लेंस ले लो बेटा और सदुपयोग करो इसका। फिर क्या था, वो बच्चा घंटों जीव जंतुओं को निहारा करता और उसे अलग ही संसार नजर आने लगा। प्रकृति प्रेम ही उसे चिकित्सा शास्त्र की ओर ले गई, और इसमें एक खास पहलू ये भी था कि डॉक्टर बनने से तब दुनिया के घूमने की संभावनाएं बढ़ सकती थी। उम्र कुछ बढ़ी तो दोनों बड़े भाई कमाने के लिए अमेरिका चले गए, पर उसे माने जाने नहीं दिया। मां की इच्छा थी कि कम से कम एक संतान पढ़कर नाम रोशन तो करे। किसी तरह परिवार ने हिम्मत दिखाई और उसे स्कूल पास युवा को गोटिंगेन शहर उच्च शिक्षा के लिए भेज दिया। तब पिता तो पुत्र की तेजी देखकर सकुचा जाते थे कि अगर रुचि दिखाएंगे तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। समझदार युवा ने सोच लिया कि आगे का रास्ता उसे खुद तय करना है। विश्वविद्यालय में उसने एक शोध पत्र लिखा, जिसमें सबसे ऊपर उसने लिखा, कभी बेकार मत बैठिए, कभी निष्क्रिय मत रहिए। वाकई दुनिया जो देख रही है वो दुनिया जिसे केवल मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा जा सकता है, दोनों में कुछ भी निष्क्रिय है ही नहीं। ये शोध पत्र इतना कामयाब हुआ कि उन्हें पूरे $60 पुरस्कार में मिले, संग्रहालय में नौकरी भी मिली और लोग उस विद्यार्थी को रॉबर्ट कोच के नाम से जानने लगे। रॉबर्ट कोच ने पिता को फिर अचंभित कर दिया। अपने मजाकिया लहजे में पिता को पत्र लिखा, कभी कभी ऐसा हो जाता है पापा, अंधी मुर्गी को भी मक्के का दाना मिल जाता है। समझिए मेरे साथ ऐसा ही हो गया।
अब जैसे जैसे परीक्षण की सुविधाएं बढ़ती गई, रॉबर्ट कोच विशेष रूप से खतरनाक बैक्टीरिया के चक्रव्यूहों को भेदते चले गए। सबसे पहले उन्होंने जानलेवा बीमारी एंथ्रेक्स के बीजाणुओं को खोज निकाला। चकित रोग वैज्ञानिक जूलियस कोहन हेम ने तब खुशी से भरकर कहा, यह तो बहुत बड़ी खोज है और ये युवा रॉबर्ट कोच अपने परीक्षण प्रतिभा में हमसे बहुत आगे निकल गया है। ऐसा ही हुआ। रॉबर्ट कोच ने बैक्टीरिया का पीछा करते करते दुनिया को 24 मार्च 1882 को बताया कि जानलेवा बीमारी तपेदिक का रोगाणु कैसे काम करता है, और रातों रात वो दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। रोगाणुओं की विशाल बस्तियों में खोजते खोजते रॉबर्ट कोच ही थे जिन्होंने एक दिन बताया कि हैजा कैसे होता है। उनकी खोजों में अनेक प्रकार की दवाइयों के लिए रास्ता आसान बना दिया गया। कभी खूब अभाव देखने वाले इस इंसान ने खूब पैसे कमाए, लेकिन अहंकार छू न पाया उन्हें। वो कहते थे, मैं तो टहल रहा था, सोना राह के किनारे पड़ा था, संजोग से मुझे दिख गया बस। बेशक नोबेल प्राइज से सम्मानित इस वैज्ञानिक को दुनिया भूल नहीं पाएगी। तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूं समीर, कल मिलते हैं।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

आज के कलाकार प्रोग्राम में आज की कलाकार हैं सुप्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी। हेमा मालिनी जी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को अम्मनकुड़ी तमिलनाडु में हुआ था। उनका जन्म एक तमिलियन परिवार में हुआ। उनका पूरा नाम हेमा मालिनी आर चक्रवर्ती है। आइए सुनते हैं हेमा मालिनी जी की फिल्म का ये गीत।

हेमा मालिनी जी की शादी बॉलीवुड के मैचो मैन अभिनेता धर्मेंद्र से हुई है। उनकी दो बेटियां हैं, ईशा देओल और आहाना देओल।

हेमा मालिनी जी ने चेन्नई के आंध्र महिला सभा से अपनी पढ़ाई पूरी की। रुपहले पर्दे पर हेमा ने पहली बार एक डांसर के रूप में एंट्री ली। एक तेलुगु फिल्म में हेमा ने एक डांस में पहली बार बड़े पर्दे पर अपनी झलक दिखाई, लेकिन साउथ इंडिया फिल्म निर्माताओं को वो इम्प्रेस नहीं कर पाई। इस तरह 4 साल के संघर्ष के बाद हेमा साउथ इंडिया फिल्मों में हिट नहीं हो पाई। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म का एक और गीत।

लगभग 4 दशक के फिल्मी करियर में उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में की, लेकिन करियर की शुरुआत में उन्हें वो दिन भी देखना पड़ा जब एक निर्माता निर्देशक ने उन्हें यहां तक कह दिया कि उनमें स्टार अपील है ही नहीं। चलिए दोस्तों, उनकी फिल्म का एक गीत सुनते हैं।

हेमा ने जब फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तब एक तमिल निर्देशक श्रीधर ने उन्हें अपनी फिल्म में काम देने से मना कर दिया और कहा कि आप में स्टार अपील है ही नहीं। बाद में 70 के दशक में इसी निर्माता निर्देशक ने उनकी लोकप्रियता को भुनाने के लिए उन्हें लेकर 1973 में गहरी चाल नाम की फिल्म बनाई। आइए दोस्तों सुने उनकी फिल्म का ये गीत।

सिनेमा की खूबसूरती और डांस टैलेंट ने हिंदी फिल्मों के शोमैन राज कपूर को प्रभावित किया। राज कपूर ने उन्हें अपनी फिल्म सपनों का सौदागर में एंट्री दी। सपनों का सौदागर की नायिका के रूप में हिंदी फिल्मों को उसकी ड्रीम गर्ल की पहली झलक मिली। आइए दोस्तों सुने उन्हीं के ऊपर फिल्माया गया इसी नाम का ये गीत।

धीरे धीरे हेमा का अट्रैक्शन बढ़ता गया और हिंदी फिल्म दर्शकों के सर पर चढ़कर बोलने लगा। उनका नाम शीर्ष अभिनेत्री की सूचियों में सबसे ऊपर आ गया। लगभग 30 साल तक हेमा मालिनी के अभिनय और आकर्षण का जादू सभी बाकी अभिनेत्रियों पर हावी रहा। आइए सुने उनकी फिल्म का गीत।

हिमा जी ने लगभग 150 फिल्मों में काम किया। उनकी कुछ प्रमुख फिल्में हैं सीता और गीता, प्रेमनगर, अमीर गरीब, शोले, महबूबा, चरस, ड्रीम गर्ल, किनारा वगैरह वगैरह। पेश है उनकी फिल्म का एक खूबसूरत गीत।

हेमा मालिनी 1999 में राजनीति में उतर गईं, जब उन्होंने पहली बार भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार शुरू किया। वो अब भी राजनीति में सक्रिय हैं। उनकी फिल्म का एक और की

0: दोस्तों हेमा को वर्ष 1973 में सीता और गीता के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके अलावा 1999 में उन्हें फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। हिंदी सिनेमा और कला जगत में योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार ने वर्ष 2000 में पद्मश्री की प्रतिष्ठित उपाधि भी दी। पेश खिदमत है उनकी फिल्म का ये गीत।
1: हंसो मत, बोलो।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों आज के कलाकार हैं फिल्म इंडस्ट्री, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही मशहूर कलाकार धर्मेंद्र। जी हां, धर्मेंद्र का पूरा नाम है धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल। तो आइए दोस्तों, उन्हीं के ऊपर फिल्माया हुआ ये गीत सुनते हैं।

दोस्तों, धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल जी का जन्म 8 दिसंबर 1935 को हुआ था। कहना ना होगा दोस्तों, आप भी मानेंगे कि बॉलीवुड में धर्मेंद्र सबसे ज्यादा हैंडसम इंडियन एक्टर माने गए। तो लीजिए उन्हीं की फिल्म का एक गीत हो जाए।

आपको पता ही होगा दोस्तों, धर्मेंद्र को बॉलीवुड का ही मैन कहा जाता है। तो लीजिए, पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का यह गीत।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। दोस्तों आपको पता होगा, फिर भी बताते चलते हैं कि धर्मेंद्र को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया, जो कि सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर है भारत में। तो लीजिए पेशे खिदमत है उन्हीं के ऊपर फिल्माया हुआ ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा। भैया हमेशा स्पेशल बनकर रहा करो, आम बन जाओगे ना तो अचार बना दिए जाओगे।

आपको एक मजेदार बात बताते हैं दोस्तों, धर्मेंद्र के बेटे बॉबी देओल के बेटे का नाम भी धर्म रखा गया उन्हीं के नाम पर। तो आइए सुनते हैं धर्मेंद्र जी की फिल्म का एक और गीत।

दोस्तों धर्मेंद्र 1998 से लेकर आज तक कैरेक्टर रोल्स करते आए हैं। उन्होंने नए कलाकारों को हमेशा प्रोत्साहित किया, जगह दी और उनका आशीर्वाद सभी नए एक्टर्स पर हमेशा बना रहता है। तो लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

आपको मालूम ही होगा दोस्तों, धर्मेंद्र मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और जगह है बीकानेर राजस्थान की। लीजिए पेशे खिदमत है उन्हीं की एक फिल्म का ये गीत।

उम्र में वो जान को लगाती ना, प्रेम का रोग पुराना पुराना पुराना, है जत यमला पगला दीवाना।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज की।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम जहां शब्दों में एहसास है और हर शेर में दिल की बात। आज की इस महफिल में पेश है कुछ खूबसूरत गजलें जो आपके दिल को छू जाएंगी। आपके साथ हैं आपकी ही मेजबान, आपकी ही रेडियो दोस्त आरती जी। तो आइए शुरू करते हैं गजलों और सुरों का ये प्यारा सफर।
1: शिकायत नहीं ऐ दोस्त, खुद से खफा हूँ मैं। तुझसे शिकायत नहीं ऐ दोस्त, खुद से खफा हूँ मैं। बिछड़ते हैं लोग अक्सर जहाँ से, वो रास्ता हूँ मैं। नमस्कार, आदाब और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का 90.8 FM की लहरों पर। मैं हूँ SN रेडियो और रेडियो टांडिया भील पर आपकी रेडियो दोस्त आरती रॉय, और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम अल्फाज से एहसास तक। दोस्तों, आज की महफिल बेहद नायाब है। अमूमन हम सोचते हैं कि जो लोग हिसाब किताब, नंबर्स और इकोनॉमिक यानी अर्थशास्त्र की दुनिया में रहते हैं वो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, शेर व शायरी तो उनको छू कर भी ना गुजरी होगी कभी। उनकी जिंदगी बड़ी खुश और रुखी होती होगी। लेकिन आज हमारी मेहमान एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने इकोनॉमिक यानी मैशत की उस संजीदा दुनिया और अदब यानी शायरी की खूबसूरत दुनिया के बीच एक बहुत प्यारा सा पुल बनाया है। जी हाँ, आज हमारे साथ इस महफिल की जीनत बनने जा रही हैं प्रोफेसर डॉक्टर सुमन लूथरा जी। सुमन जी अंबाला सिटी के SA जैन कॉलेज में इकोनॉमिक्स की हेड और प्रोफेसर रही हैं, लेकिन उनकी असली पहचान उनके अंदर छुपा हुआ एक बहुत ही हसास संवेदनशील फनकार है। वो एक बेहतरीन पेंटर भी हैं, सिंगर भी हैं, जो वोकल म्यूजिक में गोल्ड मेडलिस्ट भी रही हैं, और सोने पे सुहागा तो ये है दोस्तों कि सुमन जी एक बेहद उम्दा शायरा और लेखिका हैं। अभी जो मैंने प्रोग्राम के शुरुआत में चंद सत्रें पढ़ी ये उन्हीं की लिखी हुई थी। तो उनका पहला शायरी मजमुआ यानी कविता संग्रह धूप का चांद उनके इसी जज्बात का एक सूरत सबूत है। तो चलिए अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक यानी मैशत के चश्मे से जिंदगी के जज्बातों को देखने वाली बेहद खास हस्ती से बात करते हैं और इस सुरीले सफर की शुरुआत करते हैं। सुमन जी, अल्फाज से एहसास तक के मंच पर आपका बहुत बहुत खैर मकदम है, स्वागत है।
2: बहुत शुक्रिया आरती जी। सबसे पहले मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ आपकी और SN रेडियो की मुझे ये मौका देने के लिए। अल्फाज से एहसास तक बहुत ही खूबसूरत नाम है आपके इस प्रोग्राम का। सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: तो सुमन जी आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेहद आराम से बैठिए, पानी पीजिए और इसे अपनी ही महफिल जानिए, और यहाँ कोई बेगाना नहीं है, यहाँ सब अपने ही दोस्त हैं और अब तो ये आपके भी हैं। तो अब हम चाहेंगे कि बातचीत की शुरुआत आप अपनी जुबानी करें। आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी तालीम कहाँ से हुई, और इस पूरे सफर में आपके अंदर ये शायरी का शौक कब और कैसे जागा, और इस शुरुआती दौर की याद से जुड़ा अपना कोई खूबसूरत सा शेर या चंद सत्रें हमारे दोस्तों को जरूर सुनाए।
2: जी आरती जी, मेरा जन्म आरती जी चंडीगढ़ में हुआ। मेरी पेरेंट्स पंजाब से सरोकार रखते थे और फादर अपनी नौकरी के चलते हरियाणा में रहे। तो मेरी सारी शिक्षा हरियाणा से ही है जी, स्कूल है, कॉलेज है, ये पानीपत में हुआ और उसके बाद मास्टर्स और मेरी जो डॉक्टरेट है वो सब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से की है मैंने।
1: ओके
2: जी, आपने पूछा कि ये शायरी का जो सफर है किस तरह से शुरू हुआ, तो ऐसा कुछ याद तो नहीं कि कब शुरू हुआ होगा पर क्यों शुरू हुआ होगा। वो शायद ऐसा था कि जब स्कूल में थी तो हमारे घर नंदन है, चंदा मामा, चौपक, चाचा चौधरी, मोटू पतलू, अमर चित्र कथा, तेनाली राम, बीरबल के किस्से कहानियाँ, है ना, ये सब हमारी वो किताबें हैं जिनके नाम सुनते ही आप भी शायद अपने बचपन में लौट गए।
1: मुझे तो सब याद आ गया।
2: तो, जी जी, ये सब और साथ ही उस समय ना नई नई रशियन बाल साहित्य की मैगजीन्स आनी शुरू हुई थी भारत में,
1: ये
2: सब हमारे घर हुआ करती थी।
1: ओके,
2: तो उन्हें खूब पढ़ा।
1: ओके,
2: बड़ा मजा आता था। जी जी, और जब कॉलेज में एडमिशन हुआ तो एज अ स्टूडेंट मैं अलग अलग कॉम्पिटिशन में, चाहे वो यूथ फेस्टिवल्स हों या लिटरेरी इवेंट्स हों, उनमें मैं पार्टिसिपेट हमेशा करती थी और उसमें कविता पाठ के लिए भी जाती थी।
1: वेरी नाइस।
2: वो जी उस टाइम ना ज्यादातर मैं दूसरों की लिखी कविताएं सुनाया करती थी।
1: अच्छा,
2: तो अब शायद ये कह सकते हैं कि ये एक बीज जैसा था, मन की मिट्टी शायद प्रारब्ध से ही नम थी और संवेदनाओं की खाद कुदरत ने भरपूर बख्शी थी।
1: बहुत खूब।
2: तो कविताओं की कोंपले फूट पड़ी।
1: अरे वाह।
2: तो ऐसा कुछ रहा। तो निश्चय बहुत सालों से
1: कविता जैसे एक फूल की तरह हो और वो खिल उठी और फूट पड़ी। वेरी नाइस।
2: जी जी, तो बहुत सालों से लिख रही थी स्टूडेंट लाइफ से, पर सब इधर उधर बिखरा पड़ा था। और लाइफ में बहुत बिजी है, जॉब जितना भी आपाधापी थी जीवन की, इसमें वक्त ही नहीं मिला इसको समेटी। तभी पिछले साल कुछ दोस्तों के कहने पर अपना लिखा मैंने समेटा और मेरा एक पहला कविता संग्रह आया, धूप का चांद। तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं उसी से। मैं आपको अपनी दो क्षणिकाएं सुनाती हूँ। दो दो
1: क्षणिकाएं मतलब दो लाइन की कविता,
2: ये दो तीन लाइनों की छोटी छोटी कविताएं होती है जिनको हम क्षणिकाएं कह देते हैं, क्योंकि विद इन मोमेंट से खत्म हो जाती है, क्षण भर में खत्म हो जाती है।
1: या क्षणिका यानी क्षण भर में खत्म हो जाने वाली,
2: क्षण भर में छोटी छोटी रचनाएं। जी जी, पर ये जितनी छोटी है ना जी, ये एक तरह से मतलब गागर में सागर जैसी होती है कि एक लाइन एक पूरा उम्र का सफर हो सकती है।
1: वाह,
2: ऐसा है,
1: क्या बात है। तो सुनाइए
2: जी। तो जो मैंने कभी अपनी किताब लिखनी शुरू की तो उसके साथ क्या एहसास था, उस एहसास को बयां करती हूँ। कुछ पुराने ख्वाब मोड़े हैं, कुछ पुराने ख्वाब मोड़े हैं, मैंने जंजीर में कुछ कुंडे जोड़े हैं।
1: ओके,
2: कुछ पुराने ख्वाब मोड़े हैं, मैंने जंजीर में कुछ कुंडे जोड़े हैं। तो यहाँ मुझे निदा फाजली साहब भी याद आ रहे हैं कि उन्होंने लिखा था कि जीवन खेल तमाशा, जंजीरों की लंबाई का सारा पैर दबाता। तो मैंने थोड़ी सी अपनी जंजीर लंबी की है।
1: बहुत बहुत बहुत उम्दा।
2: और ऐसी एक छोटी सी क्षणिका और मैं आपके साथ साझा करती अपने सब सुनने वालों के साथ।
1: बिल्कुल,
2: वही फैलना चाहती थी मैं, वही फैलना चाहती थी मैं, सिमटने को भी मेरे यहाँ जगह न मिली।
1: बहुत बहुत बहुत सुना आपने दोस्तों। सुमन जी का शुरुआती दौर, उनकी तालीम और उनका बचपन से ही कविता के लिए झुकाव, सब कुछ बहुत नेचुरल और साफ था। उनको तो शायरा बनना ही था, वो शायरा बनने वाली ही थी। लेकिन बन गई आप इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर। तो इसी के चलते हमें ये बताइए सुमन जी, कि जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आप कॉलेज में स्टूडेंट को इकोनॉमिक्स जैसा सीरियस का सब्जेक्ट पढ़ाती थी, मुझे याद है कॉलेज डेज में मुझे तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट सुनकर ही ऐसा लगता था सी से पढ़ने वाले सब रोबोट होते हैं, भला इकोनॉमिक्स भी कोई पढ़ने की चीज है? सुपर ब्रेनी और बेहद जहीन लोग होते हैं, और उन लड़कियों का ना भी अलग सा था। तो जैसा कि मैं कह रही थी, इकोनॉमिक्स तो सब आंकड़ों का यानी नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स का खेल है, और आप भी प्रोफेसर और उस संगीता माहौल में हर वक्त रहते हुए

0: कैसे हुई और कैसे बची रही। मुद्दा तो ये है, क्या कभी कॉलेज के गलियारों में या क्लासरूम में भी दिल ही दिल में कोई शेर गुनगुनाया? तो हमें भी बताइए ना कुछ ऐसी चंद लाइनें, जब आप मन ही मन मुस्कुराती भी रही होंगी।
1: जी, तो सबसे पहले तो मेरे मन में ख्याल आ रहा है कि काश आप इकोनॉमिक्स से पढ़े होते जो डर है इकोनॉमिक्स का वो मैं आपका निकाल पाती। तो जी, आपने पूछा ना कि ये कैसे बची रही एक संजीदा माहौल मेरी अंदर की शायरा, तो आरती जी ये कुछ ऐसा है कि शायरा कैसे बची रही इस संजीदा माहौल में, ये नहीं है प्रश्न, माजरा ये है बल्कि कि शायरा होने की वजह से मैं बची रही। तो जी, आपने कहा ना कि इकोनॉमिक्स एक ड्राई सब्जेक्ट है, तो और कविता कहानी शेरो शायरी से दूर, पर मैं संवेदनाओं के धरातल पर जीती हूँ, तो मैंने इकोनॉमिक्स को भी ना बड़ा संवेदनशीलता से हैंडल किया और हमेशा कोशिश की कि इसे पढ़ाते हुए और मैं जब या पढ़ते हुए स्टूडेंट्स उबे ना, वो बोर ना हो। वैसे भी देखिए ना, मैं आपको बताती हूँ कि इकोनॉमिक्स है क्या, धन का होना या ना होना, बस इन दोनों के बीच में झूलता है सारा अर्थशास्त्र। और जी, और साहित्य में जितने भी रंग हैं, प्रेम भक्ति विरह, वो सब सुख और दुख के पालने में झूलते हैं, ठीक है ना जी। अब ये जो सारा सुख दुख है ये धन के होने या ना होने से जुड़ता है,
0: ये भी
1: ठीक
0: बात
1: है।
0: सही है।
1: तो मैं आपको देखो इकोनॉमिक्स से शायरी और शायरी से इकोनॉमिक्स से लाती हूँ। अब जी, लेकिन अब पैसा हो तो प्रेमी अपनी प्रेमसी को 9 लखा देने का गीत लिखता है,
0: अरे वाह सुमन जी,
1: ठीक है।
0: क्या बात है।
1: ठीक है, और मुफलिस ने कितनों के दिल और घर तोड़ दिए और दर्द भरे नगमों को जन्म दे दिया,
0: तब तुलसी माला देता है क्या?
1: ठीक है जी। तो देखिए, बातों ही बातों में मैंने इकोनॉमिक्स को ड्राई से गीला कर दिया, थोड़ा भिगो दिया इसको मैंने।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब तो पब्लिक जरूर
1: जी
0: फूटेंगी कविता की, मुझे पूरा यकीन हो
1: जी
0: गया।
1: और जी, अब एक चीज और आपसे साझा करूँ कि मैं थोड़ी सी ना ऐसी चीजों में बाकी अलग सी हूँ, तो मैंने 52 की एज में भी पीछे मास कॉम में एमए भी किया है। मुझे था कि जर्नलिज्म में मास कम्युनिकेशन में बहुत क्रिएटिविटी होती है, मैं उसको पढ़ूं, तो आप देखिए कि इस उम्र में मैंने किया ये चीज।
0: ओके, क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको।
1: शुक्रिया बहुत। और अब मैं, आपने कहा था कि कुछ आपसे अपना साझा करूं, तो मैं अपनी जो
0: नहीं
1: इसमें
0: नहीं
1: मेरा
0: बहुत
1: कविता संग्रह
0: खूबसूरत
1: आया है।
0: है, मुझे उम्मीद है हमारे दोस्त भी इस चीज को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, तो
1: तो
0: आपके तो तासुरात बहुत
1: लीजिए,
0: खास हैं।
1: एक अर्थशास्त्र पढ़ाने वाले से एक छोटी सी रचना आपसे साझा करती हूँ अपने कविता संग्रह से।
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: देखिए जी,
0: इच्छा।
1: छू लेने भर से जिसके झटक देते हैं उंगलियां,
0: वाह।
1: छू लेने भर से जिसके झटक देते हैं उंगलियां, बिजलियों को ऐसी मैंने बाहों में भर लिया।
0: वाह,
1: शुक्रिया जी।
0: बहुत खूब।
1: अगला इसका देखिए, टूटा था तेरा अक्स, टूटा था तेरा अक्स जो दिन सरे बाजार, टूटा था तेरा अक्स जो दिन सरे बाजार, वो कांच सारा मैंने आंखों में भर लिया।
0: क्या बात है,
1: बहुत बहुत शुक्रिया जी।
0: बहुत सुंदर।
1: और आखिरी इसकी लाइनें मैं सुनाती हूँ आपको। ना था दूर तलक जब कोई साथी मजार का,
0: ना था दूर तलक कोई साथी
1: जब
0: होगा।
1: कोई साथी मजार का,
0: ओके।
1: ना था दूर तलक जब कोई साथी मजार का, खुदी को खुद अपने कांधे पे धर लिया, खुदी को खुद अपने कांधे
0: कांधे
1: पे धर
0: पे
1: लिया।
0: रख लिया। क्या बात है सुमन जी, आप मेरे
1: बहुत
0: सामने
1: शुक्रिया
0: होती मैं
1: जी,
0: आपके हाथ चूम लेती, आपने इतने खूबसूरत
1: बहुत
0: अल्फाज लिखे, बेहद
1: बहुत
0: बेहद खूबसूरत।
1: शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अब मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि अगर आप एक गजल मेरी पसंद की सुना दें जो करीब करीब इन्हीं एहसास के साथ जुड़ी हुई है, तो तो आज की इस रात में और चार चांद लग जाएंगे, तो ये मेरी पसंद की
0: चांद लगाएंगे आप कौन सी गजल जी लगाएंगे आप?
1: ये गजल है, एक अकेला इस शहर में रात है और दोपहर में।
0: अरे आपकी तरह आपकी चॉइस भी कितनी जबरदस्त है। तो दोस्तों आइए सुमन जी की पसंद पर इतना खूबसूरत ये नगमा सुनते हैं जो भूपेंद्र सिंह जी ने गाया है, एक अकेला इस शहर में रात में और दोपहर में। आप भी शौक फरमाए।

0: सुमन जी, आपसे जब मेरी बातचीत हुई थी तो आपने बताया था कि शायरी के साथ साथ संगीत से भी आपका बहुत गहरा रिश्ता रहा है और आपने बाकायदा संगीत की तालीम भी ली है। हमें उस सफर के बारे में कुछ बताइए कि सुरों की दुनिया में आपकी क्या कामयाबियां रही और सिंगर होने पर शायरी पर उसका कुछ असर होता है क्या? इस सुरमई एहसास को बयां करती आप अपनी कोई रचना भी हमारे साथ साझा कर सकती हैं?
1: जी आंटी जी, गाना गाना और सुनना ये मुझे बहुत छोटे होते से बहुत अच्छा लगता है।

0: पिक्चरें तब तो बहुत अच्छी आती थी, आपको याद होगा, उनका संगीत बहुत खूबसूरत होता था, क्लासिकल भी, सेमी क्लासिकल भी, सुगम संगीत, और गाने क्या खूबसूरत, उनकी लिरिक्स बहुत खूबसूरत हुआ करते थे, लिरिक्स से बहुत जोर होता था, आपको याद होगा पहले तो
1: बहुत।
0: तो बस मैं उनके गाने गुनगुनाया करती थी, और पता नहीं क्यों शुरू से ही थोड़े सैड सॉन्ग हमेशा अच्छे लगे
1: जी।
0: और इकोनॉमिक्स में भी जब मैं एमए कर रही थी यूनिवर्सिटी में, तो शाम के वक्त सर्टिफिकेट कोर्स का हमें तो हमें अवेलेबल था, तो मैंने वो किया, कभी कभी हफ्ते में एक दो क्लासेस लगाया करते थे, पर ऐसे फॉर्मल तो मैंने कहीं नहीं सीख पाई, क्योंकि जिंदगी बहुत ऐसी रही, बिजी रही। बाकी संगीत तो आप भी जानती हैं कि जीवन को कई रंग देता है,
1: बिल्कुल,
0: कब और कितना ये कहना बहुत मुश्किल है,
1: बिल्कुल,
0: कभी सुकून देता है, कभी उदास भी कर देता है। आजकल बारिश होती है तो ऐसे लगता है जैसे संगीत जब सुन रहे होते हैं, वो भी ना बारिश की तरह पड़ता है आपके पत्ते मन पे,
1: बिल्कुल।
0: तो संगीत के तो बहुत रंग है जी, तो मैं आपको दो लाइनें तो गुनगुना के सुनाऊंगी, क्योंकि बहुत शौक है मुझे गाने का, और फिर मैं आपके साथ अपनी कविता संग्रह से एक आपके साथ अपनी छोटी सी जो रचना है वो भी शेयर करूंगी,
1: बिल्कुल।
0: तो अगर इजाजत हो तो पहले मैं दो लाइनें आपको गा के सुना दूं, एक बहुत खूबसूरत गाना है ये,
1: हम आपकी आवाज सुनने को बेताब हैं, सुनाइए।
0: जिंदगी

0: तो जिंदगी से वही बस यही गुजारिश करती हूँ कि तेरे हर रंग को मैंने गले से लगाया है और कभी तुझे निराश नहीं किया, तो कुछ तो तेरा भी बनता है कि मुझे तो गले से लगा के रख,
1: बनता है कि तू भी हमें गले से तो लगा ले।
0: जी, जी, जी।
1: और आप आपकी कविता
0: ऐसी जी मैं कुछ लाइनें शेयर करती हूँ आपके साथ। ये भी एक छोटी सी पहले क्षणिका ही थी, फिर उसको मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ाया, एक बहुत छोटी सी रचना है। तेरी यादों से इस कद्र मोहब्बत है मुझे, तेरी यादों से इस कद्र मोहब्बत है मुझे कि तुझे भूलती जाती हूँ मैं।
1: वाह बहुत खूब, जरा फिर से बोलिए।
0: तेरी यादों से कद्र मोहब्बत है मुझे कि तुझे भूलती जाती हूँ मैं।
1: वाह
0: उनको मालूम न था जुनून ए बेहद मेरा, उनको मालूम न था जुनून ए बेहद मेरा कि हवाओं में गिरह लगाती हूँ मैं। गिरह होती थी गांठ,
1: आई नो,
0: कि हवाओं में गांठ लगाती हूँ। जी।

0: बड़ी वाली फैन होती है ना मेरे पर, मेरा मेरा वो होता है कि मैं फैन से कुछ ज्यादा एडवांस हूँ, तो मैं एसी वर्ड का यूज करती हूँ, तो मैं तो आपकी बड़ी वाली एसी बन गई हूँ।
1: जी बहुत शुक्रिया आपकी जी।
0: बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो अच्छा चलिए, अब आप हमें ये बताएं सोनम जी कि आपको जानने के बाद हमें ये तो पता चल गया कि आपका हाल ही में एक कविता संग्रह यानी आपका शायरी मजमुआ पब्लिश हुआ है जिसका नाम धूप का चांद। आपकी शायरी का मियार मजमुए के नाम से ही पता चल जाता है कि आपने किस तरीके का नाम रखा है। ये नाम आपने आप में ही बहुत गहरा और खूबसूरत तजा यानी विरोधाभास लिए हुए है। इस खास नाम के पीछे क्या सोच रही होगी आपकी, और ये कि जब ये किताब मुकम्मल होकर आपके हाथ में आई तो वो एहसास कैसा था? यकीनन मुनफरिद रहा होगा। हम चाहेंगे कि इस खास किताब में से आप कुछ चुनिंदा ख्यालात हमसे शेयर कीजिए और उस एहसास को बताइए जब किताब आपके हाथ में आई।
1: जी आंटी जी, तो सबसे पहले तो आपने मेरी किताब की कविता संग्रह के नाम की बात की है, धूप का चांद। तो इसके पीछे क्या वजह थी पहले तो वो आपको बताती हूँ। धूप और चांद ये दो अलग अलग विपरीत चीजें हैं।
0: बिल्कुल
1: धूप हम सब जानते हैं तपिश, वास्तविकता, रियलिटी और संघर्ष को दर्शाती।
0: यस।
1: दूसरी ओर चांद शीतलता, सुकून और कल्पना का प्रतीक है।
0: बिल्कुल
1: अब जिंदगी मान लीजिए धूप की तरह है, पर मेरी संवेदनाएं उसमें किसी शीतल चांद की तरह चमकती रहती है।
0: जी।
1: तो मेरी जो कविताएं हैं आरती, वो मुश्किल से मुश्किल समय में सुकून की तलाश देती है,
0: ओके।
1: और धूप का चांद दुखों की तपिश में भी उम्मीद की ठंडक की तरह है। तो
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: हम सब जानते हैं कि जीवन ना तो पूरी तरह काली रात है ना जी, तो ना ही केवल सबकी दुपहरी। इन
0: बिल्कुल
1: दोनों के बीच संघर्षों की धूप में झुलसते हुए हम सब सुकून के चांद की तलाश करते रहते हैं।
0: वाह वाकई
1: जी, अब कभी अगर आप लोगों को किसी भी कोई भी मेरे सुनने वालों को आपको मौका मिला, मेरा कविता संग्रह आप ये अमेजोन पे उपलब्ध है, अगर कभी पढ़ते हैं तो इन कविताओं के पन्ने जब आप पलटेंगे तो आप महसूस करेंगे कि जिस टाइम दुनिया बहुत शोर कर रही होती है और उम्मीदें हमारी दम तोड़ने लगती हैं, तब भी हमारे भीतर एक कोना जो हमारा अपना है वो बचा रहता है।
0: जी
1: धूप का चांद उसी कोने की आवाज है।
0: वाह क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर एहसास हैं आपके, बहुत सुंदर तासुरात हैं, मैं तो कायल हो गई आपकी।
1: बहुत शुक्रिया
0: बहुत ही खूबसूरत अंदाजे बयां है।
1: जी। और दूसरी चीज आपने पूछी ना कि जब ये कविता संग्रह छप के आया तो कैसा लगा, तो जैसा जब बच्चा होने पे नर्स आपकी गोद में आपके बच्चे को देती है, वो
0: जी
1: जो छूने का एहसास होता है ना माँ को, उस बच्चे के छू लेने भर से जो तरंगे आपके अंदर उत्पन्न होती है, तो जब ये किताब छपकर आई तो बस मैंने से पकड़ के हाथ से आंखें बंद करके बस छुआ, आई
0: वाह
1: जस्ट ट्राई टू फील इट, तो वो एहसास था अपने कविता संग्रह का।
0: शायर लोग बहुत हसास होते हैं, आप इसका बिल्कुल खूबसूरत उसका उदाहरण है हमारे सामने, बहुत खूबसूरत, बहुत
1: जी,
0: खूबसूरत।
1: और आपने कहा था कि इस किताब का नाम जो है अपने आप एक तजाद है, विरोधाभास लिए हुए है, तो उसी रंग में रंगी। मैंने पहले भी जो आपको रचनाएं अभी शुरू में सुनाई है वो सब उस तजाद को आप अगर ध्यान से दोबारा कोई सुने प्रोग्राम, वो सारी उसी रंग में रंगी है। तो मैं एक और रचना आपको उसी ऑक्सीमोरोन उसी तजाद में रंगी हुई सुनाती हूँ। तेरी तेरी तस्वीर का तिलस्म टूटता जाता है,
0: जी
1: तेरी तस्वीर का तिलस्म टूटता जाता है, आईना दिल का मेरे बिखरता जाता है।

0: करता है।
1: वेरी नाइस,
0: बहुत सुंदर।
2: कोई आवाज भी तूने नहीं दी मुझको,
1: कोई आवाज भी
2: कोई आवाज भी तूने नहीं दी मुझको, रास्ता फिर भी तेरी और मुड़ता जाता है।
1: वाह, बहुत
2: बहुत शुक्रिया जी,
1: बहुत खूबसूरत,
2: बहुत शुक्रिया। देखिए, इस बार कुछ अलग होगा क्या, इस बार कुछ अलग होगा क्या, फिर कोई एकलव्य प्रतिमा बनाता है, फिर कोई एकलव्य प्रतिमा बनाता है।
1: अरे वाह, क्या ही अंदाज है आपके लिखने का। इस बार कोई कुछ अलग होगा क्या, फिर कोई एकलव्य प्रतिमा बनाता है। बहुत
2: बहुत शुक्रिया,
1: बहुत खुश।
2: और आगे देखिए, ये आग मेरी खुद की है लगाई हुई, ये आग मेरी खुद की है लगाई हुई, घर कोई यूं भी अपना जलाता है, घर कोई यूं भी अपना
1: जलाता है। क्या बात है सुमन जी, क्या ही बात है आपकी शायरी की, बहुत खूबसूरत
2: जी। और आखिरी इसका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ।
1: हाँ जी, हाँ जी।
2: फिर ना होगा अब कभी किसी पर, फिर ना होगा अब कभी किसी पर, हाँ आखिरी ये यकीन टूटता जाता है, हाँ आखिरी ये यकीन टूटता जाता है।
1: वाह, बहुत खूबसूरत जी। मुझे आपकी ये जो धूप का चांद में जो आपने बोला ना, दिल का कोना जो होता है, वो बात बहुत बहुत दिल पे असर कर गई कि वाकई हम सब के अंदर एक कोना ऐसा होता है जहाँ घुस के हम थोड़ा सुकून हासिल करने की कोशिश करते हैं। और आपका पूरा जो एटीट्यूड है, जो आपका नजरिया है, वो कितना पॉजिटिव है कि इतनी मुश्किलों के बावजूद भी आपने उस पॉजिटिविटी को, उस रोशनी की लकीर का साथ नहीं छोड़ा, और आपने उसी को देखते देखते ही अपनी राह बना दी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर,
2: बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आरती जी। और आपकी ही बात को आगे बढ़ाते हुए, हमें पॉजिटिविटी में तो रहना ही है। तो देवी तो एक उसी एहसास को बयान करती है, गजल सुना दीजिए तो मजा आ जाए।
1: अरे वाह,
2: गजल है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो।
1: क्या बहुत बहुत आला दर्जे की पसंद है आपकी, और ये गजल बहुत लोगों को पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो आइए ज्यादा टाइम ना लगाते हुए दोस्तों, सुमन जी की पसंद पर सुनते हैं ये बहुत खूबसूरत कलाम जो फिल्म अर्थ से है। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। जगजीत सिंह जी की आवाज में आप भी शौक फरमाएं।

0: सुमन जी, अब आप ये बताइए कि जैसा आपने बताया कि लिखने और गाने के अलावा मंच यानी स्टेज से भी आपका बहुत मजबूत रिश्ता रहा है, चाहे वो एंकरिंग हो या परफॉर्मेंस हो, मेरे साथ हमारे सब दोस्त आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब कोई आर्टिस्ट स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस देता है तो वो तजुर्बा कैसा होता है लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म करने का? क्या स्टेज की वो एनर्जी आपको एक शायर के तौर पर निखारती है? स्टेज के उस जोश और अदब को बयां करता अपना कोई कलाम भी हमें सुनाइए।
1: जी जरूर आती हूँ। मंच पर जाना मेरे लिए हमेशा एक इबादत जैसा है।
0: जी
1: आई रियली लिव एंड लव दोज मोमेंट्स। वो एक शब्द हम सुनते ना, किक मिलना तो मुझे यस मुझे स्टेज पर जाने से, स्टेज एंकरिंग करने से एक ऐसी किक मिलती है, मैं अपने आप को किसी और ही दुनिया में महसूस करती हूँ। ये कोई और दुनिया है। और ये शौक जो है ना, ये मुझे शुरू से था, जब मैं कॉलेज में स्टूडेंट थी तब से कोई कॉलेज में फंक्शन होते थे, लिटरेरी इवेंट्स होती थी, तो टीचर्स को पता था कि एंकरिंग अच्छी करेगी, तो हर छोटे बड़े फंक्शन की मैं एंकरिंग, फेयरवेल पार्टीज भी, उनकी स्टेज भी, तब ये छोटे छोटे फंक्शन मैंने बहुत किए, पर हर एक में आ गया, इधर पार्टी और पार्टिसिपेट भी बहुत किया, एंकरिंग भी की और खुद कविता पाठ है या कुछ और छोटे छोटे स्क्रिप्ट हैं, नाटक हैं, तो पार्टिसिपेट भी बहुत किया स्टेज। फिर जब मैं एज टीचर मैंने ज्वाइन कर लिया अपने कॉलेज में, हम प्रोफेशन में आ गए, तो फिर उसमें भी क्या होता था कि हमें बच्चों के बहुत सारे कार्यक्रम कराने हैं, कॉलेज में भी बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, जानते हैं कि बाहर से टीम जा रही है, इवेंट्स हैं छोटे छोटे, कोई लिटरेरी इवेंट्स हैं, कोई स्पोर्ट्स मीट हैं, और फिर बड़े तरह कार्यक्रम जैसे यूथ फेस्टिवल्स आते हैं, लोकल नेशनल फेस्टिवल्स, ठीक है, ऐसी हमारे कॉलेज में जैसे मैथ की इंस्पेक्शन हुई, प्लैटिनम जुबली थी हमारे कॉलेज की, तो छोटी से लेकर बड़ी तक मैंने 35 साल मैंने कॉलेज में जॉब की है, और मैंने मतलब बहुत ज्यादा स्टेज कॉलेज की, हर बड़ी से बड़ी स्टेज मैंने की है और बहुत इंजॉय किया उसको, बहुत ज्यादा। तो ये तो बस मेरे लिए एक सचमुच एक इबादत जैसा है कि जैसे मंदिर में आप बैठ गए हो ज्योति जला के, तो स्टेज से मेरा बहुत लगाव रहा है।
0: बहुत सुंदर।
1: तो स्टेज पे जब मैं करती हूँ, तो नॉर्मली जब मैं स्टेज एंकरिंग करती हूँ तो मैं बीच बीच में अपनी लिखी कविताएं या कुछ गाने फिल्में हैं उनको बीच में हमेशा डालती रहती हूँ, जिससे कि ऑडियंस बोर ना, क्योंकि एंकरिंग एक बहुत डेलिकेट इश्यू है, आप जानते हैं, अगर आप ऑडियंस सुनने में मजा नहीं उसको आएगा तो बोर हो जाएंगे कि कोई इतना ज्यादा कैसे बोल रहा है। तो मैं बहुत कम बोलती हूँ लेकिन उनको अपने साथ जोड़ के रखती हूँ, ऐसी चीजें उनके साथ साझा करती हूँ ऑडियंस के साथ। तो मैं एक आपको अपनी लिखी हुई ही एक नज्म सुनाती हूँ, जो स्टेज पे भी मैंने एक दो जो मित्र हैं वो मुझे वो किए, मैं साझा उनके साथ कुछ
0: बिल्कुल इर्शाद।
1: तो ये मैं थोड़ा सा तरन्नुम में सुनाऊंगी आपको।
0: जी इर्शाद सुनाएंगे।
1: आज से मिले

0: देखते देखते उजड़ा हो गया। अब देखिए इसमें भी धूप का चांद वो तजाद आपको सारी इसमें नजर आएगा,
1: सही है।
0: मिलना है और मिलके भी मिलना नहीं है। आए उससे मिले और मिले भी नहीं, देखते

0: वो मेरा मुंतहा ही वो
1: वाह
0: चाहते चाहते वो खुदा हो गया।
1: बहुत खूब, बहुत खूब,
0: शुक्रिया जी।
1: बहुत खूब। मेरा
0: आगे
1: कातिल भी वो, मेरा मुंसिफ भी वो, चाहते चाहते वो खुदा हो गया। क्या बात है जी।
0: जी, बहुत शुक्रिया। और आगे देखिए, अब के आओगी जब कुछ न बोलूंगी मैं,
1: जी
0: अब के आओगी जब कुछ न बोलूंगी मैं, रोकते रोकते सब बयां हो गया।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
0: शुक्रिया। और आगे, मुझे को चाहोगे कब तुम भी मेरी तरह,

0: अरे वाह, क्या बात है। मुझको चाहोगे कब? तुम भी मेरी तरह मांगते मांगते मैं कर्रा हो गया। सुमन जी, क्या
1: जी बहुत
0: बात कर रहे हैं,
1: शुक्रिया,
0: बहुत सुंदर,
1: बहुत
0: बहुत ही सुंदर।
1: जी जी और
0: बताइए।
1: देखिए आगे आगे देखिए कि एक दूसरे से जो हम सोचते रहते हैं सारी उम्र, है ना, कि किन किन बातों में उलझे रहते हैं, तो इसको बयां करती हूँ।
0: जी
1: क्या
0: अच्छा।
1: जरूरी है और क्या जरूरी नहीं, क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं, गिनते गिनते यही सब फना हो गया।
0: मरहबा, मरहबा, क्या क्या क्या अल्फाज हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत।
1: और आखिरी इसका बन,

0: बहुत बाकमाल की बात सुनाता है। सुमन जी आपके, मेरा कातिल भी वो, मेरा मुंसिफ भी वो, चाहते चाहते वो मेरा खुदा हो गया। और फिर वो न समझे हमें, कहते कहते सुनते यूं ही हक अदा हो गया। आई मीन क्या बहुत खूबसूरत, तुम भी मेरी तरह।
1: बहुत शुक्रिया,
0: बहुत सुंदर, एक एक अल्फाज इतना सुंदर है कि मुझे अपनी किताब जरूर भेज दीजिएगा।
1: जी जरूर जरूर।
0: तो दोस्तों सुना आपने, हम सब में कभी ना कभी कहीं ना कहीं इन हालातों से गुजरते हैं, चाहे तस्लीम करें या नकारें या फिर करना ही ना चाहें।

0: ये बताइए कि हमारे दोस्तों को ये बताइए कि वो कौन सा शायर या फनकार है जिनसे आप मुतासिर होती हैं, जिन्हें पढ़ना या सुनना आपको सुकून देता है। मेरी तो ऑल टाइम फेवरेट अमृता प्रीतम है। और मुझे याद है कि जब मैं फोर्थ फिफ्थ में थी, तभी मेरे बड़े भाई एक नॉवल लेके आए थे उनका, जिसका नाम था जेब कतरे। तो जब तब मुझे इतनी कुछ समझ भी नहीं थी अदब की, लेकिन मैंने तब से अमृता प्रीतम को पढ़ना शुरू किया है और मेरे नन्हे से मन पे उसकी इतनी छाप बैठी कि मैं तब से पढ़ती ही आई हूँ। तो हमारे प्रोग्राम से विदा लेने से पहले आप अपनी पसंदीदा नज्म या शायरी की चंद सतरें भी सुना दीजिए, और अपनी पसंद का शायर और आप किससे मुतासिर होती हैं वो भी बता दीजिए।
1: जी जी आंटी जी, और एक बड़ा ही खूबसूरत इत्तेफाक हुआ। अभी आपने कहा ना कि आपकी पसंदीदा जो शायरा है वो अमृता प्रीतम है, तो
0: जी
1: मैं सोचती हूँ काश ये वीडियो प्रोग्राम होता तो मैं दिखाती आपको। इस वक्त मेरे टेबल पर अमृता जी की जो कविता संग्रह पड़ा है, मैं तुम्हें फिर मिलूंगी।
0: वाह
1: और ये कितना जबरदस्त कोइंसिडेंस है, क्योंकि मैं पंजाबी तो पढ़ नहीं सकती हूँ, तो मैं हिंदी में उनको पढ़ती हूँ अमृता जी को।
0: हाँ,
1: जी
0: बहुत सुंदर।
1: तो और
0: जी
1: बाकी जिन्हें मैंने पढ़ा, मैं जब स्टूडेंट थी तो उन दिनों मैंने जैसे बहुत सारी प्रतिनिधि कविताएं सुरेश्वर व्यास सक्सेना जी की पढ़ी। इसके अलावा और प्रतिनिधि कविताओं की जो हमें छोटी छोटी किताबें मिल जाया करती थी, और निर्मल वर्मा जी को पढ़ा, मुंशी प्रेमचंद जी, इन सबको तो हमने अपने सिलेबस में भी पढ़ा, इनकी कहानियां,
0: बिल्कुल
1: इनकी
0: बिल्कुल,
1: नॉवल्स,
0: वो तो कोर्स
1: रविंद्रनाथ
0: कोर्स।
1: टैगोर जी को। जी जी कोर्स में भी बहुत सारी चीजें, रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ा, धर्मवीर भारती जी को, सुमित्रा नंदन पंत, माँ श्वेता देवी, रामधारी सिंह दिनकर। अभी बल्कि बच्चों ने मुझे गिफ्ट किया रामधारी सिंह दिनकर जी की, तो
0: वाह,
1: रश्मि रथी और गुलजार साहब की कुछ किताबें। ये सब
0: ओके।
1: शुरू में तो शौकिया पढ़ा, पर फिर शादी, नौकरी, जिम्मेदारियां, तो कभी टाइम लगा नहीं कुछ भी पढ़ने का। अब रिटायर हो गई हूँ तो अब मैंने खुद भी बहुत सारी किताबें खरीदी हैं अपनी जिंदगी की, बहुत सारे शायर, बहुत सारी कहानियां, किस्से, नॉवेल,
0: ओके,
1: और बच्चों ने भी मुझे गिफ्ट की, मेरे बच्चों ने भी की, मम्मी भी शौक है। तो
0: बहुत खूब।
1: उम्मीद करती हूँ कि जिंदगी मेहरबान रहेगी और मौका देगी मुझे अपनी पसंद का कि पढ़ लिख सकूं। तभी मैंने जिंदगी को थोड़ा सा रिश्वत देने के लिए वो सुना भी दिया कि यह जिंदगी गले से
0: गले
1: लगा
0: लगा ले,
1: ले।
0: वाकई बहुत
1: जी
0: खूबसूरत।
1: जी
0: अब तू भी हमें गले लगा ले, सही बात है।
1: जी तो इस उम्मीद के साथ कि जिंदगी मौका देगी एक खूबसूरत और सफर शुरू करने का, क्योंकि एक नई शुरुआत है अब रिटायरमेंट के बाद। तो
0: तो बिल्कुल।
1: जाते जाते जाते अपनी कविता संग्रह से एक छोटी सी क्षणिका मैं आपके
0: जी,
1: साथ साझा करती
0: अब
1: हूँ।
0: श्रेणिका का ही टाइम बचा है।
1: हाँ जी जी बहुत दूर निकल आई थी, बहुत दूर निकल आई थी ढूंढते ढूंढते कि करीब कौन था।
0: वाह,
1: बहुत दूर निकल आई थी ढूंढते ढूंढते कि करीब कौन था। ये
0: जी।
1: छोटी सी क्षणिका मेरी किताब में है, और इस प्रोग्राम का खूबसूरत अंजाम हो आज का, तो मजा आ जाए, सोने पे सुहागा हो जाए।
0: जी
1: मेरी एक बहुत पसंदीदा, मेरे मन के बहुत करीब ये गजल है, मैं सुनती हूँ,
0: कौन
1: अगर
0: सी
1: आप वो बजा दें। जी
0: कौन सी?
1: ये है, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह,
0: वाह,
1: हमको इकरार, ये हम
0: यस
1: तेरे शहर में आए
0: यस
1: हैं।
0: यस यस यस, है ना मन जी? ये गुलाम अली साहब की गजल है,
1: जी।
0: बहुत सुंदर है। आपके अंदाजे बयां, आपकी पसंद, आपके जज्बात, और उनको इतनी खूबसूरती से लफ्जों का जामा पहनाया आपने। हर किसी से नहीं हो कि हर किसी में नहीं होता ये हुनर, और आपने कितनी शिद्दत से जैसे हर उन लम्हों को जिया है अपने तसव्वुर में, तभी तो ये भाव अपने आप अपने कागज पर उतार पाई हैं। ये जो बड़े बड़े आला दर्जे के कवियों और लेखकों की अभी जो आपने नाम गिनाए, स्कूल कॉलेज तक तो हम सब ने इनको पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, क्योंकि मेरे पास भी हिंदी इलेक्टिव सब्जेक्ट था। लेकिन जिंदगी उसके बाद कुछ अलग रुख पर चल पड़ी, कुछ अलग मोड़ पर चल पड़ी, तो सब कुछ छूटता गया। तो सुना आपने दोस्तों, क्या खूबसूरत पसंद है सुमन जी की। और आज इनसे बातचीत करके ऐसा लगा कि जैसे हमने जिंदगी को एक नए नजरिए से देखा है। इकोनॉमिक्स की, संगीत संगीत की और अदब की ये खूबसूरती हमेशा

0: आपके साथ रहे। हम यही दुआ करेंगे। हमारे प्रोग्राम में आने के लिए और अपने अनमोल अल्फाज और एहसास हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आपकी पसंद पर हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह।
1: गुलाम से पहले क्या गजल बजाएं? हाँ, तो मैं भी शुक्रिया आपका अदा कर दूं और इजाजत लूं आपसे और अपने सुनने वालों से इस उम्मीद के साथ कि फिर किसी मोड़ पर हम मिलेंगे जरूर।
0: शुक्रिया, बहुत बहुत बाकायदा मिलेंगे, मेरा आपसे वादा है कि अब मिलते ही रहेंगे।
1: तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
0: हम सब मिलेंगे सुमन जी से, बहुत बहुत बहुत। और आइए अब सुनते हैं गजल।

तो दोस्तों, इसी के साथ इस खूबसूरत गजल को सुनने के बाद, जो सुमन जी की पसंद की थी, अब वक्त हो चला है आज के इस सफर को यही थामने का। उम्मीद है डॉक्टर सुमन लूथरा जी के साथ ये मुलाकात आपके दिल को छू गई होगी। फिर हाजिर होंगी कुछ नए अल्फाज और कुछ अनकहे एहसासों के साथ। तब तक के लिए अपनी रेडियो दोस्त आरती रॉय को दीजिए इजाजत, और आप सुनते रहिए अपना प्यारा रेडियो स्टेशन 90.8 FM पर SN रेडियो और रेडियो टांटिया भी। अपना और अपने चाहने वालों का खूब ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा। शब खैर, शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे।

0: दोस्तों, आपकी मेजबान आरती जी के साथ आज की हमारी गजलों भरी महफिल बस यहीं खत्म होती है। उम्मीद है ये गजलें, ये अल्फाज आपके दिल को पसंद आए होंगे। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आरती जी फिर लौटेंगी नई गजलों और नई भावनाओं के साथ। नमस्कार।
1: आप जिनके करीब होते
2: से आरजे राकेश
3: अने हूँ से आरजे कमता डामोर
2: तमु हामली रासे कार्यक्रम खेती वाड़ी आपड़ा झाबवाना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआनी आवाज पर। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है तमारो सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआनी आवाज पर। हूँ से आरजे राकेश अने रोजनी जेम तमारी वस मा आज फेर कार्यक्रम खेतीवाड़ी लीने हाजिर थायो से। अने किसान भाइयों, हूँ रोज तमारी वस मा खेतीवाड़ी देखा जोड़ायेला मुद्दा, खेतीवाड़ी नी समस्याओं अने तिना समाधान नी वातियों लीने रोज इना समय पर हाजिर थातो रहूं से। तो किसान भाइयों, आज ना खेतीवाड़ी कार्यक्रम मा आपु वातियों हमलवाना से एकीकृत खेती नी वातियों बड़ी वातियों आपुन वताड़े कृषि था जोड़ायेला विशेषज्ञ अने अनुभवी लोग अने हाथे हाथ एवा किसान भाई त्या ये खेती करीने घणो असल अने मोटो मुनाफो कमाई रहा से। तो सालो किसान भाइयों, आज ना कार्यक्रम नी शुरुआत करी अने हां मळी एकीकृत खेती नी तकनीकी वातियों।
4: हमारा देश प्रगति की राह पर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसमें बहुत बड़ा योगदान है कृषि के क्षेत्र का, वो भी खास तौर पर हमारे उन किसानों का जो कि प्रगतिशील किसान है और नवाचार नई तकनीक को अपनाकर अपनी जिंदगी संवार रहे हैं, साथ ही अन्य किसानों के लिए भी नए नए अवसर पैदा कर रहे हैं। ये किसान कृषि स्टार्टअप, पशुपालन और खेती से जुड़े हुए किसान है, इसीलिए हमारी कोशिश होती है कि देश के कोने कोने में उभरती हुई प्रतिभाओं की कहानियां हम आप तक पहुंचाएं। आज के हमारे सफल किसान हैं प्रमोद दीक्षित। प्रमोद दीक्षित कई वर्षों से अपने खेतों में प्राकृतिक तरीके से खेती करते आ रहे हैं। इसके अलावा वो मधुमक्खी पालन भी करते हैं, जिससे उन्हें अतिरिक्त लाभ होता है। आज के समय में उन्हें कई गुना लाभ हो रहा है। आइए जानते हैं प्रमोद दीक्षित की कामयाबी की कहानी के बारे में।
5: उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध की निर्वाण स्थली के रूप में जाना जाता है, लेकिन यहाँ का इलाका काला नमक चावल की खेती के लिए भी मशहूर है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से के 11 जिलों में काला नमक चावल की खेती की जाती है। सबसे ज्यादा काला नमक धान की खेती बस्ती, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, बलरामपुर, गोरखपुर आदि जिलों में की जाती है। यहाँ के किसान भी काला नमक धान की खेती के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ के किसान अपनी सेहत के प्रति जागरूक हैं। इसी जागरूकता की वजह से किसान खेतों में रासायनिक उर्वरकों की जगह जैविक उर्वरकों का प्रयोग कर जैविक उत्पादों को उगाना बेहतर मानते हैं। जैविक और प्राकृतिक उत्पाद मानव स्वास्थ्य को बेहतर रखने के अलावा खेत की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने में मददगार होते हैं।
4: बहुत सारे अन्य किसानों की तरह प्रमोद दीक्षित भी पहले अपने खेतों में रसायनों का इस्तेमाल करते थे। लंबे समय से रसायनों के अंधाधुंध इस्तेमाल से उनके खेत की मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बहुत कम हो गई थी और ऐसे में उन्हें नुकसान होना शुरू हो गया था। तब उन्होंने जाकर प्राकृतिक खेती को गले लगाया। जी हाँ, वो समझ चुके हैं कि प्राकृतिक खेती ही समय की मांग है और पूरी तरह से उन्होंने रसायनों से तौबा कर लिया। आज के समय में वो देखते हैं कि न सिर्फ मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बेहतर हुई है बल्कि उन्हें अच्छा फसल उत्पादन भी अपने खेतों से प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं इसके बारे में और विस्तार से।
5: भारत सरकार में वैज्ञानिक पद पर काम कर चुके प्रमोद के पास करीब 10 एकड़ जमीन है, जिस पर उनके पिताजी खेती करते थे। प्रमोद रिटायर होने के बाद गांव वापस आए तो उन्होंने देखा कि पिताजी सहित क्षेत्र के अधिकांश किसान खेत में रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे खेत को नुकसान हो रहा है, उत्पादकता कम हो रही है। खेत की दशा सुधारने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए उन्होंने प्राकृतिक खेती को अपनाया, जिससे उनके खेत की उत्पादकता और आमदनी दोगुना तिगुना बढ़ी। इस बारे में प्रमोद जी कहते हैं,
6: मेरे पास करीब करीब 3-4 गांव में मिला के 10 एकड़ जमीन है, तो उसकी खेती मैं करता था। और बेसिकली हमारे पिताजी करते थे, हम तो बाहर में थे, तो उसमें रासायनिक खाद इत्यादि बहुत डालते थे लोग। और जब मैं रिटायर्ड हो गया तो देखा गांव में सारे लोग डाल रहे हैं इसको, इससे खेत नुकसान हो रहा था, खेत की उत्पादकता कम हो रही थी, केंचुआ नीचे के मर रहे थे। तो मैं सोचा कि क्यों ना खेती को ठीक से किया जाए, वैज्ञानिक तरीके से किया जाए। तो 37 साल का जो अनुभव था कई प्रदेशों का, कई देशों का, उसको संकलित करते हुए मैं इस गांव में, चूंकि अब मेरा अपना गांव था, तो यही सोचा कि यहां से कुछ किया जाए ऐसा कि लोग उसको देखें तो उनको फायदा मिले। तो सबसे पहला कदम मैंने कहा किया कि ऑर्गेनिक खाद बनाया, ऑर्गेनिक खाद केचुआ खाद का बनाया। मेरे बगल में 20 गायें थी, उनके गोबर को लेके और केचुआ में पंतनगर विश्वविद्यालय से लाया और उसको डाला, खाद बना। उस खाद का प्रयोग मैं अपने सारे खेतों में किया, उत्पादन मेरा ठीक हो गया और मेरा जो ऑर्गेनिक कार्बन है खेत का बढ़ गया। और नतीजा ये हुआ कि मैं इस समय 1 कट्ठे में 1 क्विंटल धान पैदा कर रहा हूँ, गन्ना पैदा हो रहा है और हमको 4-5 साल के अंदर में 5-6 लाख रुपया अतिरिक्त मिल गया, जो कि हमको पहले 1-2 लाख मिलता था। तो हमारी आमदनी दोगुनी हो गई और किसी किसी उत्पाद में मेरी आमदनी 4-5-6 गुनी हो गई। और मैं जो है सारा इसको वैश्विक पटल पर भी बेचता हूँ, जो मेरे सारे उत्पाद हैं 24 उत्पाद में बेचता हूँ ऑनलाइन, और वैश्विक पटल पर अमेजन के थ्रू जाता है। तो इससे क्या हुआ कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई, मेरा उत्पादन जो है कम खेत होते हुए भी डबल हो गया, डबल से ट्रिपल हो गया। और कम खेत होने के बावजूद भी मैं, जिसके पास 25 एकड़ जमीन है, 30 एकड़, उससे ज्यादा में आमदनी हमको हो रही है। मेरा स्वास्थ्य ठीक है, मेरे परिवार का स्वास्थ्य ठीक है, मेरे खेत का जो मैं जांच कराया था उसकी उर्वरता बढ़िया है, ऑर्गेनिक कार्बन बहुत बढ़िया है। और मधुमक्खी पालन, केचुआ पालन, खेत और पत्ती का खाद और तमाम तरह से करी का पत्ता, सहजन का पत्ता, नीम का पत्ता, और मैंने एक दवा बनाई है संपूर्णा, उससे जो है उत्पादन भी बढ़ता है और बीमारी भी कम होती है। तो कुल मिला के मैं इस ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती से काफी संतुष्ट हूँ।
7: जैविक या प्राकृतिक खेती एक ऐसी पद्धति है जिसमें प्रकृति से मिली चीजों का भरपूर उपयोग किया जाता है। खेत में रासायनिक उर्वरकों, रासायनिक कीटनाशकों और रासायनिक खरपतवार नाशकों की बजाय गोवंश के गोबर और मूत्र के अलावा प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग कर खेत और फसल दोनों को समृद्ध बनाया जाता है। खेत में जैविक खाद, हरी खाद, केचुआ खाद, जीवाणुओं के टीके और कीट प्रबंधन में गोबर और गोमूत्र का प्रयोग किया जाता है। मिश्रित खेती कर खेत की उर्वरा शक्ति को सुधारने का प्रयास किया जाता है। जैविक खेती से भूमि की उर्वरा शक्ति और जल धारण क्षमता में बढ़ोतरी होती है और पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता है। जैविक खादों के प्रयोग से कृषि लागत में कमी आती है और उत्पाद की गुणवत्ता बेहतर होती है। जैविक पद्धति से उगाई जाने वाली फसलों और सब्जियों का मानव जीवन पर कोई प्रतिकूल असर भी नहीं पड़ता है। खेत में प्राकृतिक खेती के फायदे को जान कुशीनगर के सरगरिया गांव के किसान प्रमोद दीक्षित प्राकृतिक खेती ही कर रहे हैं। इसके लिए वो प्राकृतिक संसाधनों और गोवंश के गोबर और गोमूत्र का उपयोग जैविक और बर्मी कंपोस्ट बनाने में करते हैं। गोबर की खाद और प्राकृतिक कीटनाशक बनाने के लिए प्रमोद जी ने गाय भी पाल रखी है। गोमूत्र का उपयोग वो जीवामृत बनाने में करते हैं। प्राकृतिक रूप से मिश्रित खेती करने के फायदे ही फायदे हैं। कुशीनगर और आसपास के जिलों में काला नमक धान यानी बुद्धा राइस की खेती की जाती थी, लेकिन नुकसान के चलते किसान इसकी खेती बंद कर चुके थे। इसे देख प्रमोद जी ने काला नमक धान की पैदावार बढ़ाने का फैसला किया। प्रमोद जी को काला नमक धान उगाने के दौरान डर का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और काला नमक धान उगाने में सफल रहे।
4: इसी के साथ ही सफल किसान में यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सफल किसान में हम आपको बताएंगे कि कैसे प्रमोद जी को मधुमक्खी पालन से फायदा हो रहा है, जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।

0: ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। आज सफल किसान में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से संबंध रखने वाले प्रमोद दीक्षित की। जी हां, प्रमोद जी रासायनिक खेती को छोड़कर अब पूरी तरह से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इसके साथ साथ वो अपने खेतों में मधुमक्खी पालन भी करते हैं, जिससे उन्हें कई तरह के लाभ होते हैं। एक तो ये कि मुख्य फसल में परागण बढ़ता है और दूसरा मधुमक्खी पालन से उन्हें अतिरिक्त आय भी होती है। आइए जानते हैं कि कैसे फॉर्मूला उनके लिए लाभ लेकर आया है।
1: प्राकृतिक खेती करने वाले प्रमोद जी के पास 10 एकड़ जमीन है, जिसमें वो तिलहन खाद्यान्न फसलों के अलावा शहद का भी उत्पादन करते हैं। उनके खेत में लगी सरसों और गेहूं की फसल उनकी सूझबूझ की गवाही देता है। सरसों के खेत के पास प्रमोद जी वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी का पालन कर अपनी आमदनी और स्वास्थ्य दोनों सुधार रहे हैं। वर्कर मधुमक्खियों के परागण के चलते फसल और शहद उत्पादन में भी बढ़ोतरी हो रही है। इस बारे में प्रमोद जी कहते हैं,
2: ये मधुमक्खी उत्पादन के क्रम में मैं यहाँ पर हूँ इस समय अपने खेत में, और यहाँ सरसों का खेत लगा हुआ है। तो सरसों का जो मधु होता है सबसे बढ़िया होता है, तो इसमें आवश्यकता होती है कि खेत के पास होना चाहिए और गांव से बाहर होना चाहिए, तो उसको सोचते हुए इसको बाहर में लगाया गया है और खेत के पास है। तो इसमें मधुमक्खियाँ उड़ती हैं, इनके जो वर्कर होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, ये उड़ती हैं और खेत में जाती हैं, और दिन भर वो सरसों जितना है 3 किलोमीटर के रेंज में सरसों के पराग को, नेक्टर को और रस को और पालन को लाती हैं। लाने के बाद जो है इसमें अंदर, तो ये सबसे, ये जो नीचे वाला बक्सा, दो भाग हैं इसके, ये वैज्ञानिक तरीके से हमने बॉक्स तैयार किया है, यही तरीका होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि नीचे वाला ब्रूड बॉक्स कहलाता है, जिसमें मधुमक्खी रहती है, रानी रहती है, उसके सिपाही रहते हैं, नर मादा रहते हैं, नर भी रहता है। और ऊपर में लगाया गया है एक थर्मोकॉल का बॉक्स, तो उसमें जो है केवल मधुमक्खियां शहद बनाती हैं। तो इससे फायदा क्या होता है कि जब हम शहद लेना होता है तो हम नीचे डिस्टर्ब नहीं करते हैं, क्योंकि जो नीचे अगर डिस्टर्ब कर देंगे तो ये मधुमक्खियां समाप्त हो जाएंगी। तो पहले यहाँ किसान जो है मैं देखता था, वही नीचे वाला करते थे, ऊपर वाला नहीं जानते थे। तो मैं इसको वैज्ञानिक विधि से लाया कि इसको बोलते हैं सुपर बॉक्स। तो ये सुपर बॉक्स जो है, हनी बॉक्स, ये दोनों कहलाता है। अब इसको हम निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले ये दबा देते हैं ताकि कोई, ये उसके ऊपर एक ये बॉक्स है, एक लेयर ये निकालो, उसके बाद ये थर्मोकॉल का कवर है, ये बोरा इसे रखते हैं कि शाम को रात में ठंडा ज्यादा पड़ता है तो 2-3 बोरा रखते हैं। अब देखिए मैं इसको खोल दिया, तो ये जो मधुमक्खियां ये बना रही हैं, इसमें केवल शहद बना रही हैं, और नीचे बहुत कम से कम 15,000-20,000 मधुमक्खियां नीचे में हैं, वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा उनको, जो एकदम पक जाती हैं वो ऊपर आती हैं। और ये अपना अब ये तैयार है, अब इसको हमको करना क्या है कि ब्रश से झाड़ देना है इसी में, और इसको निकाल लेना है। निकालने के बाद डब्बे में करके वो अंदर में जो है हमारा मधुमक्खी रस निकालने वाली मशीन है, वहां ले जाएंगे, और एक में से कम 4 बोतल भर जाएगा, 1 किलो आराम से, 2-2 किलो भी भर जाएगा। तो इस तरह से अगर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो एक बार में निकालेंगे तो एक डिब्बे से 15 किलो निकल जाएगा।
1: खेतों में लगी फसल के लिए प्रमोद जी अपने द्वारा बनाए गए जैविक कंपोस्ट खाद का ही उपयोग करते हैं, जिससे फसल बेहतर हो। प्राकृतिक रूप से काला नमक धान की खेती करने, मधुमक्खी पालन करने और किसानों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए प्रमोद जी स्वयं बताते हैं,
2: मधुमक्खी पालन, केचुआ पालन, पत्ती खाद उत्पादन, काला नमक धान उत्पादन, करीब 24-25 उत्पाद हम जो है पैदा कर रहे हैं विभिन्न विभागों के सहयोग से, जैसे कृषि विभाग हुआ, आपका उद्यान विभाग हुआ, कृषि विज्ञान केंद्र, इनके सहयोग से, प्रयासों के साथ, मैं उनके साथ वो जो उत्साहवर्धन कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों का, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ।
1: प्राकृतिक और जैविक खेती से उत्पादित प्रोडक्ट्स को बाजार में पहुंचाने में प्रमोद जी के बेटे नीरज काफी मदद करते हैं। इसके लिए नीरज ने जॉब की ओर न जाकर पिताजी का सहयोग करने का निश्चय किया और ऑनलाइन के माध्यम से उत्पादों की बिक्री कर काम को आगे बढ़ा रहे हैं। इस बारे में नीरज कहते हैं,
3: जो ऑर्गेनिक खेती हमारे खेतों में होती है, जैसे काला नमक चावल, इन सबको पूरे भारत में अमेज़न के थ्रू मैंने बेचने में, सेल करने में मदद की। मैं तमाम यूथ लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि वो जॉब के अलावा भी कृषि में ऑनलाइन मार्केटिंग के माध्यम से अपना कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं।
1: मिश्रित खेती से खेत की उर्वरा शक्ति में बढ़ोतरी होती है। इसे जानकर प्रमोद जी के आसपास रहने वाले दूसरे किसान भी प्राकृतिक खेती करते हुए खेत में जैविक फसलों का ही उत्पादन करते हैं, जिससे उनकी आय में भी बढ़ोतरी होती है। क्षेत्र के किसान शिवाय दीक्षित और इंद्रजीत दीक्षित बताते हैं कि ये प्रमोद जी के प्रयास का ही नतीजा है कि प्राकृतिक खेती का विकास कर रहे हैं। प्रमोद जी प्राकृतिक खेती की तकनीकी जानकारी देते रहते हैं।
4: जैसे कि यहाँ खेती का काम होता है और प्रमोद जी के माध्यम से तरह तरह की तकनीकी लगाई जा रही है, उसकी वजह से तमाम सारे वैज्ञानिक आते हैं यहाँ, उन लोगों को आने का अवसर मिलता है और उनसे हम लोगों को बहुत सीख मिलती है। तरह तरह की तकनीक के बारे में जानकारी मिलती है। काफी सालों से चल रहा है प्रमोद जी का प्रयास।
5: प्रमोद दीक्षित के साथ मिलके यहाँ, चूंकि प्रमोद दीक्षित जी वैज्ञानिक लोगों को ले आके इस गांव में और कुछ तकनीकी सलाह दे रहे हैं, और बर्मी कंपोस्ट और ये मधुमक्खी पालन और तमाम चीजों का, और यहाँ इस गांव के किसानों का मनोबल बढ़ा रहे हैं।
0: इसी के साथ ही सफल किसान में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि किसानों को मिश्रित खेती और प्राकृतिक खेती के लिए कैसे कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े हुए हमारे कृषि वैज्ञानिक किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और उन्हें सही राह दिखा रहे हैं।

0: ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के समय में खेती वैज्ञानिक खेती है और ऐसे में बहुत आवश्यक है कि हमारे किसानों तक वैज्ञानिक सलाह पहुंचती रहे और नई तकनीक का इस्तेमाल करते रहे। कैसे कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े हुए हमारे कृषि वैज्ञानिक किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और उन्हें सही राह दिखा रहे हैं, कैसे इससे उन्हें लाभ हो रहा है।
1: पिछले कुछ सालों में भारत ने दुनिया भर में खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करके प्रमुख कृषि प्रधान देश की इमेज बनाई है और ये संभव हुआ है देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे कृषि अधिकारियों वैज्ञानिकों की ओर से किसानों को मिलने वाले कृषि संबंधी मार्गदर्शन से। इस बारे में कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यरत कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक राय बताते हैं।
2: तो जनरली ये कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के क्या समस्या है उस पर हम लोग किसानों के गांव में जाके ट्रेनिंग प्रोग्राम कराना, उनको प्रशिक्षित देना, उनके जो क्रॉप जो फसल उत्पादन ले रहे हैं जैसे अभी कुशीनगर जनपद में मेन मुख्य रूप से गन्ना का उत्पादन, फिर धान का उत्पादन, सब्जी का उत्पादन और गेहूं का उत्पादन मुख्य रूप से किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ अभी आज के डेट में देखा जाए तो केला एक डबल इनकम का मुख्य सोर्स बना हुआ है जो कि 15,780 हेक्टेयर एरिया में कुशीनगर में केला का खेती मुख्य रूप से किया जा रहा है। उसमें G9 का केला काफ़ी प्रचलित अभी हुआ है और FPO के माध्यम से और छोटे छोटे जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उसके माध्यम से उसको प्रोडक्शन में किया जा रहा है और उसको वैल्यू एडिशन में जैसे हमारा जो प्रोसेसिंग चैम्बर है उस पर भी काफी किसान अभी आगे आके काम कर रहे हैं।
1: खेतों में जैविक अनाजों के उत्पादन और प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को जानकारी देने के लिए उद्यान विभाग के अधिकारी भी खेतों तक पहुंच रहे हैं। आइए इस बारे में सहायक उद्यान निरीक्षक विपिन उपाध्याय से जानते हैं।
3: श्री प्रमोद दीक्षित जी हम लोग से सन 2021-22 में जुड़े विभाग से और इन्होंने इसके बारे में पता किया वर्मी कम्पोस्ट पहले कि कैसे तैयार करें, तो हम लोगों ने बताया कि गोबर की खाद और केचुआ इसका प्रयोग करेंगे आप और इस पे आपको विभाग द्वारा प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। तो 21-22 में इन्होंने इसका लाभ विभाग से लिया।
1: खेतों में रासायनिक का प्रयोग न करने और प्राकृतिक रसायनों का प्रयोग कर जैविक फसल लेने और मिश्रित खेती को बढ़ा

0: इनकम को बढ़ाने में सहायक होते हैं, उनको प्रेशर देते हैं। तो जैसे अभी बात हो रही थी मधुमक्खी की, तो मधुमक्खी पालन बहुत जरूरी है। आज के समय में जिस तरह से अंधाधुंध रसायनों का प्रयोग हो रहा है, इन रसायनों का प्रयोग होने से मधुमक्खियों की संख्या बहुत कम होती जा रही है, दिन पर दिन वो मरती जा रही हैं। और ऐसा देखा गया है रिसर्च के माध्यम से कि जिस खेत में मधुमक्खी पालन किया गया वहां पर उस फसल का, लीची का या अन्य फसल का उत्पादन ज्यादा हुआ, जहां पर रसायनों का प्रयोग ज्यादा होता रहा वहां पर मधुमक्खियां कम आती हैं। मधुमक्खियां कम आने से फलों में जो फूल होता है उसका परागण नहीं हो पाता है ठीक से, और परागण न होने की वजह से फूलों में फल धारण करने की क्षमता कम हो जाती है। इस वजह से हम किसानों को यह सलाह देते हैं कि अपने खेतों में रसायनों का प्रयोग कम से कम करें, अधिक से अधिक ऑर्गेनिक का प्रयोग करें। तमाम जो किसान पालक हैं जिनके यहाँ पशु हैं, वो अपने पशु से विभिन्न तरह के ऑर्गेनिक खाद बना सकते हैं। वो बर्मी कंपोस्ट हो सकता है, नादिप कंपोस्ट हो सकता है, वो बर्मी वास हो सकता है। इन सब का अगर खेतों में प्रयोग करें, फसलों पर प्रयोग करें, तो निश्चित तौर पे उनके जो लागत है वो लागत में कमी आएगी। क्योंकि जब रसायनों का, जब हम बर्मी कंपोस्ट वगैरह का खेत में प्रयोग करेंगे तो निश्चित है कि हमारी जो रासायनिक खाद है उसकी मात्रा की जरूरत कम पड़ेगी। और इन बर्मी कंपोस्ट वगैरह में लगभग सारे तत्व हैं, लेकिन रासायनिक खादों में तो वही तत्व है जो हम देते हैं पौधों में। चाहे यूरिया है तो केवल नाइट्रोजन मिलेगा, फास्फोरस या पोटास देंगे तो केवल पोटास मिलेगा, लेकिन अगर हम बर्मी कंपोस्ट देते हैं तो लगभग सारे तत्व मिलते हैं पौधों के विकास के जो तत्व चाहिए। तो इस तरह से अगर बर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करते हैं खेतों में तो निश्चित है कि हमारी रासायनिक खादों की मात्रा का जरूरत कम पड़ेगा, और जब हम लागत को कम करेंगे तभी हम लाभ ज्यादा पाएंगे।
1: हूँ से आरजे राकेश
2: अने हूँ से आरजे कमता डामोर
1: तमु हामली रासे कार्यक्रम खेती वाड़ी आपड़ा झाबवाना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआनी आवाज पर। तो सालो किसान भाइयों, हाव लई एक नानो ब्रेक अने हाम लई आपड़ा झाबवा जिला मा भील समुदाय मा जब लाडो पैणे अने जान जाई तीन मा जो गावे त्यू घणु मजानु अने असल गीत हाम लई ने पासा भेळा था हूँ कार्यक्रम खेतीवाड़ी मा। तो किसान भाइयों जाजो मती कही था हामल तारे जो झाबवानी आवाज पर सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटिया भील 90.8 FM।

0: सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको देश के कोने कोने से खेती किसानी से जुड़ी हुई ऐसी प्रतिभाओं से रूबरू करवाते हैं जो खेती किसानी में आगे आकर विकास की नई गाथाओं को लिख रहे हैं। सफल किसान, जैसे कि नाम से ही आपको पता लग रहा है कि सफल किसान के जितेंद्र कसाना ने कैसे जैविक खेती को अपनाया और आगे कैसे वो विकास की नई गाथाओं को लिख रहे हैं।
1: जिला यूं तो राजनीतिक हलचलों के मामले में काफी आगे है, लेकिन यहां के किसान भी खेती के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यहां के किसान अपनी सेहत के प्रति जागरूक हैं। इसी जागरूकता की वजह से किसान खेतों में रासायनिक उर्वरकों की जगह जैविक उर्वरकों का प्रयोग कर जैविक उत्पादों को उगाना बेहतर मानते हैं। जैविक और प्राकृतिक उत्पाद मानव स्वास्थ्य को बेहतर रखने के अलावा खेत की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने में मददगार होते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र मुरादनगर के कृषि वैज्ञानिक प्रेरणा से जितेंद्र कसाना पिछले कई सालों से अपने खेत में गोबर से तैयार खाद का प्रयोग कर सरसों आदि फसलों की जैविक खेती कर रहे हैं। जितेंद्र बताते हैं कि कोरोना काल में कुछ मुश्किलों का सामना करने पर उन्होंने दूध का व्यापार किया और वहीं से उन्होंने जैविक तरीके से ज्वार, गेहूं के अलावा सब्जियों की खेती प्रारंभ की, जिसमें उन्हें अच्छा फायदा हो रहा है।
2: हम पारंपरिक खेती करते थे पहले, तो अब जो है फिलहाल जैविक में आ गए। 2015 में हमें जो है डॉक्टर विपिन कुमार से हमारी संपर्क हुई है, वे मुरादनगर केवीके में रहते थे। उन्होंने जो है हमको गाइडलाइन दी कि कुछ बदलो, ये तो पारंपरिक आप करते गेहूँ धान ये तो आप करते ही आ रहे हो, कुछ दूसरी तरफ चलो। फिर हम जो जी सब्जी की तरफ चले। उसके बाद में हमने सरसों का भी काम कराया, उन्होंने हमसे सरसों खरीदवाई, तेल पिलवाई, अपने घर की सरसों भी बोई हमने, और वो काम हमारा काफ़ी बढ़ा। लेकिन कोरोना टाइम में आकर के हम उसमें थोड़े से डाउन हो गए, कोरोना के डर से फिर हम उसे जो सप्लाई भी नहीं कर पाए। हमने अच्छी आमदनी ली उससे मतलब, और अच्छी आमदनी लेने के बाद में जी उसके बाद फिर हम चलते रहे, फिर दूध का व्यापार कर लिया जी। और दूध का व्यापार करके अब इस खेत में हमने जो ज्वार बो रखी है, गेहूँ काट के ज्वार बोई है। ज्वार बोने के बाद में हम इसमें धान लगा देंगे, धान के बाद में फिर गेहूँ, और कुछ सब्जी की खेती करते हैं जी, आलू भी बोते हैं। तो हमारे पास 6-7 एकड़ जमीन है, उसमें अदलवा बदलवा कुछ ना कुछ करते रहते हैं जी सर। और अब जो फिलहाल हमारी अच्छी आमदनी हो रही है, बढ़िया काम चल रहा है जी। दूध हम यहाँ पे 50 रुपया किलो कटवाते हैं जी, और 70 रुपया किलो दिल्ली में सप्लाई करते हैं जी।
1: जैविक तरीके से होने वाली ज्वार को जितेंद्र अपने पशुओं के चारे के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज वे जैविक अनाज ही पैदा कर रहे हैं, जैविक उत्पाद ही उनका आहार बन चुका है। इस बारे में जितेंद्र कहते हैं,
2: ज्वार जो जी अपने पशुओं के लिए चारा करते हैं जी इसमें जी, और चारा खिला करके हमारे पास जो है 10-12 भैंस हैं, गाय हैं, दूध का व्यवसाय है, और चारे से जो है मतलब अच्छी जैविक चारा है, पशु भी जैविक खाते हैं हमारे, और हम भी जैविक अनाज पैदा करते हैं जी। जैविक का ही खान पीन, रहन सहन हमारा सब कुछ जैविक के उससे रहता है जी, एकदम साधारण सिंपल। और पशुओं में भैंसों में जो जी अच्छी हमें जो आमदनी हो रही है जी।
1: जैविक खेती करने के साथ साथ पशुपालन बेहद फायदेमंद होता है, इसे जानकर जितेंद्र गाय भैंस पालकर डेयरी का भी काम करते हैं। सुबह उठकर पशुओं के काम में लगकर दूध निकालते हैं और उसे बाजार में बेचते हैं। अच्छी नस्ल के पशुओं को वे रोहतक लाते हैं जिनसे दूध अधिक निकलता है। पशुओं के चारे और टीकाकरण का जितेंद्र पूरा ध्यान रखते हैं। वे युवाओं को सलाह देते हुए कहते हैं कि युवा नौकरी के बजाय कृषि को अपनाएं और सफलता हासिल करें।
2: मेरा मुख्य काम भैंसों का दूध की डेयरी, ये काम है मेरा। मैं सुबह जो है 4 बजे उठ करके और अपना दूध निकालता हूँ भैंसों का, उनका चारा करता हूँ, चारा वगैरह करके उन्हें नहवा धोला करके और अपने कार्य को जो मतलब 10 बजे तक फारिग हो जाता हूँ, दूध की सप्लाई कर जाता हूँ, और पशु जो है रोहतक से लाता हूँ। हम जो जी गर्मियों में तो जी इन्हें नहलाना पानी से 2 बार, एक बार सुबह एक बार शाम को जी, और अपना धान की पराल जो होती है हम उसको वेस्टेज नहीं करते ना, उसमें ये कि मतलब आग लगा दे या वो कर दे, अपनी धान की जो पराल होती है उसको इकट्ठा कर लेते हैं और मशीन पे काटते हैं और अपने पशु उनको कुछ खिलाते हैं जी। टीकाकरण समय पर करवाते जी, हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल है निस्तौली में, वहाँ से डॉक्टर आते समय समय पर आते रहते हैं, और समय समय पर भी टीका लगाते हैं, अब भी लगा के भी टीका, अब से 15-20 दिन पहले टीका लगा करके वो गए।
1: भारत की समृद्धता प्राचीन काल से विख्यात रही है और यहाँ की कृषि पद्धति भी। प्राचीन काल से ही भारत के खेतों में गोवंश का बोलबाला रहा है। खेत और गोवंश एक दूसरे के पूरक माने जाते रहे हैं। गोवंश का गोबर और गोमूत्र का उपयोग खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने और बीजों को रोग रोधक बनाने में किया जाता रहा है। मानव और खेत दोनों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर के चलते कृषि विभाग ने जैविक खेती को बढ़ावा देने का निश्चय किया। कृषि विभाग के प्रयासों के कारण एक बार फिर किसानों का रुझान जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहा है। कृषि विभाग जैविक खेती को बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आने लगे हैं।
0: दोस्तों, वक्त हो गया यहाँ ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम जानेंगे राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र के प्रयासों के बारे में, कैसे किसानों को वो जोड़ रहे हैं और कैसे किसानों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।

Oh, yeah.

Damona.

0: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। सवाल किसान के इस कार्यक्रम के दास्तान को आगे बढ़ाते हैं और आप बात करते हैं राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र के प्रयासों के बारे में कि कैसे उन्होंने किसानों को आगे बढ़ाया और किसानों को इससे जोड़ने की कितने प्रयास किए जा रहे हैं, किसानों को कैसे जागरूक किया जा रहा है, वो तमाम तरह के अभियानों के बारे में जानते हैं।
1: खेतों में रासायनिक खादों के चलते उगने वाली फसलों के दुष्प्रभावों को देखते हुए किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर मोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर किसानों को आकर्षित करने के लिए राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र की स्थापना की गई है। इस दिशा में संस्थान अपनी गतिविधियों के माध्यम से किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर मोड़ने का प्रयास कर रही है। इस बारे में जानकारी देते हुए संस्थान के निदेशक डॉक्टर जगनेश शर्मा जी बताते हैं।
2: हमारा जो संस्थान है वो देश में जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रमुखतया यहाँ पर कार्यरत है और हमारे जो संस्थान है इसके चार मुख्य मैंडेट्स हैं, जो कार्य हैं हमारे। सबसे पहला जो है हमारा कार्य वो ट्रेनिंग है, कैपेसिटी बिल्डिंग है किसान भाइयों से लेके और सभी जितने भी एक्सटेंशन ऑफिसर्स हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, उन सब के साथ मिल के जो है हम कृषि के जितने भी जैविक कृषि के ट्रेनिंग्स हैं, हमारे जो प्रशिक्षण के प्रोग्राम हैं वो चलाते हैं और कैपेसिटी बिल्डिंग करना सभी स्टेक होल्डर्स की, ये हमारा सबसे पहला दायित्व है। दूसरा जो है हमारा प्रमाणीकरण है कि प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाना है देश में। आपको पता ही है कि दो प्रकार की प्रमाणीकरण की प्रक्रियाएँ हैं देश में। पहली तो है थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन, जो अपेडा एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स उनके द्वारा चलाई जाती है, जो एक्सपोर्ट के लिए और डोमेस्टिक ट्रेडिंग के लिए दोनों के लिए कार्य करती है।
1: राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र किसानों को ट्रेनिंग के अलावा उत्पादित फसलों के प्रमाणीकरण और उसकी टेस्टिंग की दिशा में भी काम करती है। इनका पूरा प्रयास रहता है कि लोग जैविक तरीके से उगाई जाने वाली फसलों को अपनाएं और स्वस्थ जीवन जिएं। इसलिए संस्थान जैविक उत्पादों का प्रमाणीकरण करती है कि ये उत्पाद पूर्णतया जैविक है। इस बारे में एपीडा के अलावा किसान भाई भी फसलों का प्रमाणीकरण कर सकते हैं। इस बारे में डॉक्टर जगनेश शर्मा जी बताते हैं।
2: हमारा जो संस्थान है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का, हमारे यहाँ पर पीजीएस सेक्रेटरिएट है जिसका नाम है पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम ऑफ सर्टिफिकेशन। तो ये सर्टिफिकेशन ग्रुप बेस्ड सर्टिफिकेशन है और जैसे कि आपने नाम सुना पार्टिसिपेटरी, मतलब किसानों द्वारा खुद का निरीक्षण खुद करके और खुद ही अपना पीयर इंस्पेक्शंस पीयर अप्रेजल्स के द्वारा डिक्लेयर करना कि हाँ हम जो है केमिकल फ्री फार्मिंग कर रहे हैं और हमारी जो है जैविक खेती हम जैविक कर रहे हैं और स्टैंडर्ड्स और जो मानक हैं उनके आधार पर जैविक खेती कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया है वो भी हमारा दूसरा दायित्व है। और तीसरा जो हमारा मैंडेट है वो है टेस्टिंग का। हमारे यहाँ पर हमारे संस्थान के साथ हमारे पांच और संस्थान हैं जिनका हम क्षेत्रीय संस्थान कहते हैं और जो रीजनल सेंटर हैं हमारे अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में हैं, जैसे कि हेडक्वार्टर गाजियाबाद से शुरू करें यहाँ पर। तो ये जो संस्थान है यहाँ पर लेबोरेटरी भी है जो ऑर्गेनिक जो इनपुट्स हैं जैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं, बायो फर्टिलाइजर्स हैं, जो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 है उसके तहत हमारी लैब्स जो हैं वो नोटिफाइड हैं और हमारी जो हेडक्वार्टर की लेबोरेटरी है वो तो NABL एक्रेडिटेड भी है। और इसके अलावा बेंगलोर की लेबोरेटरी है RCNF बेंगलोर और RCNF नागपुर है और इसके अलावा जो है हमारी RCNF भुवनेश्वर है, इसके अलावा हमारे RCNF मणिपुर है। तो हमारी पांच संस्थान हैं क्षेत्रीय जो ट्रेनिंग भी करते हैं, टेस्टिंग भी करते हैं और उसके साथ साथ में सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया को भी सुचारू रूप से चलाने में सहायक हैं।
1: जैविक एवं प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों को जागरूक करने के लिए संस्थान अन्य गतिविधियां करने के अलावा किसानों को ट्रेनिंग आदि भी देते हैं। जैविक उत्पादों की जांच के लिए संस्थान अपनी लैब को अपग्रेड भी कर रहा है जिससे उत्पादों की सही जांच हो सके और लोगों को सही जैविक उत्पाद मिल सके। इस बारे में जगनेश जी कहते हैं।
2: ट्रेनिंग में हमारे सबसे बड़ा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो 30 दिवसीय सर्टिफिकेट प्रोग्राम है जिसमें हम प्लस टू तक के जो बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं जैविक खेती एवं प्राकृतिक खेती के ऊपर। सर्टिफिकेशन के बारे में भी उनको जानकारी दी जाती है और उनको ट्रेन किया जाता है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करवाई जाती है। और उनको कहीं भ्रमण पर भी ले जाया जाता है। तो इस तरह से 30 दिन में उनको एक्सपोज किया जाता है सभी प्रकार के जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की जितनी भी गतिविधियां हैं वो सब उनसे उनको अवगत कराया जाता है। 20 लेक्चर्स रखे जाते हैं जो हमारे नेशनल लेवल के एक्सपर्ट होते हैं, वो चाहे साइंटिस्ट हों, वैज्ञानिक हों IARI के या किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, उनको हमने एम्पैनल और एक्सपर्ट्स को अपने पैनल में रखा होता है, उनको बुलाया जाता है इन ट्रेनिंग्स को करवाने के लिए। इसके साथ साथ हम कंपाइलेशन करते हैं डिफरेंट पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस की, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा वैलिडेटेड टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजी है, उसको हम ट्रेनिंग मॉड्यूल्स के फॉर्म में पब्लिश करते हैं। हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग का न्यूज़लेटर भी है, बायोफर्टिलाइजर न्यूज़लेटर भी है, जो साल के 2 बार हम पब्लिश करते हैं और किसानों तक ही नहीं सभी स्टेक होल्डर्स तक वो पहुंचता है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में भी जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके लिए भी ये न्यूज़लेटर उनकी लाइब्रेरी में उपलब्ध होता है। तो इस तरह से हमारा संस्थान ट्रेनिंग की जो प्रक्रिया है उसको सुचारू रूप से चलाता है। एक दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है जो किसानों के लिए किया जाता है, खेत में जहां पर किसान गांव में कोई मॉडल डेमोंस्ट्रेशन फार्म है उनके इन एंड अराउंड हम ये ट्रेनिंग रखते हैं और 50 किसानों को इसमें भागीदार बनाते हैं और उनको भी एक दिवसीय ट्रेनिंग में एक्सपोज किया जाता है जैविक खेती में प्राकृतिक खेती प्रमाणीकरण। और साथ ही साथ हमारा टू डेज एक्सटेंशन ऑफिसर्स ट्रेनिंग भी है और इसके साथ साथ PGS इंडिया का जो हमारी रीजनल काउंसिल्स होती हैं, एजेंसीज होती हैं, ताकि उनके ऑडिटर्स और इंस्पेक्टर्स ट्रेन हो, उसके लिए भी हमारी 2 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाता है।
0: कैसे जैविक खेती और प्राकृतिक खेती से जुड़कर किसान भाई आगे आ सकते हैं और कितनी अपार संभावनाएं हैं प्राकृतिक और जैविक खेती से जुड़कर आप उत्पादन बढ़ा सकते हैं और जो आपकी उत्पादन की गुणवत्ता है उसको भी आप कितना महत्वपूर्ण है और कितना बेहतर आप कर सकते हैं, ये सब कुछ संभव है जैविक और प्राकृतिक खेती के जरिए। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र के प्रयासों के बारे में आपको बताएंगे कि कैसे इनके जरिए भी किसानों को आगे बढ़ाया जा रहा है, किसानों को जागरूक किया जा रहा है और तमाम तरह की व्यवस्थाएं किसानों के लिए ये उपलब्ध करा रहे हैं।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम सफल किसान के दास्तान को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं कि कैसे कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विश्वविद्यालय ये दोनों ही विभाग किसान को सफल किसान बनाने के लिए अग्रसर हैं। कैसे ये दोनों विभाग किसानों को सफल किसान बनाने के लिए कौन कौन से प्रयास कर रहे हैं, कैसे वो जागरूक करते हैं और कैसे किसानों को जोड़ने का काम करते हैं। इनके प्रयास खेती किसानी के क्षेत्र में अमूल्य हैं और यही कारण है कि आज हमारे देश भर के कोने कोने से ऐसी किसान प्रतिभाएं निकल कर आ रही हैं जो आज अपने आप को एक सफल किसान के तौर पर स्थापित कर रही हैं।

गीत संगीत की इस महकती हुई शाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त समीर, और चलिए मिलते हैं एक और उभरते हुए कलाकार से, एक नए टैलेंट से। कौन है ये, क्या है ये, इनके बारे में जानते हैं और इनके गीतों का मजा लेते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे आपके ही आज के कलाकार प्रोग्राम को।

0: आज के कलाकार प्रोग्राम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो टैलेंट जो सिंगर हमारे साथ हैं उनका नाम है डॉक्टर उमेश। बाकी की बातचीत हम उन्हीं से करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। डॉक्टर उमेश आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे
1: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया समीर जी।
0: थैंक यू सो
1: मच। सभी श्रोतागणों को भी मेरा नमस्कार।
0: डॉक्टर साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए अपना परिचय दें, आप कहाँ हैं, आप क्या करते हैं।
1: यस सर, मेरा नाम उमेश अवसर मोल। मेरा जो नेटिव प्लेस है वो महाराष्ट्र में अमरावती डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा विलेज है, वहां से मैं हूँ बेसिकली। और पिछले 24 इयर्स से 24 सालों से मैं पुणे का रेसिडेंट हूँ और पुणे के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में प्रोफेसर और मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का हेड हूँ।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच डॉक्टर उमेश। दोस्तों आपने सुना, डॉक्टर उमेश मैकेनिकल इंजीनियर हैं, एक कॉलेज में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। तो चलिए सुनते हैं और प्रोग्राम को शुरू करते हैं डॉक्टर उमेश के ही गाए हुए इस प्यारे से गीत से।

0: बहुत बहुत प्यारी गायकी। चलिए डॉक्टर साहब बचपन में चलते हैं, आप बचपन में क्या बनना चाहते थे?
1: तो बचपन में हमारा जो मैंने जैसे आपको बताया कि छोटे से गांव से मैं आता हूं, तो वहां पे जो है वो हर एक जो इंसान है वो टीचर ही बनना चाहता, क्योंकि टीचर इज अ रिस्पेक्टेबल पोस्ट। सो मैं प्राइमरी टीचर उस समय बनना चाहता था और उसी टीचिंग प्रोफेशन में मैं अभी हूँ। ठीक है, कॉलेज लेवल का टीचर हूँ लेकिन टीचर ही हूँ।
0: वाह, ये बहुत बढ़िया बात है कि जो बचपन में आपने सोचा था जैसा आप बनना चाहते थे आप वैसा ही बने हैं। चलिए दोस्तों इस बात पर एक प्यारा सा गीत सुनते हैं, डॉक्टर उमेश के बचपन के नाम।

0: बहुत प्यारा गीत। तो डॉक्टर साहब, बचपन में ही आपके फेवरेट टीचर कौन थे और क्यों?
1: यस, सो टीचर का बहुत प्रभाव रहा है मेरे ऊपर, और टीचर्स ने बहुत प्यार दिया है और कॉन्फिडेंस भी मेरा बढ़ाया है। तो मैं कुछ स्कूल से लेके कॉलेज तक के टीचर्स के नाम लेना चाहूँगा सर। मेरे स्कूल में जो पसंदीदा टीचर थे वो आवारे सर करके एक टीचर थे, देन 11th एंड 12th में दिवेकर सर के करके केमिस्ट्री के टीचर थे, प्रोफेसर दिवेकर। देन इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरे बी मैकेनिकल के कोर्स में डॉक्टर जाजू थे, वो हमारे एचओडी थे, उनके जैसा मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। और मेरे पीजी में एमटेक में डॉक्टर लोंडे सर थे, जिनका प्रभाव भी मेरे ऊपर है। और मेरा जो पीएचडी हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, वहाँ पे डॉक्टर पीसे सर। तो ये सारे टीचर्स हैं सर जिनका मेरे ऊपर प्रभाव रहा है और जिन्होंने मुझे बहुत प्यार देके यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ।
0: बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। आप अपने सारे टीचर्स को आज रेस्पेक्ट के साथ याद करते हैं, उनका प्रभाव आपके जीवन पे है, उन्होंने आपके जीवन को बनाया। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं ये प्यारा सा गीत जो कि डॉक्टर उमेश के टीचर्स को डेडिकेट कर रहे हैं। हम सुनते हैं।

0: बहुत बहुत प्यारा गीत। तो उमेश सर, आगे बढ़ते हुए आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका सबसे पसंदीदा गायक कौन है और क्यों?
1: तो सबसे पहले जो हम लोगों ने गाने सुने हैं या मेरे घर में सभी को जिनकी आवाज बहुत पसंद है और सब उनकी आवाज पहचानते थे, तो वो आवाज थी सुरेश वाडकर की। तो सुरेश वाडकर मेरे पसंदीदा गायक है। बाकी और भी सिंगर्स का गाना मैं पसंद करता हूँ, तो लाइक आशा भोसले है, एसपी बाल सुब्रमण्यम है, येसुदास है, और जो मराठी गजलें मैं सुनता हूँ वो भीमराव पांचाळे करके है, उनकी गजल मुझे सर ज्यादा पसंद है।
0: बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। खास हम खास आपके फेवरेट गायक सुरेश वाडकर साहब हैं, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो मेरे भी एक फेवरेट फेवरेट गायक हैं। चलिए दोस्तों, सुनते हैं उमेश साहब की ही आवाज में प्यारा सा गीत।

0: ये जो मैंने खाने की मतलब पीने की चीज बनाई थी वो चाय, तो ठीक ठाक बनी थी। देन जो खाने की जो पहली चीज बनाई थी मैंने, वो गेहूं की रोटी बनाई थी, तो टेस्ट में तो बेस्ट थी, लेकिन जो उसका अपियरेंस था वो कौन से कंट्री का नकाशा है वो अभी तक समझना मुश्किल है, बट ये दो चीजें
1: ओके,
0: मैंने बनाई थी।
1: अमेजिंग, ब्यूटीफुल। ये एक्सपीरियंस सभी को एक ना एक बार हो ही जाता है और बहुत
0: यस
1: मजा
0: सर,
1: आता है उस एक्सपीरियंस को याद करते हुए। बहुत प्यारी बात।
0: राइट,
1: तो दोस्तों, आपने सुना डॉक्टर उमेश साहब ने खाने की चीजों में, पीने की चीजों में क्या पहले बनाया। तो चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत उमेश साहब की ही आवाज में।

0: बहुत बहुत प्यारा गीत। सर आगे बढ़ते हुए आपसे पूछना चाहूंगा, आपकी हॉबीज क्या हैं? जब कभी भी आपको थोड़ा वक्त मिलता है तो अपने को एंटरटेन करने के लिए क्या करना चाहते हैं आप, क्या करते हैं?
1: यस सर, तो गाने सुनना मैं ज्यादा पसंद करता हूँ सर। मतलब मैं बहुत सारे एक्टिविटीज है, पढ़ते समय या बाकी भी कोई और काम करता रहा तो मेरा यदि बैकग्राउंड में गाना चल रहा हो तो मुझे बहुत फ्रेश लगता है। तो इवन कॉलेज के लाइफ में भी मेरे गाने चलते थे एक साइड पे और मेरी पढ़ाई चलती, तो सिंगिंग मतलब गाने सुनना मुझे ज्यादा पसंद है। उसके बाद यदि थोड़ा टाइम मिल जाता है तो फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट है लाइक फ्लूट है, हारमोनियम है, उसको मैं थोड़ा बजाने की कोशिश कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दिस इज नाइस। दोस्तों आपने सुना, डॉक्टर उमेश बांसुरी भी बजाने की कोशिश कर रहे हैं, हारमोनियम भी सीख रहे हैं, यही चीज हमें आगे चलाए रखती है। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत डॉक्टर उमेश साहब की आवाज में।

0: डॉक्टर साहब, अगला सवाल थोड़ा फनी है, क्रिएटिव हो सकता है, तो आप सोच के बताइएगा, मजा आएगा। अगर आप 24 घंटों के लिए गायब हो जाएं, अदृश्य हो जाएं, इनविजिबल हो जाएं, तो क्या करेंगे आप उन 24 घंटों में?
1: अच्छा, मतलब 24 घंटे इनविजिबल होके मुझे जो चाहिए जहां पे भी जा सकता हूँ?
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: या तो सर, जब भी मैं कभी अकेला बैठता हूँ तो मेरे एक विचार आता है कि जो मैं अभी हूँ, जो मेरा लाइफ है, या मेरे जैसे कई लोग हैं जिनका लाइफ सवारा है, उसमें हमारी तो हार्डवर्क रिस्पॉन्सिबल ही है, उसके साथ साथ जो हमारे देश के महामानव है उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है, और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खर्च करके, कुर्बानी देके हमारे जीवन को संवारा है। लाइक गौतम बुद्ध हो सकते हैं, शिवाजी महाराज है, महात्मा ज्योतिबा फुले है, सावित्री माई फुले है, डॉक्टर आंबेडकर है, बिरसा मुंडा है, इन लोगों ने बहुत कुर्बानियां दिए हैं ताकि हमारा लाइफ अच्छा बने। तो यदि मुझे 24 घंटे के लिए अदृश्य किया जाए तो मैं इन 24 घंटों में अतीत में जाके इन सभी महापुरुषों को मिलके आना चाहता हूँ और उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि थैंक यू, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सचमुच क्रिएटिव। आपने बहुत अच्छा विचार किया है कि उन लोगों को शुक्रिया अदा करना जरूरी भी है, और ठीक है, हम लोग तमाम तरीके से उनकी मूर्तियां बनाकर और उनके जयंती मनाकर भी बहुत सारे उनको श्रद्धांजलि या शुक्रिया कहते हैं, लेकिन आप पर्सनली जाकर उनसे मिलकर शुक्रिया अदा कहना चाहते हैं, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए दोस्तों, सुनते हैं एक प्यारा सा गीत उमेश साहब की आवाज में।

0: बहुत बहुत प्यारा गीत। उमेश साहब, आपकी जिंदगी में सबसे गौरवपूर्ण उपलब्धि या बेस्ट अकॉम्प्लिशमेंट टिल डेट क्या रहा है?
1: सर एक्चुअली मैं, जैसे कि बोला है कि मैं टीचिंग फील्ड में जाना चाहता था बचपन से, और कुछ हालात ऐसी हो गई कि वो जो प्राइमरी टीचर वाला फील्ड मुझसे मिस हो गया है। ओके। और उसके बाद फिर मैं आगे जाके इंजीनियरिंग में गया और फिर मैंने पीएचडी कंप्लीट किया। तो मेरे जो रिलेटिव्स थे या दोस्त लोग थे, कुछ लोगों को लगता था, मतलब मुझे पर्सनली लगता था कि मैं टीचर बनूं, मेरे दोस्तों को लगता था, उनको लगता था कि मैं इंजीनियर बनूं, और जो मेरे कुछ रिलेटिव्स थे उनको लगता था कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगे।
0: अरे वाह,
1: तो जब मेरा पीएचडी कंप्लीट हुआ ओके, तो मैं इंजीनियर तो था ही, टीचिंग फील्ड में था तो प्रोफेसर भी, मतलब टीचर भी था, और फिर डॉक्टर भी मेरे सामने लग गए पीएचडी मिलने के बाद। तो ये मेरे लिए एक गौरवपूर्ण एक बात है, ऐसा मुझे लगता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, ये एक बहुत बहुत गौरवपूर्ण बात है कि आपके सभी चाहने वालों ने जो जो कुछ भी चाहा आपने उनकी इच्छाएं पूरी की। आप टीचर भी बने, आप डॉक्टर भी बने, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत खूबसूरत बात। तो चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत डॉक्टर उमेश साहब की आवाज में।

0: सर एक बात बताइए, आप किसी अंतरिक्ष से आए प्राणी से मिलना चाहेंगे, किसी एलियन से मिलना चाहेंगे और क्यों?
1: या एलियन के बारे में तो बहुत बातें सुनी है और एक मूवी भी उसके ऊपर देखी है, तो
0: अरे वाह,
1: उससे या तो ऐसा लगता है कि यदि ऐसा कुछ है जो अंतरिक्ष से डिस्क आती है और उसमें से कोई एलियन आता है, तो मैं जरूर उनसे मिलना चाहूंगा। क्योंकि ऐसा माना गया है कि जो एलियंस है उनके वो जहाँ पे जिस भी प्लेनेट पे रहते हैं वहाँ की टेक्नोलॉजी जो है बहुत ही रिच टेक्नोलॉजी, ऐसा हमने सुना है। तो मैं उनसे बात करके हमारे प्लेनेट के ऊपर, मतलब अर्थ के ऊपर जो जो भी कुछ प्रॉब्लम है, एनवायरमेंटल इश्यू रहेंगे, एनर्जी के, एनर्जी कंजर्वेशन के अलग अलग उनके जो तरीके रहेंगे, देन ऊर्जा के जो नए नए स्रोत वो इस्तेमाल करते होंगे वहां पे, उनके बारे में जानना चाहूंगा, ताकि उनके तरीके इस्तेमाल करके हमारे प्लेनेट का लाइफ भी हम लोग एक अच्छे तरह से बनाना चाहेंगे। इसके लिए मैं जरूर उनसे मिलना चाहूंगा सर।
0: वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग एंड पर्पजफुल। आपका उद्देश्य बहुत साफ है कि आप अंतरिक्ष से आए हुए प्राणी से क्यों मिलना चाहेंगे, क्या चाहेंगे उनसे। बहुत बहुत बढ़िया बात। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं प्यारा सा गीत डॉक्टर उमेश साहब की आवाज में। सर हम अपने प्रोग्राम के उस मुकाम पर आ गए हैं जहां पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए कोई संदेश दीजिए, कोई मैसेज दीजिए ना उनको।
1: यस सर, तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि जो म्यूजिक है हमारा एक, हम सफर बन के रहा तो हमारे बहुत सारे स्ट्रेसेस जो है रिलीज होते हैं। बहुत सारे कुछ डॉक्टर लोग हैं वो म्यूजिक को थेरेपी करके इस्तेमाल करते हैं,
0: बिल्कुल सही कहा।
1: तो मैं या जो जो सुन रहे हैं उनको इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि गाते रहो, हंसते मुस्कुराते रहो, हमेशा खुश रहो और औरों को भी खुशियां प्रदान करो, इतना ही मैं बोल सकता हूँ।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डॉक्टर उमेश सर, थैंक यू सो मच, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपके गीत सुने, आपसे बातें की, बहुत जहीन, बहुत सुलझी हुई बातें, बिल्कुल ठीक, बहुत प्यारा मैसेज। थैंक यू सो मच डॉक्टर उमेश।
1: थैंक यू सो मच समीर जी, आपने मुझे आपके चैनल पे इनवाइट किया, आपका और सारे श्रोतागण जो मेरा ये गाना सुन रहे हैं और मेरी सराहना कर रहे हैं और मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, उनका भी तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।
0: बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
1: थैंक यू सर।
0: दोस्तों अगर आप भी आज के कलाकार प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, गाना चाहते हैं, नए टैलेंट्स के इस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो हमें कॉन्टैक्ट करें। नंबर है 9656517317। ये है 9656517317। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेहद शानदार गायकी, बेहद शानदार टैलेंट, एक और हसीन संगीत और गीत से भरी हुई शाम के लिए कल फिर हाजिर हो जाऊंगा एक नए टैलेंट के साथ। सुनना ना भूलिएगा।

0: नमस्कार दोस्तों, कला सिर्फ रंगों, सुरों या शब्दों का नाम नहीं है, बल्कि ये उन भावनाओं की भाषा है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। और जब एक कलाकार अपनी कला के माध्यम से दुनिया से संवाद करता है तो वो सिर्फ मनोरंजन नहीं करता, बल्कि प्रेरणा भी देता है। इसी प्रेरणा और रचनात्मकता के सफर में आपका स्वागत है आज के कलाकार के इस प्रोग्राम में। आइए ना मिलते हैं उन प्रतिभाओं से जो अपने हुनर, मेहनत और सपनों से आज की दुनिया को और खूबसूरत बना रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप सुन रहे हैं आज के कलाकार। ये लीजिए दोस्तों, बिल्कुल ही अनप्लग्ड, कोई तैयारी नहीं, कोई स्क्रिप्ट नहीं, दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन इसी बातचीत में हम लोगों ने म्यूजिक का, संगीत का, गायकी का तड़का लगा लिया है। मेरे साथ मेरे आज बहुत ही प्यारे मित्र गगनप्रीत जी मौजूद हैं। आप लोगों को बताना चाहूंगा बॉस, गगनप्रीत जी जिनको मेलोडियस मुंडा भी कहा जाता है, हमारे पास पहले भी पधार चुके हैं। उन्होंने हमें मौका दिया था, वी वेर ऑनर्ड टू लिसन टू हिज सॉन्ग्स, टू लिसन टू हिज म्यूजिक एंड वी एंजॉयड अ लॉट। उसके बाद बस कुछ व्यस्तता रही, मुलाकात ना हो सकी और गायकी की भी थोड़ा गैप हुआ, लेकिन आज हमें फिर मौका मिला है। तो गगनप्रीत, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं, वेलकम टू अवर प्रोग्राम एंड बिलीव मी दिस इज टोटली अनप्लग्ड। हम लोग मस्त बातें करेंगे, डोंट वरी, कोई नहीं सुन रहा ये समझ के चलना आज मैं कोई सुन ही नहीं रहा, बस आप मुझे गाने सुनाओ यार, काम खत्म हुआ। पहले तो फिर भी मुझे बता दो यार, मैं थोड़ा थोड़ा सा भूल रहा हूँ, लेकिन चलो हमारे दोस्त लोग, यार लोग भी सुन रहे हैं तो उनके लिए बता दो कहाँ आओ आप।
1: हाय समीर जी, थैंक यू सो मच, इतने समय बाद आपसे आज एक बार फिर से रूबरू होने का मौका मिला। मैं फिलहाल हमेशा की तरह चंडीगढ़ में ही हूँ और आपको बहुत याद करता हूँ। पहले भी आपसे मैंने कई बार कोशिश की आपसे बात करने की, बट कुछ आपकी व्यवस्था जो सॉरी कुछ आप व्यस्त रहे, कुछ मैं व्यस्त रहा, हमारा दोनों का जो टाइमिंग जो है वो मैच नहीं हो पा रहा था।
0: कोई नहीं, कोई नहीं,
1: बट आई एम ऑनर्ड कि आज जो है हम दोबारा आमने सामने बैठे हैं और आज हम फिर से बात कर पा रहे हैं। आई एम रियली हैप्पी फॉर दिस।
0: मी टू। बड़ी मजेदार बात है यार, मतलब बल्कि मुझे ठीक से याद पड़ता है गगनप्रीत जी, हम लोग ने ना एक म्यूजिकल ट्रीट भी वो किया था, प्लान किया था, जिसमें आपको इंक्लूड किया था और दो लोग और थे, पर समहाउ उसमें भी आप आ नहीं पाए थे, तो हम लोगों को दो ही लोगों के साथ उसे बनाना पड़ गया था।
1: हाँ जी,
0: बट चलो कोई गाल नहीं, कोई गाल नहीं, आपके लिए एक्सक्लूसिव प्रोग्राम ही रिजर्व रखा था ऊपर वाले ने, इस वजह से आज फिर से बात हो रही है। अच्छा चलो शुरू करते हैं, तो पहले तो गगनप्रीत मुझे ये बताओ कि ये मेलोडियस मुंडा आपको क्यों कहा जाता है?
1: सर मेलोडियस मुंडा जो नाम है ये मुझे चंडीगढ़ से ही मिला है बेसिकली। okay. मैं पहले भी गाता था म्यूजिक, आपको भी पता है कि मैं म्यूजिक से बचपन से ही जुड़ा हुआ हूँ। स्कूल टाइम से ही मैं म्यूजिक के साथ कनेक्टेड हूँ, मैंने स्कूल में ही अपने म्यूजिक सीखा, गायकी सीखी, इंस्ट्रूमेंट्स बजाने सीखे, और उसके बाद फिर मैं जब जॉब्स में रहा तो म्यूजिक से नाता थोड़ा सा टूट गया था, क्योंकि जॉब्स में रिस्पॉन्सिबिलिटीज में व्यस्त हो गया था मैं। चंडीगढ़ आके जब मुझे दोबारा मौका मिला गाने का और जब मैंने गाया तो लोगों ने बहुत सराहा, बहुत प्यार मिला, मैंने फिर इस अपने जो ये सफर है इसको फिर दोबारा से चंडीगढ़ आने के बाद ही दोबारा शुरू किया। तो पंजाब में जो मुंडा जो एक वर्ड है, ये लड़के को पंजाबी में कहा जाता है मुंडा, तो फिर मुझे जो जो ये प्यार करने वाले हैं श्रोता जो मेरे सारे, तो इन्होंने मुझे मेरा नाम रखा कि आप बड़े मेलोडियस हो, आपकी आवाज बड़ी प्यारी है, तो दे कॉल मी मेलोडियस मुंडा। तो वो दो शब्द जो है मिलके ये मेरा नाम पड़ा मेलोडियस मुंडा, और अब फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, गूगल पे, हर जगह आप कहीं भी, इनफैक्ट गूगल पे भी सर्च करेंगे मेलोडियस मुंडा तो आप सीधे मेरे घर तक भी पहुंच सकते हो।
0: बहुत बढ़िया। सो जाहिर सी बात है पिछली प्रोग्राम में मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने इस बारे में बात की थी या नहीं की थी, तो इसलिए ये सवाल बस उछल के आ गया।
1: तो इस बारे में हमारी बात नहीं हुई थी।
0: तो दोस्तों इस वजह से गगनप्रीत को मेलोडियस मुंडा कहा जाता है। चलो ज्यादा बातचीत क्या, अभी पहले गीत सुनते हैं, उसके बाद गगनप्रीत जी से और बातचीत करते हैं, अब की बार बिल्कुल अनप्लग्ड। लीजिए पेश करता हूं ये गीत।

0: बहुत खूब, अमेजिंग सिंगिंग एज बिफोर, हमेशा की तरह। तो चलो आगे बढ़ते हैं गगनप्रीत भाई। और मुझे ठीक से याद है कि आपने मुझे बताया था कि आपका जन्म जो हुआ था वो रुद्रपुर में हुआ था, एम आई राइट?
1: जी हाँ, जी हाँ।
0: तो आपके रुद्रपुर के ही निवासी थे, फिर उसके बाद आप प्रोफेशन के चक्कर में शिफ्ट हो गए, जो भी है। तो चलो थोड़े से आपकी बचपन के बारे में बात करते हैं। यूं तो मुझे मेरे दोस्तों को सुन के लगेगा कि मैं पूछना चाहूंगा कि आप बचपन में क्या बनना चाहते थे, लेकिन उसको जाने दीजिए। मुझे तो ये बताओ, बचपन में सबसे मजेदार शरारत कोई याद है जो आपने की हो?
1: सर ऐसे तो बहुत सारी यादें हैं जो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, पर कई ऐसी बातें हैं जो जिंदगी में हमेशा हमारे साथ जुड़ी रह जाती है, हम कभी भी भूल नहीं पाते उन बातों को। तो ऐसे कई सारे किस्से मेरे साथ भी जुड़े हुए हैं, पर अगर आप जानने ही जाएंगे कि मैं कोई एक किस्सा उनमें से आपके साथ शेयर करूं, तो वो एक है कि मेरे जो मदर है उनको डॉग्स और कैट्स ये पेट्स वगैरह का ज्यादा शौक नहीं है, नहीं था। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे को बहुत ज्यादा, अभी भी है, मुझे अभी भी पेट, आई एम अ बिग पेट लवर। तो मैं अपनी गली से एक छोटा पपी उठा के घर ले आया था, और जितना मैं उससे प्यार नहीं कर रहा था उतने उससे ज्यादा मुझे मार पड़ी थी। जब मैं उसे ले आया और मैंने उसे छुपा के रख दिया एक, मैंने उसके लिए एक डब्बे कार्टन का, मेरे को याद है मैंने गत्ते का एक बॉक्स जो था वो रखा, और मैंने उसके अंदर उसका पूरा सेटअप क्रिएट किया सब। और मैंने मार इसलिए पड़ी थी कि मैंने जो मेरा ही जो ब्लैंकेट था, मैंने वही ब्लैंकेट उसके उसके अंदर रख दिया था, उसको उस कपी को उसके ऊपर बिठा दिया था। मुझे बहुत मार पड़ी थी उस वक्त मेरी मम्मी से कि Why I did that? मुझे अच्छी तरह वो किस्सा कभी नहीं भूलता।
0: वाओ, ये छोटी छोटी शरारतें होती हैं दोस्तों जो हम बचपन में करते हैं, और खास करके जो गगन जी ने बताई पेट को घर के एक छोटे से पिल्ले को घर पे ले आने वाली, तो ये हरकत ना बहुत बच्चे करते हैं और बेचारे सबकी बहुत पिटाई होती है। कोई एक आधी बच्चा होता होगा जो शायद उनके पेरेंट्स उसको एक्सेप्ट कर
1: लेते हैं, बिल्कुल,
0: और जिसने ये ना किया हो। ये बिल्कुल सही बात है यार, बच्चों का दिल वैसे ही होता है, मतलब वो पपी में भी उनको बच्चा ही दिखता है तो उनके साथ वो खेलना चाहते हैं, सिंपल।
1: जी,
0: ब्यूटीफुल। तो चलो दोस्तों, आप अपने बचपन की कोई शरारत याद करो, क्या थी वो, संभव हो, इम्पॉसिबल हो तो हमारे साथ शेयर करो, बड़ा मजा आएगा। चलिए तब तक हम लोग गगन जी के ही गाए हुए ये गीत सुने और फिर आगे बढ़े।

0: बहुत खूब। चलो
1: थैंक यू सर।
0: अब क्या हुआ गगन जी, छोटे से शरारते करते करते करते करते हम बड़े हो गए। ओके
1: जी हाँ जी।
0: प्रोफेशन में आ गए, कुछ मैच्योर भी हो गए, जिंदगी को समझने लगे।
1: बिल्कुल।
0: कोई ऐसा मोमेंट
1: जिम्मेदारियों
0: में आ गए, ठीक है ना
1: जी।
0: मे बी ईएमआई चालू हो गई होंगी, लोन चालू हो गए होंगे बस उलझ गए होंगे उसमें तो
1: हाँ।
0: लेकिन कोई ऐसा पल अभी या कुछ समय पहले कभी भी आया होगा, तो ऐसा कौन सा पल था जब आपको ये लगा कि यार मैं तो बदल गया हूं? कौन सा ऐसा पल था, कुछ याद है आपको, जब आपको रियलाइज हुआ हो अरे यार मैं क्या था, क्या हो गया?
1: बिल्कुल होता है सर। जब मैं अपने कॉलेज पास आउट होके और नई नई जॉब में स्टार्ट हुआ, उस वक्त मेरी उम्र शायद 25-26 साल रही होगी जब मैंने जॉब में आया था मैं, और उस अब मैं और जब आज मैं इस मुकाम पर बैठा हुआ हूँ, मैं एक अच्छी बड़ी रियल एस्टेट कंपनी में बैठा हुआ हूँ एज अ सीनियर सेल्स मैनेजर, तो अब और तब के स्वभाव में बहुत ज्यादा फर्क है। जो मैं खुद ये बात अपने लिए ऑब्जर्व करता हूं कि पहले अग्रेशन, शॉर्ट टेम्पर्ड और बहुत क्विक डिसीजन मेकर उस उम्र में शायद मैं था, जो मैं ऑब्जर्व करता हूं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि नहीं, अब मैं बहुत सहजता से और स्वभाव से बहुत ज्यादा विनम्रता से बात करने लगा हूं और चीजों को बहुत अलग वे में देखने लगा हूं। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये सर्टेन एज के साथ साथ, आपके एक्सपीरियंस के साथ साथ आपके अंदर ये बदलाव आ ही जाता है। लेकिन अब मुझे ये लगता है कि दिस इज एक्चुअल मी, यही होना चाहिए एक व्यक्ति को। आप अग्रेशन, शॉर्ट टेम्पर्डनेस, क्विक डिसीजन, ये हमारी, हमें लगता है कि हम बिल्कुल ठीक हैं, हम जो कर रहे हैं वो सही है, लेकिन एक्चुअली में वो नहीं होता। उस स्वभाव के चलते हम कई फैसले ऐसे अपनी जिंदगी में बहुत गलत ले लेते हैं जिसका जो रिजल्ट है हमें बहुत बाद में समझ आता है। तो अपने सारे लिसनर्स को मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूं कि बोलने से पहले, कोई फैसला लेने से पहले एक बार जरूर उसे दोबारा विचार कीजिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए।
0: That's right. That's very right. बिल्कुल। Moreover, गगन मैं आपको सच बताऊं, अभी पिछले कुछ दिनों से, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, शायद हफ्ता भर हुआ हुआ या 10 दिन हुआ होगा मे बी, आई हैव रियलाइज्ड एट दिस एज नाउ कि यार कोई मैसेज आता है या कोई फोन कॉल आती है कि जी ऐसा हो गया। मतलब जैसे मैं कॉलेज में जाता हूं तो वहां पर यह हुआ कि साहब बच्चों की जॉब नहीं लगी है, इट वॉज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो एक सेकंड में बहुत तेज गुस्सा

0: समय बाद ही कुछ ना कुछ सोल्यूशन आपके दिमाग में आ जाएगा।
1: कई बार सर चुप रहना ही सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, हर बात का जवाब देना सोल्यूशन नहीं है,
0: कोई जरूरी
1: प्रोफेशनल लाइफ में भी और पर्सनल लाइफ में भी। मेरा अब ये मानना है कि चुप रहने से भी बहुत कुछ सॉल्व हो सकता है, जरूरी नहीं कि बात को बढ़ाया ही जाए।
0: दैट्स वेरी राइट। तो थोड़ी सी फिलोसफिकल जरूर लगती है बॉस ये बातें दोस्तों, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आप भी इसको फील कर रहे होंगे और हम भी फील कर रहे हैं, सो व्हाई नॉट लेट्स एक्सेप्ट इट, स्वीकार कर लेते हैं ना कि यार ये सच्चाई है।
1: बिल्कुल।
0: चलिए इन्हीं विचारों को जरा सा और गहरा सोचते रहिए, लेकिन रुकिए, गगन जी के इन गीतों का आनंद भी उठाइए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।

0: बहुत खूब, अमेजिंगली ब्यूटिफुल।
1: थैंक यू सर।
0: गगन जी, चलो, आपने कहा कि कई बार चीजों पर शांत रह जाना, चुप रह जाना ही ठीक है, चाहे पे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो जाता
1: जी।
0: आपने भी सीख लिया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सभी लोगों ने सीख लिया, हमने भी सीख लिया। लेकिन यार फिर भी कभी कभी तो पांव फिसल ही जाता है ना, तो आप बताओ किस बात पर आपको बहुत जल्दी सबसे ज्यादा गुस्सा आ जाता है?
1: सर ये शो बहुत लोगों ने सुनना है और उन्हें मैं ये जाहिर कर दूं कि मुझे इस बात पे गुस्सा, ये तो मेरी कमजोरी पकड़ने वाली बात है।
0: नहीं तो हम केयरफुल रहेंगे ना यार कि हम ऐसी हरकत ना करें।
1: सबसे अहम बात जो है सर, जो मुझे बहुत बुरी लगती है और जिसमें मुझे बहुत ज्यादा एकदम से बहुत गुस्सा आ जाता है, वो दो ऐसी बातें हैं। एक ये कि जहां मुझे लगता है कि मेरी गलती नहीं थी, फिर भी मेरा नाम जोड़ा गया या मुझे उसमें इन्वॉल्व किया गया, तो मैं चुप रहना फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाता।
0: करेक्ट करेक्ट।
1: और दूसरा ये कि अगर मैं आपके साथ सच्चा हूं तो अगर आप आगे से मुझे झूठ बोलते हैं तब भी मुझे मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं हमेशा अपने दोस्तों को भी, अपने चाहने वालों को भी, सबको यही बोलता हूँ कि यार आप कुछ भी करना, बस मुझसे झूठ नहीं बोलना।
0: ओके, ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट।
1: क्योंकि वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मुझे कई लोग कहते हैं, मेरे रोज के जो मुझसे मिलने वाले लोग हैं, कई एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, न्यूमरोलॉजी में बिलीव करते हैं, तो दे ऑल्सो से कि गगन तेरा जो मूलांक है ना वो 8 है, यू आर रियली मतलब ब्लेस्ड विद दैट ऑरा एंड दैट एनर्जी। जो मूलांक 8 जो है वो शनि देव से प्रभावित रहते हैं। तो वो मुझे बोलते हैं कि यू आर एग्जैक्टली दैट व्हाट नंबर 8 इज। तुम बिल्कुल वही हो। तो अपने काम को इतनी ज्यादा अहमियत देते हो कि फैमिली, दोस्त, यार, सबसे पहले अपने काम को प्रेफरेंस देते हो, उसके बाद तुम्हारे लिए सब लोग आते हैं। तो मूलांक 8 जो है तो वो इसी पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। और यू आर एग्जैक्टली दैट। मैं सुबह अपने टाइम से पहले ऑफिस पहुंचता हूँ, टाइम कंप्लीट करने के बाद ही ऑफिस से जाता हूँ। और मेरे लिए आज भी मुझे पता है कि मेरा काम सबसे पहले है, काम के बाद ही मैं आगे, उसके बाद सबको रखता हूँ।
0: आई अंडरस्टैंड, आई परफेक्टली अंडरस्टैंड। और ये एक पर्सनल ट्रेट होता है दोस्तों, एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक पर्सनालिटी है जो हर व्यक्ति अपने साथ कैरी करता है, वो अलग अलग होती है। तो आज हमें मौका मिल गया गगन जी की पर्सनालिटी को और गहरे समझने के लिए। सो दैट्स वेरी वेरी नाइस। आइए दोस्तों फिर हो जाएं ये गीत गगन जी के, और फिर इसके बाद विल टॉक मोर अबाउट गगन जी।

0: अमेजिंगली ब्यूटीफुल। चलो गगन जी, अब आपकी थोड़ी संगीत, आपके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी ले ली हमने कि आपका बचपन में शरारतें, देन आप ने कब रियलाइज किया दैट, या रियलाइज किया कि आप बदल गए, फिर आपने रियलाइज किया कि चुप रहना क्यों इंपॉर्टेंट है या मजेदार है या बेनिफिशियल है, एंड देन आपका जो पर्सनल ट्रेट है कि आपको गुस्सा किस बात पे आता है, हमें वो भी पता चल गया। अब अगर आपके म्यूजिक की बात करें तो दो ऑफ कोर्स ये सवाल मैं पिछले प्रोग्राम में आपसे सर्टनली पूछ चुका हूं, लेकिन फिर भी हमारे नए जो सुनने वाले लोग हैं जो आज आपको सुन रहे हैं वापस से, दे वुड ऑल्सो लाइक टू नो अबाउट इट कि किस तरीके का म्यूजिक पर्सनली अगर आपको गाना ना हो, फर्ज कीजिए, क्योंकि गाना तो मैं मानता हूं आप अपने आप को खुश करने के लिए और अपनी ऑडियंस को खुश करने के लिए गाते होंगे, लेकिन सुनने में आपकी पर्सनल चॉइस क्या है, व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक टू लिसन?
1: सुमीर जी, मैंने पिछली बार भी मुझसे सवाल किया था और मैं आज फिर अपने लिसनर्स को बताना चाहता हूँ कि मैं आई एम 87 बॉर्न और मैं मुझे कह सकते हैं ओल्ड स्कूल बॉय, जो वर्ड बना है ना वो एग्जैक्टली मेरे लिए बना है। मैं आज की इस जनरेशन में 80s और 90s के गाने ही सुनता हूँ, वही पसंद करता हूँ और वही गाता हूँ। मुझे देख के कई लोग कहते हैं कि आप पंजाबी गाने नहीं गाते,
0: अच्छा,
1: बट मेरा रिप्लाई यही होता है कि नहीं जनाब, मैं पंजाबी गाने नहीं गाता हूँ। मैं आई एम अ सिख जेंटलमैन बट मैं पंजाबी गाने नहीं गाता हूँ। मेरे को वही, मेरे उसी ऑरा में ही रहना पसंद है जो मेरे डैड के टाइम से मेरे साथ चलता हुआ आ रहा है। मेरे डैड भी बहुत म्यूजिक लिसनर थे, गाते भी थे, शौक से गाते थे, बट उनके शौक हम में आगे आए और हम उस शौक को आगे ले आए कि मैं गाने लग गया। वो गाते नहीं थे, मैं पैशनेटली प्रोफेशनली भी गाने लगा, मैंने लाइव शोज किए, इंटरनेशनल शोज भी किए।
0: सो दिस चॉइस ऑफ म्यूजिक गगन जी हैज, हम लोगों को ये भी पता चला आज, बहुत बढ़िया। चलिए फिर हो जाए फिर एक और बहुत ही खूबसूरत सा गीत मेलोडियस मुंडा जी की ही आवाज में।

0: बहुत बहुत खूब गगन भाई, बहुत खूब।
1: थैंक यू सर।
0: चलो फिर हमारे जितने भी सुनने वाले हैं, पुराने नए, वैसे तो नए बहुत ज्यादा है, लेकिन सब लोगों को एक बार फिर से क्या संदेश देना चाहोगे, क्या बात करना चाहोगे, कुछ बात कर लो दिल से दिल की।
1: अगर ये समय अब जाते जाते बात करने का ही है तो कुछ आपको भी, तो आपके लिए भी मैंने कुछ लिखा था जो मुझे, हाँ जो मैंने लिखा था वो मैं जरूर सुनाना चाहता हूँ आपको भी। ये मेरे दिल से ये मैंने लिखा था आपके लिए भी कि हम जो मिले हैं तुमसे, जब से आपसे मिला हूं मैं, हम जो मिले हैं तुमसे ये कोई इत्तेफाक थोड़ी है।
0: अच्छा।
1: मिलके तुम्हें छोड़ने ये कोई मजाक थोड़ी है।
0: ओके।
1: अगर होती तुमसे मोहब्बत एक हद तक तो छोड़ देते, पर हमारी मोहब्बत है किसी का हिसाब थोड़ी है।
0: किसी का हिसाब, वाह वाह वाह क्या बात है। ये कोई डेबिट क्रेडिट थोड़ी है।
1: हाँ, अब आप ढूंढोगे मेरी इस बात का जवाब। बींगन आज समीर जी, आप जवाब देने में आपसे ज्यादा माहिर कोई भी नहीं।
0: अरे नहीं साहब।
1: लेकिन फिर भी कहना चाहता हूँ कि अब आप ढूंढोगे मेरी इस बात का जवाब, पर ये मेरे दिल की आवाज है, कोई किताब थोड़ी है।
0: क्या कह दिया, क्या कह दिया, क्या कह दिया।